0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 26वीं तिथि। तदनुसार

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें गौतम गौर आपके साथ रहेंगे। सुबह 7:02 पर संजीव श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें आप दिल्ली जगत की खबरें आप सुन सकते हैं, साथ ही बेहतरीन गीतों का आनंद ले सकते हैं। सुबह 8:02 पर गौतम गौर आपके लिए लेकर आएंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर कार्यक्रम। सुबह 9:02 पर संजीव श्रीवास्तव लेकर आएंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। सुबह 10:02 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर, इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे देवर्षि रावत। सुबह 11:02 पर सृजन राजपूत आपके लिए लेकर आएंगे बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसमें बॉलीवुड जगत की खबरों का आप आनंद ले सकते हैं और बेहतरीन गीत आप सुन पाएंगे। दोपहर 12:02 पर अंग्रेजी कार्यक्रम प्ले इट कूल आप सुनेंगे देवर्षि रावत के साथ। दोपहर 1:02 पर सृजन राजपूत आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग, इसमें श्रोता अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश भेजकर अपने गीतों को सुन सकते हैं। दोपहर 2:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना, जिसमें गीतिका उनियाल आपके साथ रहेंगे। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सीमा सती, इसमें आपके साथ होंगी। आज का विषय रहेगा किडनी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज और एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर संदीप महाजन। शाम 4:02 पर गीतिका उनियाल आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, ये हमारे सैनिक भाइयों का कार्यक्रम है। आज के मेहमान इसमें होंगे कर्नल विवेक चौहान। शाम 5:02 पर सीमा सती आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम सिटी लाइट्स। शाम 6:02 पर आप सुनेंगे मैसेज मसाला मिक्स, इसमें श्रोता अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर। इस कार्यक्रम में गीता चौधरी आपके साथ रहेंगे। शाम 7:02 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी कार्यक्रम हिट्स एंड मेमोरीज, इस कार्यक्रम में रघु आपके साथ रहेंगे। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे गीता चौधरी के साथ स्पेशल प्रोग्राम चीयर फॉर भारत, ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम होगा। रात्रि 8:30 पर म्यूजिक मस्ती यानी नॉन स्टॉप पर डांस हिट्स का आप आनंद ले सकते हैं गीता चौधरी के साथ। रात्रि 9:02 पर आप सुनेंगे

कार्यक्रम आपकी याद आती रही, इसमें 90s के गीतों को आप सुन पाएंगे। विनीता बेदी इसमें आपके साथ होंगी। रात्रि 10:02 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी कार्यक्रम ऑल दैट जैज़, इसमें रघु आपके साथ होंगे। और रात्रि 11:02 पर आप सुनेंगे गजलों की खूबसूरत महफिल रंग महफिल, जिसमें विनीता बेदी आपके साथ रहेंगी। तो ये थी आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

अब समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से यह जानकारी सामने आई है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वे शनिवार तक भारत की यात्रा पर ही रहेंगे। अमेरिका ने 2 दशक से अधिक समय बाद पहली बार वेनेजुएला को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में विफल देशों की सूची से हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान में इसकी घोषणा की गई। भारत ने पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3रा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: द्वारा पेश है प्रायोजित प्रोग्राम।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय FR मीडिया Academy।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यही सत्य वचन है कि जैसा हम बार बार देखते हैं या बार बार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा दिल और दिमाग भी सोचने लगता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि आंखों को लुभावने वाली बुराइयों से दूर रहकर ईश्वर की संगति में रहना हम मनुष्यों के लिए लाभकारी है, क्योंकि प्रभु की संगति में ही आनंद और सुकून की प्राप्ति होती है।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जब हम ईश्वर को पा लेते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। हमारी बोलचाल और हमारा व्यवहार सब कुछ बदलने लगता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब तुम अपने हृदय में प्रभु को जगह देते हो तो तुम्हारे जीवन को प्रभु नया बना देता है, जिसमें न कपट होता है और न होती है नफरत की चिंगारी, बल्कि प्रभु के अनुग्रह से वो जीवन प्रेम, मोहब्बत और आशीषों से भर जाता है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, अपने लबों पर हमेशा प्रभु का नाम रखने से ना सिर्फ मुश्किलों का हल मिलता है बल्कि जीवन में एक नया जोश और जज्बा भी पैदा होता है। इसीलिए सदा उसकी जय जयकार करते रहें।

0: दोस्तों, प्रभु की महिमा हमारे जीवनों से होती रहे, इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। लेकिन अगर आप हमसे फोन या मैसेज के द्वारा बात करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर फोन या मैसेज कर सकते हैं। 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दुनिया के सारे गुनाह किए हैं मैंने, नहीं हूं मैं किसी माफी के काबिल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। और जो तूफानों से टकराने का हुनर रखते हैं, वही आसमान में उड़ने का असर रखते हैं। और डर कर बैठने वालों को मंजिल कहाँ मिलती है जनाब? जो चलते रहते हैं वही इतिहास लिखते हैं। खामोशी से मेहनत करते रहो, शोर तो कामयाबी खुद करेगी। आज भले कोई ना पहचाने तुम्हें, कल दुनिया तुम्हारी मिसाल जरूर देगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। पहचान तो गए होंगे जनाब, सुप्रभात। लेकर आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपकी खिदमत में हाजिर है 102.6 FM, दिल से दिल तक।

वेल, मशाल से लेके मिसाल तक यही है सफर, और सफर का धाम है सफर का ही रहा, राइट? आप भी अपने आप से कई बार ऐसा कहते होंगे ना कि मेरी मेहनत के वो निवाले कौन देखे, सफर में हूं पांव के छाले कौन देखे, सबको दिखता है मेरा आज मेरी हंसी, आंखों के नीचे धब्बे काले कौन देखे, सब अंदाजा लगा रहे हैं बस तस्वीरों से, मगर तस्वीर के पीछे जाले कौन देखे, अंधेरों से लड़कर आया हूं यहां तक, हाथों में सुलगती मशाले कौन देखे। सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। कैसे हुई सारे? मौसम भले ही ऑसम, लेकिन मौसम फिल्म का ये सॉन्ग सुपर हिट है। और आपको तो पता ही है, जब मौसम कभी भी बदल जाता है तो बस हमारी हर दिन कोशिश यही रहती है कि आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट का ये डोज हर रोज दें।

जब वेदर ऐसा होना तो हम हो ही जाते हैं बेकाबू, खुद पे नहीं रहता कोई काबू। लेकिन अर्ली मॉर्निंग है, क्या कर रहे हो मेरे बाबू, जाग जाओ, जागो मोहन प्यारे। और चलिए थोड़ी बहुत मोटिवेशनल बात भी कर लेते हैं, हंसी मजाक तो जरूरी है। एक कहानी सुनाना चाहूंगा आपको कि एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। उस रास्ते से एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन वो पेड़ थोड़ा सा रूखा था। उस पेड़ ने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, नो मींस नो, अक्सर काफी सारे लोग कहते हैं। फिर वो दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा, उसने हां कह दिया और चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी से दूसरे पेड़ में घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि इसी समय पहला पेड़ जड़ से उखड़ कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा कि जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आए तब तुमने मना कर दिया था, देखो देखो तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सजा मिल रही है। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर हैं और इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, मना करने के लिए मुझे माफ कर दो। और ये कहते ही पेड़ बह गया। दोस्तों, किसी के इनकार को हमेशा उसकी कठोरता ना समझे, क्या पता उसके इसी इनकार से आपका भला। कौन इस हालत में किस तरीके से रिएक्ट करेगा हमें अक्सर नहीं पता, और हम हर किसी की सिचुएशन को समझ नहीं पाते। वेल, कहते हैं ना कि मुझे वहां से पढ़िए जहां से मैं खामोश हूं, क्योंकि ये हंसना और हंसाना तो मेरी अदा है और इसी पर तो आप लोग भी फिदा हैं। नहीं ना, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे ये तो कहते हो आप जब मैं आ जाता हूं स्टूडियो। सुप्रभात। और अक्सर ना जब ऐसे डेज हो, ऑफिस जाना हो, तो काफी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है।

इसलिए कहा जाता है ना कि पल पल दिल के पास आप रहते हो और अक्सर कितना सारा गम आप अकेले सहते हो। छुपाना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता, लेकिन निभाना तो आता होगा। चलिए एक स्टोरी सुनाता हूं कि घड़ी की सेकंड वाली सुई हर पल थोड़ा सा आगे बढ़ती है। वन स्टेप एट अ टाइम, ऐसा किसी ने मुझसे कहा था। वो कभी एक मिनट में पूरा घंटा तय करने की कोशिश नहीं करती, फिर भी वही छोटी छोटी चाल मिलकर पूरा दिन बना देती है। रफ्तार छोटी हो सकती है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। डायरेक्शन, कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा, वो भी सोने की स्याही से, क्योंकि मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं समझ में नहीं, दिल से दिल तक। 102.6 FM।

नौका में तेज हवा का झोंका और लाइफ में धोखा, ये कभी भी मिल सकता है। आई एम श्योर कि आपने भी काफी सारे धोखे खाए होंगे या बादाम धोखे खाए होंगे कुछ याद करने के लिए, लेकिन हाँ वो तजुर्बा ही आपको सिखाता है कि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं मैं और अपने तजुर्बे से काफी बड़ा हूं मैं। एक बात कहूं कि समुद्र को क्या गम है दिखा भी नहीं सकता, कि समुद्र को क्या गम है दिखा भी नहीं सकता और पानी बनके पलकों पर आ भी नहीं सकता। तू छोड़ के चला गया इसमें तेरा क्या कसूर, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वाह वाह कमाल है। एक आदमी नदी पार करने के लिए लकड़ी का पुल बना रहा था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये बहुत धीरे है, ये स्लो है, ये स्लो है, लेकिन जनाब जिस जिस पे ये जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। वो रोज सिर्फ एक लकड़ी लगाता रहा, कुछ महीने बाद पुल तैयार हो गया और वही पुल सैकड़ों लोगों के काम आने लगा। छोटी मेहनत रोज की जाए तो एक दिन बड़ा परिणाम जरूर बनता है, तो कोशिश कीजिए कि हर रोज

भी एफर्ट लगाते रहे, जरूर मिलेगा। जी हाँ, जो लोग रातों को कोशिश में गवा देते हैं, बताइए आपको, वही तो अपने सपनों को और भी ज्यादा हवा देते हैं। चुप चुप के ही भले कोशिश के लिए, लेकिन एक दिन वो जग जाहिर

कि दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना कि वक्त बताएगा। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, अब तो किसी के लिए वक्त नहीं। अक्सर मैं कहता हूं कि दूसरों की तो बात छोड़ो जब अपनों के लिए वक्त नहीं। बचपन में एक सपना देखा था ना, दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, के बड़े हो जाएंगे, खूब सारे पैसे कमाएंगे और एक घर ले लेंगे, सब साथ रहेंगे। गनीमत देखो कि आज एक व्हाट्सएप ग्रुप में साथ नहीं रह पा रहे, ये हाल हो गया जनाब। तो मैंने कहा था कि दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। एक लड़का एक बंद दरवाजे के सामने बैठकर रो रहा था। एक बुजुर्ग ने पूछा, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? लड़के ने कहा, ये बंद है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, दरवाजा बंद है, रास्ता नहीं। लड़के ने पीछे देखा, वहां एक दूसरी राह थी, जहां चाह है वहां राह है। अक्सर ना आपकी लाइफ में भी ब्लॉकेज आई होगी, लेकिन यकीन मानिए जनाब, आप सोच रहे हैं कि आज आपको वो टी शर्ट चाहिए, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, और दुनिया कहेगी नहीं, नहीं मिल सकती। लेकिन रुको, जरा सबर करो, टी शर्ट नहीं, आपका एक परफेक्ट सूट आपका इंतजार कर रहा है। तो साथिया साथ निभाना, साथी साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना। थकता नहीं हूं मैं। 102.6 FM, दिल से दिल तक, सुप्रभात, आरजे गौतम के साथ।

सबसे बड़ा हुनर है दिल चुराने का, और जाना पड़ेगा बिकॉज कोई और आ रहा है दिल चुराने के लिए। संजीव आ चुके हैं स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, लेकर फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ आज से 9 बजे।

नमस्कार, लीजिए सुनिए सुबह 7 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के शुभभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने और निवेश को आकर्षित करने के अवसर मिलेंगे। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से यह जानकारी सामने आई है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वे शनिवार तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। और भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे खेला जाएगा। तो ये थे सुबह 7 बजे के मुख्य समाचार और अब बारी आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR की।

प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर को बहुत पसंद है। जी हाँ, कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। और ये जो समय चल रहा है ये बड़ा ही पवित्र है, बहुत ही पावन है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि गणपति बप्पा पधारे हुए हैं हर किसी के आंगन में, घर में। बिल्कुल जी, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति का आशीर्वाद हम सबको मिले, हमारे देश की समृद्धि हो, हम प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, प्रशस्त रहें, ऐसी ही हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और इस बहुत ही प्यारे से वंदन के साथ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा, भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में वो समृद्धि, उन्नति और प्रगति की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसका आगमन करें।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और ये है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने अपने जीवन में कभी कुछ संघर्ष के दौरान, कुछ कठिन परिस्थितियों के दौरान अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ ये मानकर हार मान ली कि अब इन परिस्थितियों के बाद मैं इससे आगे नहीं निकल पाऊंगा, इसे उबर नहीं पाऊंगा, तो शायद आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए हैं, है ना। मुझे बचपन की अपनी एक घटना याद आती है कि मैं बहुत छोटा था और माँ टीचर रहीं और शिक्षिका के रूप में जब वो स्कूल चली जाती थी, वहाँ कई बार क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं घर में, मुझे उन्होंने कहा कि आज स्कूल नहीं जाना, क्योंकि कमरा में जब माँ जाती हैं तो बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, चीज़ें आपको बता के जाती हैं कि आपको ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। चिंतित थी थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन उनका कर्तव्य था कि उनको स्कूल भी जाना था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि अंदर से अपना जो दरवाज़ा है उसे बंद कर लेना, और आस पड़ोस के लोगों को बता के गई थी। मैंने स्वास्थ्य ख़राब था और दवाई खाई, उसके बाद मैंने ये सोचा कि दरवाज़ा, अगर मैं सो गया, दरवाज़ा खुला रहेगा तो कोई आ सकता है, मैंने दरवाजे के ऊपर वाली चटकनी लगा ली। अब जब दोपहर को माँ आई, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं जागा, मैं सो गया था, तो मैंने उस चिटकनी को खोलने की बहुत

कोशिश की, कई बार कोशिश की, लेकिन जब वो चटकनी नहीं खुली तो मैं घबरा गया और उसके बाद रोने लगा। तब माँ की बहुत प्यारी सी आवाज़, संकल्प से परिपूर्ण एक आत्मविश्वास से भरी आवाज़ बाहर से आई कि घबरा मत, बिल्कुल मत घबरा, वो जो पलंग जिस पर तू लेटा है उसको खींच। अब मैं छोटा था, मैंने फिर भी माँ की आवाज़ सुनी, ढांढस बंधा, हिम्मत हुई, उस पलंग को खींचा, बोले उसके ऊपर खड़ा हो, मैं बाहर खड़ी हूँ, चिंता मत कर। ये आवाज़ जब मुझे सुनाई पड़ी, मैंने वो चटकनी पर हाथ लगाया, बोली धीरे धीरे धीरे करके उसको नीचे नीचे खींच, और वो चटकनी खुल गई, जैसे जिंदगी की रोशनी खुल गई, माँ सामने थी, गले से चिपका लगा लिया। अब आप समझ सकते हैं ना कि आत्मबल देने वाली अगर माँ आपके पास है, आपको संकल्प से, तो आपके संकल्प कैसे नहीं सिद्ध होंगे। और ये बात आपके जीवन में हर जीवन के हर पहलू पर खरी उतरती है कि अगर आपको जरा भी कहीं निराशा हो रही है या आपको लगता है कि इन संघर्षों से हम हार जाएंगे, तो एक बार याद कर लीजिए अपनी माँ को, एक बार याद कर लीजिए अपने उन परिवार के उन बुजुर्गों को, एक बार याद कर लीजिए अपने उन सभी लोगों को जिन्होंने किन किन परिस्थितियों से गुजरते हुए जीवन में आज आपको इस जिसे कहते हैं मुकाम पर पहुंचा दिया। सो आप भी मत घबराइए, हम आपसे बात करेंगे उन लोगों की जो मुकाम पर पहुंचे हैं आज अपने प्रोग्राम में, और आज हम आपसे बात करेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज उन घटनाओं की जिनको इतिहास के पन्नों में दर्ज इसलिए किया गया कि उसमें कुछ खास था। फिलहाल इस गीत के साथ अपने जीवन को हमेशा रोशन रखिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है

0: और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन।
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, और मैं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संचो। वादे के मुताबिक जैसा मैंने आपसे कहा कि हम आपसे कुछ इतिहास की घटनाओं की बात करेंगे, उन व्यक्तियों की बात करेंगे जिनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ, और आपको बताएं कि इतिहास में नाम दर्ज होना या इतिहास में जाना कोई आसान चीज़ नहीं होती। इतिहास यानी जो चीज़ बीत गई हम, और लेकिन जो चीज़ बीती वो इतिहास बनी, लेकिन इतिहास में कुछ विशेष करके उसमें अपना नाम दर्ज कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीवन का वो सार्थक अंग है जिसको हम अपने जीवन में हर कोई जीने की ख्वाहिश रखता है, आकांक्षा रखता है कि हम ऐसा कुछ कर जाएं कि हमारा नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो और आने वाली पीढ़ियाँ हमारे उस कर्म को, उस हमारे उस कार्य को, उस हमारी उस विशेष विधा को जानकर अत्यंत प्रसन्न हो, जिसमें देश का हित हो, जिसमें राष्ट्र का हित हो, जिसमें हमारी संपूर्ण प्रकृति का हित हो, ऐसा कुछ कार्य हम कर जाएं। तो आज की अगर हम बात करें तो आज 17 सितंबर है 2026, लगातार समय बढ़ रहा है। अगर मैं समय की सुइयां अपने स्टूडियो में देखूं तो सेकंड की सुई लगातार बढ़ रही है, यानी वक्त लगातार दौड़ रहा है और इस वक्त के साथ हमें दौड़ना है। 1948 की बात अगर हम करते हैं तो ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत की को निज़ाम के शासन से मुक्त कराकर भारतीय संघ में मिलाया था आज के दिन। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर। और आपको बताएं कि आज के दिन ही हर वर्ष 17 सितंबर को ब्रह्मांड के पहले वास्तुकार या कहिए इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है, और हम सब मिलकर इस जयंती को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं आज के दिन। और एक बहुत ही खास व्यक्तित्व की बात करना चाहूँगा मैं, जिनका जन्म हुआ आज के दिन। गुजरात के वडनगर में जन्मे यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म है आज के दिन। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हम ज़रूर देंगे और उनको उनसे यह और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे भगवान भोलेनाथ से कि उनको यशस्वी बनाए रखें, उनको दीर्घायु रखें, और जिस तरह से प्रगति के मार्ग पर, लगातार उन्नति के मार्ग पर वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें उसके उनके संकल्प में हम सभी देशवासी मिलकर उनका साथ देते रहें। तो ये इतिहास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी बातें इतिहास में होती हैं, लेकिन हम उस इतिहास में अपनी तरफ से क्या जोड़ सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप आज के दिन के इतिहास में क्या जोड़ पाएंगे ये आपके लिए चैलेंज है, है ना। तो आप क्या करेंगे? अब 1982 की हम अगर बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था आज के दिन। इसके अलावा 1956 में भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का गठन हुआ था आज ही के दिन। सो बहुत सारी बातें हैं और इतिहास में बहुत कुछ दर्ज है, लेकिन फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए, क्योंकि हर किसी की एक इच्छा होती है कि उसके पापा उससे क्या चाहते हैं। ये जो गीत है कयामत से कयामत का बहुत प्यारा गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है कि बच्चे जो हैं वो अपने दिल से बहुत कुछ चाहते हैं और कई बार हम अपनी इच्छाओं को उन पर लाद कर उनकी उस उड़ान को रोकने की कोशिश करते हैं। तो उनसे उनके दिल की बात हम ज़रूर पूछें, ज़रूर जानें कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो हम उनको ज़रूर मार्गदर्शन करें, लेकिन उनकी उड़ान को रोकने की कोशिश ना करें बल्कि उसको गति दें, जैसा कि हर माता पिता का कर्तव्य होता है।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, पुनः अभिनंदन। आपका प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। ढेर सारे लोग हमें मैसेज करते हैं और मैसेज करके बहुत ही सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपके लिए भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। आप स्वस्थ रहें और आप जो चाहते हैं जीवन में वो आपको मिले, और इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कहते हैं कर्म ही आधार है। जो कर्म आप करते हैं उसी का एक आधार बनकर आपके भविष्य में आपके सामने आता है। इसलिए किसी को भी दोष देने से पहले आप अपने कर्म को जरूर देख लें कि आप वो कर्म कर पा रहे हैं या नहीं। आज हमने आपसे कहा था, जब हमने इतिहास की बात की, कि आज है विश्वकर्मा जयंती। बिल्कुल, इस सनातन परंपरा की हम बात करें तो पूरी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है विश्वकर्मा जयंती। और इस दिन औद्योगिक क्षेत्रों में, फैक्ट्रियों में लोहे मशीनों तथा औजारों से संबंधित कार्य करने वाले शोरूम, इन सब में विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। और इस अवसर पर जो मशीन है, उनके जो औजार हैं, जिसे कहते हैं, जिनसे वो अपना आजीविका, जिनसे वो कमाते हैं, पालन करते हैं, उन सब की बिल्कुल स्वच्छता, साफ सफाई की जाती है, उन पर नया रंग रोगन किया जाता है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भगवान उनकी पूजा करते हैं, और उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं के शिल्पी माने जाते हैं विश्वकर्मा जी। बिल्कुल, और तो आज माना जाता है कि सतयुग का स्वर्गलोक और त्रेता युग की लंका, द्वापर युग की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर आदि

का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा ही कराया गया था। आज उनकी जयंती है, तो उनकी जयंती पर हम आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्म का जो उन्होंने जो एक तरह से कहते हैं ना कि एक निरंतर आगे बढ़ने का, जो व्यवसाय की व्यवस्था, जो आपके औजार हैं, जो आपकी मशीनें हैं, जो कलपुर्जे हैं जिनके द्वारा आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उससे जुड़ा है भगवान विश्वकर्मा का ये विशेष पर्व। यानी कि फिर वही बात कर्म पर आती है कि आप अगर कर्म करते हैं, अपनी उन मशीनों का ख्याल रखते हैं, आप अपने उस व्यवसाय में उनसे जुड़े उन सभी लोगों का भी ख्याल रखते हैं जो आपसे जुड़े हैं, आपके कारखानों में काम करते हैं जो लोग, उनका ख्याल करते हैं, उनको भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद और जीवन में सुख समृद्धि का फल मिलता है, है ना। तो सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, और हम हैं क्योंकि म्यूजिकल योर्स, इसलिए हम अच्छे अच्छे एक से बढ़कर एक नगमे भी सुनाते हैं। एक और प्यारा गीत आपके लिए, सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं फिल्म रेनबो दिल से दिल तक, और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत ही खास व्यक्तित्व की बात करते हैं और उन लोगों की जिनका जन्म आज हुआ। तो आज एक ऐसे व्यक्तित्व की मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज उनका जन्मदिन है, 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाणा ज़िले के वडनगर में जन्मे श्री नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी आकाशवाणी टीम की ओर से, उनके सभी चाहने वालों की ओर से, और हम यही चाहते हैं कि वो हमेशा यशस्वी रहें, देश की प्रगति उन्नति और देश को आगे बढ़ाने में जो उनका संकल्प है उसके साथ वो निरंतर आगे बढ़ते रहें। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 26 मई 2014 से अब तक लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वाराणसी से लोकसभा सांसद चुने गए, भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति भी हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी की एक खास बात यह कि गुजरात के सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनके लिए सिर्फ हम और सिर्फ इन्हीं पंक्तियों के साथ हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि राष्ट्र प्रथम का मंत्र लिए, राष्ट्र प्रथम का मंत्र लिए जो अविरल बढ़ते जाते हैं, संकल्पों को सिद्ध बनाकर नव इतिहास रचते जाते हैं, साहस सेवा दृढ़ निश्चय की मूर्त हैं, वो देश के हित वैश्विक मंच पर भारत का गौरव ध्वज फहराते हैं। तो एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, पूरी आकाशवाणी टीम की तरफ से, उनके सभी चाहने वालों की तरफ से कि आप शतायु हों, यशस्वी हों और देश की इसी तरह से प्रगति उन्नति में निरंतर आपका सहयोग हमें मिलता रहे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक और यह है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, वक्त हो गया 7:51 और 9 मिनट रह गए हैं अभी मुझे यहाँ आपके साथ इस मुलाकात में अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। फिर आपसे 9 बजे मुलाकात होगी मुझ प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने में, लेकिन 8 बजे भी आपके साथ रहेंगे हमारे एक और दोस्त। जी हाँ बिल्कुल, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहेंगे उस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम में गौतम गौड़ साहब जो हैं वो आएंगे 8 बजे से 9 बजे तक आपके साथ प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, है ना। तो 9 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा और उसके बाद 9 बजे आएगा प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने, इसमें मैं आपके साथ 10 बजे तक रहूँगा, है ना जी। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं खास व्यक्तित्व की, एक और खास व्यक्तित्व जिनकी आज जयंती है, हम उनकी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के तिरुची जिले में जन्मे लालगुड़ी जयरमण, जी हाँ बिल्कुल, 17 सितंबर 1930 को आपका जन्म हुआ। भारत के जाने माने वायलिन वादक हैं आप। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और संस्कृत के संगीतकार के रूप में उनकी विशेष पहचान थी। अपनी समृद्ध कल्पना, तीव्र अभिग्रहण क्षमता और कर्नाटक संगीत में अग्रणी संगीतकारों की व्यक्तित्व शैली को उनके साथ समारोह में जाकर आसानी से अपना लेने की क्षमता के चलते ही बहुत ही जल्द लालगुड़ी जयरमण साहब अग्रणी, जिसे कहते पंक्ति के संगीतज्ञ बन गए। संगीत समारोहों से मिले समृद्ध अनुभव के अलावा अपनी कड़ी मेहनत, लगन और अपने अंदर उत्पन्न संगीत के विचारों को मौलिक अभिव्यक्ति देने की दृढ़ इच्छा के बल पर ये दुर्लभ प्रतिभा के एकल वायलिन वादक के रूप में उभर कर आए। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, आज उनकी जयंती है। हम उनको ढेर सारी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि संगीतकार या कोई भी आर्टिस्ट जिसे कहते हैं वो कभी कहीं जाता नहीं है। उसकी कला हम सब के अंदर रहती है, हृदय के अंदर विराजमान रहती है, जैसे कि लालगुड़ी जयरमण साहब की वायलिन कला हमारे अंदर है। तो आप सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो और भेजते रहिए अपने विचार। आप लिखते हैं, हमें अच्छा लगता है, आप अपने दिल से बहुत सारी बात लिखते हैं। 24 आवर्स हम आपकी सेवा में रहते हैं, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम लेके आते हैं, नई नई जानकारियाँ आपको देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें लिख सकते हैं। फिलहाल एक नगमा आपके लिए और फिर उसके बाद आपसे लूँगा इजाज़त।

बिल्कुल जी, आपको जब देख लेते तो जाने को कहीं दिल नहीं करता, लेकिन फिलहाल ये मजबूरी ये है कि हमें जाना होगा। अभी इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, हैदराबाद रहिए या सिकंदराबाद रहिए, जहां भी आप रहिए लेकिन मस्त रहिए। फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी 9 बजे आपसे। लेकिन अभी आ रहे हैं आपके पास गौतम साहब, फिलहाल एक और प्यारा नगमा, फिर उसके बाद न्यू गौतम जी आपसे मिलेंगे, ठीक है।

और समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से ये जानकारी सामने आई है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वे शनिवार तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और उसकी अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान आज टैगबॉल से शुरू होगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो भी सारे, दिखा दे एक बार फिर से दिन में तारे। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आपका प्यारा प्यारा होस्ट और दोस्त आरजे गौतम आ चुका है। जनाब जहां जहां जाओगे वहीं मेरे प्यार को पाओगे, और एक ही तो दिल है कितनी बार चुराओगे।

कौन कहता है मुझमें थकान अभी बाकी है। थकान छोड़िए और मकान से निकलने का समय आ गया है, बिकॉज जो बाहर की सुनते हैं वो बिखर जाते हैं और जो भीतर की सुनते हैं वो निखर जाते हैं, लेकिन आपको अपने बॉस की सुननी ही पड़ेगी, है ना। वेल, हम तो हर रोज गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आते हैं, लेकिन ना बताइए कितने बजे ऑफिस जाते हैं और ऐसी चिल्लाते हैं?

सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिले हो जाते हैं आपके भी प्लान जब आप फंस जाते हैं इन ट्रैफिक जैम। जी हाँ, ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने पैरेलल रिंग रोड का मास्टर प्लान तैयार किया है और सरकार ने 2026-27 के बजट में इसकी व्याख्या भी की है। और ये तीसरी रिंग रोड मौजूदा इनर और आउटर रिंग रोड के समांतर प्रस्तावित है। रॉकिंग न्यूज नहीं है ये, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, कैसे इससे उभरें? कई बार सही भी है, बहाने मिल जाते हैं ना लेट ऑफ।

जी हाँ, ब्रेकफास्ट में जरूर पोहा खावा, लेकिन ऑफिस में एकदम सज के जाऊं, वो बहुत जरूरी है ना। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, कारीगरी कमाल की होनी चाहिए। वेल, आज का दिन भी काफी खास है। मैं आपको बता दूं कि आज नहा धो के जाना चाहिए आपको। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा देवताओं के

बताइए आपको सुबह शाम है, ऐसे लोगों का ही तो नाम है। आपको भी नाम बनाना है तो काम करना पड़ेगा। फूक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिन खुद जले ना होए उजाला। हाय हाय यार, जैसे इश्क में लोग फूक देते हैं आपको, जैसे लाइक शाहरुख खान।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
11: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
12: इस बुधवार शाम 5:45 से 6 बजे तक, और जानिए SOL के कोर्सेज और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में।
13: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
14: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
15: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
16: कोयल सी तेरी बोली,
17: हाय
16: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
17: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
16: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
17: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
18: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

और आपको पता है कि मॉर्निंग वाली चाय लेकिन दिल को ना भाए सबकी राय। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम पता क्या है? अभी बताता हूँ, अपने काम से काम रखने का। तो गुजारिश कीजिए लोगों से कि यार स्टे अवे, आपका पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। और ये छोटी सी गुजारिश ही तो है, क्या पता बन जाए बात।

0: आपको पता है कई बार कुछ रिश्ते हो जाते हैं ठप क्योंकि खाली रहता है घर। पता है आप समझ नहीं पा रहे होंगे इस बात का मतलब। बता देता हूँ कि एक व्यक्ति एक गुरु के पास गया और बोला कि मेरी जिंदगी परेशानियों से भरी है, मुझे कुछ नया सिखाइए। गुरु ने उसके कप में चाय डालनी शुरू की और कप भर गया, लेकिन गुरु चाय डालते रहे। व्यक्ति बोला, कप तो भर चुका है गुरुजी। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम्हारा मन पुराने विचारों से भरा है, नई सीख उसमें कैसे आएगी? कुछ नया पाने के लिए कुछ पुराना जो है ना वो छोड़ना पड़ता है। आपको पता ही
1: अनुप्रिय

भरपूर वादा। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सुन रहे हैं आप। नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो भाई सारे? आरजी गौतम के साथ 102.6 FM, दिल से दिल तक, आपके दिल से मेरे दिल तक।

0: समझें? हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल समझ गए हैं जी, बिल्कुल। नौकरी तो ढूंढ ली है आपने, लेकिन उसके बाद भी मेहनत ढेर सारी करनी पड़ रही है। तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मुझे पता है ये दिल का दुख है। एचआर ने भी प्यार बहुत जताया होगा आपसे, पता है मुझे?

कल बड़ी बड़ी मीनार और सोने के दिनार ये दूर से चमकती हैं। कहते ना हीरे की चमक देखनी है तो रात का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमका करते हैं। लेकिन ये चमक और खाने में एक्स्ट्रा नमक, इस पर ध्यान जाता है आपकी बरकरार है। नमक नहीं, चमक।

0: जी हाँ, और ये प्यार जो है कम नहीं होगा। वेल बता दूं कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने चौथे चरण में साउथ दिल्ली मेट्रो रूट को एक्सटेंशन देने की तैयारी की है, और इसमें देश में पहली बार लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक मेट्रो कॉरिडोर पर 3 कोच वाली छोटी ट्रेन चलाई जाएगी।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

ऐसी वाइब्स के साथ खुशनुमा आलम को आता है बनाना, लेकिन अभी अभी अभी आपके होस्ट और आपके दोस्त को पड़ेगा जाना यार। मुझे पता है, जब भी मैं जाता हूँ आप कहते हैं तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, लेकिन मैं जाऊंगा तभी तो संजीव आएंगे। ट्विस्ट लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो और फारजे गौतम इज साइनिंग आउट। जनाब खुश रहो, आबाद रहो, यहां रहो या इलाहाबाद रहो, जैसा संजीव कहते हैं ना, आ गए द वेरी हैंडसम द वेरी टैलेंटेड संजीव बाजी, लेकिन डांस तो कर लो। हाँ, मेरे साथ भी एक स्टेप स्टूडियो में मैं भी कर रहा हूँ। यस।

नमस्कार, लीजिए सुनिए सुबह 9 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने

चार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से एक महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से किसी भी संबंधित व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया गया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। भारत में चीतों की बढ़ती आबादी 52 हो गई है, जिससे देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति की समीक्षा से ये जानकारी सामने आई है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वे शनिवार तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और उसकी अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। जापान के आइची नागोया में होने वाले एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान आज टैग बॉल से शुरू होगा और भारत अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे सुबह 9 बजे के मुख्य समाचार और अब बारी है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और माफ़ कीजिएगा, अब बारी है आपके पसंदीदा प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने की।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जहाँ ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और प्रोग्राम है दिल के तराने गाने नए पुराने। मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि 9 बजे से 10 बजे तक आपके साथ रहूंगा, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। और आज दिल्ली के अगर हम अपनी डेली के टेम्परेचर की बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर इस वक्त हो रहा है 31 डिग्री सेल्सियस और बादलों की आवाजाही जारी है। लुका छुपी खेल रहे हैं सूर्य देव के साथ बादल। और आज मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम बात करें दिल्ली में तो 31 डिग्री सेल्सियस यानी कि संभावना है और मिनिमम 24 यानी कि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है बिल्कुल जी, और उसकी अगर हम बात करें तो वो भी 86 के करीब है। और इसके अलावा हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। और कुल मिलाकर हम आपसे कहें तो मौसम में हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई है मौसम विभाग ने। हालांकि कल बारिश की बात थी तो कल बारिश नहीं हुई, थोड़ी बहुत छींटाकशी हुई है, लेकिन अब मेघ हैं भाई, अपनी मर्जी है उनकी, बरसे ना बरसे। लेकिन आपसे ज़रूर ये हमारी गुजारिश रहती है कि जब आप घर से निकलें तो उसका इंतज़ाम करके ज़रूर निकलें। अगर आपके पास छाता है, छतरी है, तो उसे लेकर निकलिए, नहीं तो रेनकोट पहन लीजिए। और टू व्हीलर्स के लिए स्पेशली आप ख्याल रखिए, क्योंकि जब रोड पर चलते हैं, बारिश पड़ रही होती है, सड़कें गीली होती हैं, तो स्किड होने का

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
4: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
3: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
4: हैं इतनी जल्दी?
3: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
6: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
7: मैम मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
8: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
9: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
6: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
10: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य

0: एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
4: इस बुधवार शाम 5:45 से 6 बजे तक और जानिए SOL के कोर्सेज और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और ये है आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, और प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। बिल्कुल दिल की बात करते हैं हम, और हम आपकी सेहत की चिंता भी करते हैं, और हम आपसे जुड़े हर मुद्दे पर बात रखते हैं, बयान देते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके जीवन में हर तरह का जो लाइफ में है वो स्मूथ बनी रहे लाइफ आपकी। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप थोड़ी सी ट्रैफिक की जो एडवाइजरी है जो समय समय पर दिल्ली पुलिस हर रोज़ जारी करती है, वो उसकी ट्रैफिक पुलिस की जो ऑफिशियल साइट है या ट्विटर अकाउंट है उस पर जाकर, मतलब आप एक्स अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने क्या एडवाइजरी जारी की। आज भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, लेकिन इसके मद्देनज़र जो स्टेडियम की तरफ जो आसपास जाने वाले रास्ते हैं वहाँ दोपहर 2 बजे के बाद से पुलिस की जो ने कुछ इंतज़ाम किए, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, कुछ डाइवर्जन किए हैं, पार्किंग और अरेंजमेंट की व्यवस्था भी की है। इसलिए अगर आप इस इलाके से होकर, इन रोड से होकर गुजरने वाले हैं तो बिल्कुल एडवांस में इस एडवाइजरी को देख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये हम सलाह देते हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डायरेक्शंस के मुताबिक ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा और मूवमेंट को चेंज किया जाएगा। तो आप बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की साइट पर जाके ये पूरी जानकारी लेके तब अगर आपको उस रोड से होकर निकलना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर आपको आनंद लेना है भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच का, तो अरुण जेटली स्टेडियम में जाना मत भूलेगा। और साथ ही अगर आपको आनंद लेना है बहुत ही प्यारे से म्यूजिक का, तो सुनते रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी रेनबो के साथ, दिल से दिल तक ये प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, और मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव उर्फ संजीव। सो एक और बहुत प्यारा नगमा बप्पी दा की आवाज़।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ, आपसे ये वादा है कि आपसे मुलाकात होती रहेगी और ये मुलाकात यूं ही निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि हम आकाशवाणी रेनो के माध्यम से, रेनबो के माध्यम से आपके पास बने रहते हैं 24 आवर्स। फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिए इजाज़त अगली मुलाकात होने तक, और आप अपना ख्याल रखिएगा। और हमारा तो मूल मंत्र यही है कि आप खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए, गाज़ियाबाद रहिए, या हैदराबाद रहिए, या सिकंदराबाद, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहिए लेकिन खुश रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: There we go. That was a beautiful track over there indeed by Muhammad Rafi from the movie Bheegi Raat, and the song was Dil Jo Na Keh Saka. Alrighty, time right now is 10:48 in the morning. Yes, it's a Thursday. And yes, let's take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: मेरे प्यारे देशवासियों हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है ये है जनगणना का अभियान यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है साथियों जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है जनगणना 2027 को

इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष

गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस पर तेलंगाना, हैदराबाद कर्नाटक और मराठवाड़ा वाले हैदराबाद क्षेत्र के लोगों को बधाई दी है। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से ये जानकारी सामने आई है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वे शनिवार तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। अमरीका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। अमरीका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और उसकी अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाले विधेयक पारित किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें विश्व शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम ने कल डोमिनिकन गणराज्य को 4-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तो ये हैं अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो।

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन। लेकर आई हूं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, यहां बॉलीवुड की ढेरों गॉसिप, फिल्मों के रिव्यूज और आपके लिए मौका, जी हां, बॉलीवुड सरताज बनने का। तो कनेक्ट हो जाइए अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ और करीब से और सुनिए मेरे साथ बॉलीवुड की बातें। देखिए बॉलीवुड जो है धर्मपथ पर निकल चुका है, ये बात आने वाली सभी फिल्मों से और जो फिल्में इस समय बड़े पर्दे पर लगी हुई हैं वो साफ हो जाता है। विजय की एक फिल्म हॉलीवुड में दस्तक देने को तैयार है, वहीं बाप बेटे की कौन सी जोड़ी जो है अक्टूबर में एक दूसरे का सामना करेगी। रामायणम को लेकर हम सभी जो है एक्साइटेड है कि कौन जो है वो रोल्स प्ले वाला है। तो कई किरदार तो सामने आ चुके हैं लेकिन अभी भी जिनका लुकआउट हुआ है उनकी भी बात करते हैं। अक्षय और सैफ को काफी टाइम बाद हैवान में हमने साथ देखा, कितनी कमाई कर रही है फिल्म बात करेंगे। लेकिन देखिए गणपति बाप्पा का रंग तो बॉलीवुड पे चढ़ा हुआ है और धर्मपथ पर बॉलीवुड निकल गया है, इसी से शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले बाप्पा को जरा मना लें।

देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि गणपति बापा से अपनी दोस्ती कुछ इसी तरह की होती है कि हम उनसे अपने दिल की हर बात कह देते हैं। कभी छुरियां परेशान करें या फिर कोई काम ना बन रहा हो। ऐसे ही अब बॉलीवुड देखिए, जब कई फिल्मों को लेकर बात नहीं बनी तो वे चल पड़ा है धर्म की दिशा में। जी हाँ, धर्म पथ पर जो है अब वो निकल चुका है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत अभी हाल ही में आई हनुमान अंश और रामायण की तैयारियां, जिन पर कि हमने देखा कि काफी छोटे बजट में ये फिल्में बनी हैं, लेकिन क्या

बॉलीवुड देखिए, जब कई फिल्मों को लेकर बात नहीं बनी तो वे चल पड़ा है धर्म की दिशा में। जी हाँ, धर्म पथ पर जो है अब वो निकल चुका है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत अभी हाल ही में आई हनुमान अंश और रामायण की तैयारियां, जिन पर कि हमने देखा कि काफी छोटे बजट में ये फिल्में बनी हैं, लेकिन क्या कमाल करती हैं। महाकाव्य हो या इतिहास पर बनी फिल्में, ये अपने आप में सच्चाई के साथ साथ दर्शकों को रिझाने का भी काम करती हैं।

हनुमान अंश की ही बात ले लीजिए, इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज बनकर सामने आई है कि महज 2 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ के आंकड़े को हिट करने जा रही है। जी हाँ, फिल्म जो है बाबा नीम करोली पर आधारित है और दर्शकों को इसका खूब प्यार भी मिल रहा है। कांतारा की बात करें तो जी वो लोक कथाओं, देवी लोक कथाओं पर आधारित है और इसके चैप्टर 1 और चैप्टर 2025 में आई इसको दोनों को ही सफलता मिली और 850 का कारोबार जो है फिल्म करती है। हनुमान की बात करें तो ये फिल्म भी जो सुपर हीरो के पर आधारित थी, सरप्राइज हिट रही, ये भी अपने आप में 300 करोड़ कमाती है और इसका बजट भी देखिए मात्र 40 करोड़ के आसपास था। वहीं ब्रह्मास्त्र काफी बड़े बजट में बनी, लेकिन आलिया और रणवीर की ये फिल्म भी काफी बड़ी हिट साबित होती है, 430 करोड़ का कारोबार करती है। इसी तर्ज पर ले लीजिए आदि पुरुष आई, कल्की 2898 AD आई। अब इस फिल्म ने भी अपने आप में देखे कितना बड़ा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, 1000 करोड़, 1000 करोड़ का। अब रामायणन की बात करें तो रामायण फिल्म अपने आप में दिवाली पर रिलीज होने जा रही है, लेकिन इसकी एक्साइटमेंट लोगों में इतनी है कि मेकर्स भी काफी खुश हैं। अब देखिए बजट हालांकि काफी बड़ा है इस फिल्म के लिए, लेकिन उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी है। अब आने वाली फिल्मों में हमने जब रामायण की बात की है तो हनुमान अंश 2 की भी बात कर लें। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कि पार्ट 2 जल्दी लेकर आया जाए और फिलहाल ये तो अपडेट नहीं है कि कब आएगा, लेकिन आएगा इतनी बात कन्फर्म है। ब्रह्मास्त्र 2 जहाँ रणबीर कि ये फिल्म भी आने को तैयार है और ये भी चर्चा बनी हुई है कि इस बार दीपिका पादुकोण इस फिल्म का हिस्सा हो सकती है। शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, रिलीज डेट भी सामने नहीं आई है, लेकिन हनुमान अंश 2, ब्रह्मास्त्र 2 जैसी फिल्में कंफर्म है कि ये आएंगी। इसी तर्ज पर प्रशांत वर्मा के निर्देशन में एक और फिल्म बन रही है जिसमें ऋषभ शेट्टी हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का टाइटल है जय हनुमान। तो ये सभी फिल्में हैं जिनका इंतजार रहेगा। महाअवतार एक एक्शन ड्रामा फिल्म परशुराम के जीवन पर आधारित और इसमें विक्की कौशल नजर आ रहे हैं, ये भी एक अपकमिंग फिल्म के तौर पर तैयार की जा रही है। वहीं वाराणसी, जी हाँ, इस पर तो हम सभी जानते हैं एक साईफाई फिल्म है, ये SS राजामौली के निर्देशन में बन रही है और अगले साल सिनेमाघरों में ये फिल्म दस्तक देगी। तो हमने देख लिया कि कैसे माइथोलॉजी के पथ पर चलकर बॉलीवुड आपको रिझाने की तैयारियां कर रहा है। सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरी सृजन।

0: भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ

अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अब देखिए सोशल मीडिया की बात कीजिए या व्यूअर्स की बात कीजिए, वो अपने आप में कयास लगाने लग जाते हैं। तो एक नाम जो काफी डंके की चोट पर सामने आता है वो मैथ्यू मैकॉगे का है कि हो सकता है वो महाराज की फिल्म के रीमेक में, हॉलीवुड रीमेक में फाइनल जो है बड़ी भूमिका में, यानी रियल भूमिका में नजर आए, लेकिन अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। और फिल्म की देखिए कि चीन में भी इसे काफी अच्छी कामयाबी मिली, बहुत अच्छी कमाई की, ओटीटी पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन

0: जाएगी 2005 में आई थी। कब होगा ये जैसे ही सामने आएगा आपको भी पता चल जाएगा।
1: Sexy.
0: तब तक हम ढोल बजाते हैं और थोड़ा जम के नाचते गाते हैं। सुनते रहिए रेनबो दिल से दिल तक, म्यूजिकली योर्स।

जी हाँ, ढोल बजा के जश्न मना के मैं भी ढूंढूंगी आज का बॉलीवुड सरताज अपने सवाल के साथ। तो बस से इस गाने को एंजॉय कीजिए और उसके बाद अपने मोबाइल को कसकर थाम लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी वो सवाल जो आज बनाएगा आपको बॉलीवुड सरताज। सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स।

मराठी, कन्नड़ जैसी फिल्मों में नहीं, इसके अलावा भी कई भाषाओं में इन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। और ये लोकप्रिय चेहरा आप सभी ने मालगुडी डेज, जो कि दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आया करता था, वहां जरूर देखा होगा। KGF में भी इनकी भूमिका को घर घर में पहचान मिली है, और कई बार तो है इन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें पद्म भूषण से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। और 16 सितंबर को ही अनाउंसमेंट में ये पता चलता है कि अब जो है अनंतनाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने जा रहा है। तो इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम अपने इन एक्टर दादा जिन्हें की अवार्ड मिल रहा है अनंतनाग को। और आप आगे सुनते रहिए। जी हाँ, एक बार और सुना दूँ क्या? हाँ, तो सवाल सुन लीजिए। सवाल है कि धमाल 1, 2, 3, 4 में आदि मानव का जो आदि और मानव के किरदार है वो किन एक्टर्स ने निभाए हैं? नाम भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

मोहित चौहान की आवाज में ये गाना धूम 3 से ही चलिए एंजॉय करते हैं और आगे आपके लिए काफी खबरें और हैं मेरे पास, सुनते रहिए प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: रेनबो दिल से दिल तक प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुरेश रजन। अब बात करते हैं, पहले बात सवाल की ही कर ली जाए, बहुत सारे जवाब सही आ रहे हैं और बहुत से गलत भी आ रहे हैं। बॉलीवुड सरताज बनने के लिए हमारे सभी लिसनर्स तैयार हैं। कौन बनता है इस बात से थोड़ी देर में तो पर्दा हटा दिया जाएगा, लेकिन सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। धमाल फिल्म 1, 2, 3, 4 में आदि और मानव का किरदार किन एक्टर्स ने निभाया है, उनके नाम आपको मुझे व्हाट्सएप करने हैं। यही है सही जवाब, वो क्या है, कुछ हिंट दूं क्या? नहीं नहीं, इतना आसान है तो आई एम श्योर आप गेस तो कर चुके हैं। जवाब भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। हम कई और फिल्मों की बात कर लेते हैं तो देखिए।

ये जोड़ी साथ में उतरी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदें उतनी सक्सेसफुल नहीं नजर आ रही। लागत की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 100 से 115 करोड़ में फिल्म बनकर तैयार होती है, लेकिन अब कलेक्शन भी देखें तो ग्रॉस और नेट काफी हताश कर देने वाला है। रिलीज को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कमाई करोड़ों की रफ्तार पकड़ने के बजाय लाखों में सिमटती नजर आ रही है। ये तो अपने आप में फिल्मी क्लाइमेक्स जैसा लग रहा है। देखिए बताती हूँ, कलेक्शन तो फर्स्ट डे 3 करोड़ की, सेकेंड डे 2.5 करोड़, फिर थर्ड डे 1.85 CR, 1.85 करोड़, और फिर फोर्थ डे बस 0.7 करोड़, 0.70 करोड़, 0.70 करोड़, और अब 0.50 करोड़ के आसपास। यानी जो बॉक्स ऑफिस का इसका कलेक्शन होता है नेटवर्थ इंडिया, तो 9.30 CR तक ही पहुंचा है, और वर्ल्ड वाइड भी फिल्म कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। तो फिल्म की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर भी नजर डाले तो मात्र 14.5 करोड़ का फिल्म जो है कमाई कर पाई है। अब इतनी लागत के साथ बनी फिल्म जब लाखों में सिमट जाए तो मेकर्स के लिए तो काफी टेंशन हो ही जाती है। चलिए अब हम थोड़ा सा टेंशन पर चलते हैं, ये गाना सुनाती हूँ आपको इन दोनों की फिल्म से, जिसमें दोनों नाचते गाते नजर आ रहे हैं, टेंशन मनाते नजर आ रहे हैं।

अब एक और फिल्म की कमाई की बात करें तो हालांकि देखा जाता है कि 40वें दिन तक आते आते फिल्म बड़े पर्दे पर से टाटा बाय बाय कर देती है, वहीं हनुमान अंश जो है 40वें दिन भी 8.25 crore का नेट कलेक्शन करती है, जो अपने आप में कई और बड़ी फिल्मों के 40वें दिन के कलेक्शन को मात दे देती है। सरप्राइजिंगली इस फिल्म की ओपनिंग बस 10 lakh थी फर्स्ट डे, और अब 40वें लाख ये करोड़ों में पहुंच गई है।

बिल्कुल ठीक है कि बॉक्स ऑफिस में कई फिल्में सच में चांस मारती हैं, लाखों से चलकर करोड़ों पर पहुंचती हैं और कुछ करोड़ों में तैयार होकर भी लाखों नहीं कमा पाती। अब यही तो बॉलीवुड की खासियत है, कुछ फिल्मों को दर्शकों का प्यार मिलता है और कुछ को नहीं। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल।

0: चलिए इसी बात पे एक बार चौधरी के साथ, तो यूं ही बने रहिए रेनबो पर दिल से दिल तक।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन और मेरे साथ कोई और भी आ चुकी हैं। कौन है ये? हेलो
2: हेलो
1: जी, स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। हमारे सभी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं और डेडिकेट हैं, कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है शमी। शमी yes, चलिए सवाल पर आते हैं। और शमी, सवाल ये था कि धमाल 1, 2, 3, 4 में आदि मानव के किरदार किन एक्टर्स ने निभाए हैं, जवाब बताइए।
2: ओके मैम, आदि जो था उसमें अरशद वासी जी हैं और जो मानव है उसमें जावेद जैफरी जी हैं। तो ये तो कंटिन्यू हम लोग काफी टाइम से मूवी देख रहे हैं, तो अभी तो नाम के साथ साथ तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर के और भी नेम याद हो गए और मतलब फर्स्ट वाली धमाल मूवी तो ऑलमोस्ट याद ही हो चुकी है बार बार बार देख के।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है शमी और मुझे लगता है काफी अच्छी नॉलेज भी है आपको, आप हमारा प्रोग्राम काफी रेगुलरली सुनती भी है आई एम श्योर।
2: रेगुलर भी, और एक्चुअली क्या है मॉर्निंग टाइम एक रूटीन होती है, मैं 5 o'clock उठती हूँ तो उस टाइम तो मतलब रेडियो नहीं स्टार्ट होता है, बट 6 o'clock टू जब तक मेरा वर्किंग रहता है तो ऑलमोस्ट फुल डे जो है वो ऑन रहता ही रहता है।
1: क्या बात है शमी, सच में बहुत अच्छा लग रहा है।

0: Okay, that was Brother by DJ Khaled over there and Post Malone. Yes, time right now is 12:31. We just crossed the halfway mark over here on the show called Play It Cool with me, Dave. And yes, we're going to take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: Tazi tazi, mehki mehki, josh hai zabardast, ye chai badi hai mast.
2: Pataka chai, gazab ka swaad.
3: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती?
4: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
3: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते

0: आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: Alrighty, you guys are back again on the show. Play It Cool with me, Dave. And yes, 12:33, the Thursday afternoon. And let's go back into a different genre altogether and into past altogether. Let's listen to a nice classic number by Scorpions. And this one is called You and I.

दोपहर के 1 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वीं सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश और विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत अन्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आज दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में 4 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी। इसका 51,00,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस पर तेलंगाना, हैदराबाद कर्नाटक और मराठवाड़ा वाले हैदराबाद क्षेत्र के लोगों को बधाई दी है। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिनमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से ये जानकारी सामने आई है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो ये है अब तक के मुख्य समाचार, सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से न्यूज ऑन एआईआर ऐप लाइव स्ट्रीमिंग वेव्स जैसे अनेक कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट हैं। मैं हूं दिल्ली की चाशनी गुरी सृजन, एक बार फिर हूं आपके साथ लेकर प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। इस प्रोग्राम के लिए आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर नोट कीजिए, ये है 9886070709868107070। और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप और क्या उस गाने को सुनने की है कोई खास वजह। पहली रिक्वेस्ट मुझे मिल चुकी है, ये है हमारी श्रोता कविता जो कि देवभूमि उत्तराखंड से हमें सुन रही हैं और इनकी पसंद का गाना ये जी हाँ धड़कन फिल्म का टाइटल ट्रैक अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में।

0: बस तुम रहते।
1: ये गाना जिसकी रिक्वेस्ट की हमारी लिसनर कविता ने उत्तराखंड से, हमारी ये श्रोता, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली के चाशनी गुरी सृजन, और आप भी यकीनन इस कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइश, अपनी पसंद भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। अगली रिक्वेस्ट हमें मिली है हमारे दिल्ली के रेडियो लिसनर क्लब संजय मालाकर, बबलू कश्यप, नवाब अहमद भारती, सिराज मिथुन, पिंटू दीवाना, अशरफ अली, इन सभी ने सुनना चाहा है ये गाना। तो आइए सुनते हैं हम भी एक बार फिर अभिजीत को।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, और इस गाने की रिक्वेस्ट भेजी है संजय मालाकर, मिसेस मीरा, मयंक, पुष्पा, ये सभी आदर्श नगर से हमारे श्रोता हैं। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: रेनबो से मेरा वाला सॉन्ग 102.6 MHz से प्रोग्राम के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे नंबर 9868107070 पर। इस गाने को हमारे लिसनर्स ने सुनना चाहा SP बाल सुब्रमण्यम की आवाज़, फिल्म है साजन। और अगला गाना इस पर आने से पहले एक छोटा समय ब्रेक ले रही हूँ, तब तक आप चुनिए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं और भेज दीजिए मुझे उस गाने के बोल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर,

0: और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

बेहद खूबसूरत सा ये गाना फाल्गुनी पाठक की आवाज में, जिसे सुनना चाहे हमारे श्रोता अशरफ अली, नवाब अहमद भारती, बबलू कौशक कौश कश्यप, अवंतिका, ये सभी रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग अपनी दोस्त रजन के साथ। अगली रिक्वेस्ट आ चुकी है नरेंद्र सोनी जी, देवीगढ़ पटियाला से हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम इन्हें पसंद आ रहा है और जितने भी गाने प्रोग्राम में हमारे लिसनर्स ने चाहे हैं वो सब इन्होंने भी सुनने चाहे हैं। राजा हिंदुस्तानी का गाना है और अलका याग्निक की आवाज़ है, तो आइए हम सभी सुन

अब नरेंद्र जी ने यहाँ पर एक खास वजह बताई है इस गाने को सुनने की। ये कहते हैं कि मेरे घर एक नन्ही सी प्यारी सी बिटिया आई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त, और आपकी गुड़िया को भी हम ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। खुश रहिए और सुनते रहिए हमारे साथ रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूँ दिल्ली की चाशनी गुरी सृजन आपके साथ। भेज दीजिए आप भी अपनी रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, बस यूं गई और यूं आई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
0: सुन रहे हैं आप प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। और इस गाने को, जी हाँ, अगला गाना जो मैं प्ले करने जा रही हूँ, इसे सुनना चाहा है गुलफाम खान, जो कि दिल्ली शाहदरा से हमें सुन रहे हैं, सनी देओल की फिल्म गदर से। प्लीज ये वाला गाना जरूर प्ले कर दीजिए। प्रीति उत्तम के और उदित नारायण की आवाज में आइए हम सभी सुनते हैं मुसाफिर जाने वाले।

सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। अगली रिक्वेस्ट भी जल्दी से शामिल कर लेते हैं। ये है रोहित श्रीवास्तव जी दिल्ली से, सुनना चाहते हैं काइट्स मूवी का गाना दिल क्यों ये मेरा शोर करे। और मैं ये शो नहीं कर रही हूँ, ये गाना वाकई बहुत खूबसूरत है, आइए हम सभी इसे सुनते हैं।

जहाँ दिल ने शोर किया चिट्ठी आई है, ये सभी गाने जिन्हें हमारे मित्रों ने, हमारे सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा, इस गाने की फरमाइश भेजी है प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में पिंटू दीवाना, मुन्नी प्रिंस और ममता ने मंगोलपुरी से ये हमें सुन रहे हैं।

अफरोज शेख और नेमुआ सुपौल बिहार से हमें भेजा है इस गाने को हमारे श्रोता परिवार ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

इस गाने को सुनना चाहे कंचन ने सोनिया विहार दिल्ली से, आरव अंश, यश, यमुना प्रसाद, ये सभी हमारे श्रोता हैं जिन्होंने सुर मूवी का गाना चुना है। और आइए हम सभी इस गाने को सुनते हैं। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग रेनबो 102.6। सुनते रहिए दिल से दिल तक।

अभी जा अभी जा कहकर ही तो मैंने गीतिका को बुलाया है कि आओ और गद्दी संभालो। गीतिका लेकर आएंगी अगला प्रोग्राम आशियाना, अक्षय वट सेगमेंट रहेगा। 2 बजे से आप इन्हें सुन सकते हैं और उससे पहले आप न्यूज़ भी सुनेंगे। अगला प्रोग्राम होगा रेडियो डॉक्टर, टाइम रहेगा 3 बजे का, 3 बजे का, और टॉपिक है किडनी एंड यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज। जरूर जुड़िए हमारे सभी कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी कुरेश सृजन को दीजिए इजाजत, और जाते जाते लीजिए आखिरी फरमाइश, आखिरी गाना जो कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट किया है कृष्ण कुमार मिश्र जी ने, दयालपुर दिल्ली से हमारे लिसनर। तो आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में कोई मिल गया फिल्म का टाइटल ट्रैक। तो एक बार फिर स्वीकार कीजिए मेरी नमस्कार।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं और पेश हैं एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के यशोभूमि में 5 सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत अन्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। प्रवर्तन निदेशालय आज दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में 4 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली की आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस पर तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठवाड़ा वाले हैदराबाद क्षेत्र के लोगों को बधाई दी है। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनरावास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से ये जानकारी सामने आई है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 से खेला जाएगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बनी रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीते कौनियाल और लेकर आई हूं आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम अक्षय वट, जो समर्पित है हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे बुजुर्गों के लिए। और हम ये जानते हैं, मानते हैं और इसको दिल से आत्मसात भी करते हैं, जहां बुजुर्ग हैं वहां आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें सर्वत्र यही प्रयास करना है कि हम अपने घर के बुजुर्गों का रखें, बहुत सारा ख्याल उन्हें मान दें, सम्मान दें, प्रेम दें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि उम्र के जिस पड़ाव में आज वो हैं, इस पड़ाव में उनके साथी बने, उनके सारथी बने। और सारथी बनना आसान नहीं, सारथी बनने के लिए कभी कभी कहने से ज़्यादा सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के शो पर हम यही बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने घर के बुज़ुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं, क्योंकि जब आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे ना, तब आपको महसूस होगा, पता लगेगा कि उनकी क्या कुछ परेशानियां हैं। और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू हो गया है आज से। इसके मुताबिक भी आपको हम रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए। वो इसलिए क्योंकि आपके घर के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और बस आप छोटा सा काम कर रहे हैं, वो ये कि रोजमर्रा आप समय निकाल रहे हैं उनको सुनने के लिए। जितनी शुद्धता, जितने प्यार से आप हमें सुनते हैं ना, उतने ही प्यार से उन्हें भी सुनिए। और हाँ, बीच में बिल्कुल रोकना टोकना नहीं, क्योंकि जहां आपने रोका वहीं वो नाराज हुए, और जहां वो नाराज हुए वहां भी आपको लगा कि मेरी बात तो सुनी नहीं जाती है। जीवन के इस पड़ाव में ना, हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो बस हमें सुने, हमारी बातों को सुने, हमें समझे। और वो आप ही हैं जो अपने घर के बुजुर्गों को सुन सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल। और प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है अक्षय वट, यानी कि जहां हम बात करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स के बारे में। और हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे वरिष्ठ नागरिक हमारे लिए है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और इस बात का ख्याल कौन रखता है? इस बात का ख्याल रखते हैं हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। और आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन है। और इनके जन्मदिन के उपलक्ष में सर्वप्रथम हम इन्हें ढेरों बधाइयां देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि प्रगति का रास्ता जो आपने हमें दिखाया है, उस प्रगति के रास्ते पर, उस मार्ग पर हम हमेशा अग्रसर रहें। आप हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका जन्मदिन और के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान। और इसके तहत जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा की पहल यानी कि शुरुआत की जा रही है। और इस अभियान के तहत यानी कि सेवा संकल्प अभियान के तहत बहुत

सारे आयोजन किए जा रहे हैं, आप सभी सीनियर सिटीजन्स, हमारे वरिष्ठ नागरिक इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर यानी कि हेल्थ चेकअप्स आयोजित किए जा रहे हैं। 25,000 बुजुर्गों की जांच की जाएगी और इस अभियान के तहत विशेष रूप से दिल्ली व अन्य राज्यों में स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग मिलकर 25,000 वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर रहा है। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, तो आप इन शिविरों में ले जाकर अपने घर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज करा सकते हैं और इन शिविरों में मुफ्त परामर्श एवं मुफ्त में दवाइयां भी दी जाएंगी। साथ ही साथ बीपी, शुगर, आंखें आदि इन सब का भी चेकअप किया जाएगा। तो आपके लिए है सुनहरा मौका, आज से ये अभियान शुरू हो रहा है, 17 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो आप निकट के शिविर हेल्थ कैंप में जाकर अपने बुजुर्गों का निशुल्क इलाज करा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा सामाजिक और सुरक्षा एवं पेंशन से संबंधित भी आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि इस अभियान के तहत हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके अगर पेंशन की बात की जाए तो पेंशन का सरलीकरण किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना यानी कि नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जैसी कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रुकी हुई पेंशन्स की बहाली होगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और प्रशासनिक कैंपों के माध्यम से उन बुजुर्गों की समस्याओं का तुरंत निवारण किया जाएगा जिनकी वृद्धावस्था पेंशन तकनीकी कारणों से रुक गई थी। तो है ना, आपके लिए ये बहुत ही लाभप्रद जानकारी। तो हम यही चाहते हैं कि आप सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बने। आपके घर में बुजुर्ग हैं या वो बुजुर्ग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों से कहें कि आपको वो इन हेल्थ कैंप्स में ले जाएं, और अगर आपकी पेंशन से संबंधी कोई भी समस्या है जिस पर कार्यवाही आगे नहीं हुई है, रुकी हुई है आपकी पेंशन, तो इन के लिए भी आपके लिए कार्य किया जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर या फिर प्रशासनिक कैंपों के माध्यम से बुजुर्गों की रुकी हुई सैलरी या उससे संबंधित जो पेंशन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन है और आपके लिए ना हमेशा सोचा जाता है और कहते हैं कि हम अपने जीवन में सबसे बेहतरीन काम करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे लिए समय समय पर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो हमारे और भी ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। तो हम तो आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते जा रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि वो हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं और नित्य प्रति वो अगर कुछ सोचते हैं तो वो हमारे देश के बारे में सोचते हैं, देश के लोगों के बारे में सोचते हैं। और अगर इस अभियान की बात की जाए तो ना केवल हमारे बुजुर्ग, ये हमारे जो किसान हैं, हमारे जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स हैं इस अभियान के तहत, और हम चाहते हैं कि आप इन सभी स्कीम्स से रूबरू हो। आपको हम इनके बारे में जानकारी देंगे हमारे अगले अन्य कार्यक्रमों में, और अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप भी इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको निरंतर जानकारियां देते हैं और आकाशवाणी के माध्यम से तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको हर उस बात से रूबरू कराएं जो आपके बेहद काम की है। तो आप लाभ उठाएं और लाभ प्राप्त करने के बाद हमें भी संदेश भेजें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस कड़ी में आपके सच्चे वाले दोस्त हैं। क्यों सच कहा ना मैंने, जो दोस्त एकदम सच्चा होता है वो यही प्रयास करता है कि आप तक वो जानकारी पहुंचे। और भी कुछ जानकारियां हैं मेरे पास सीनियर सिटीजन से संबंधित जो जुड़ी हुई हैं सीधा सेवा संकल्प अभियान से, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं जल्द हाजिर होंगी और आपके साथ मैं साझा करूंगी कि आप और कौन सी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं सेवा संकल्प अभियान 2026 के माध्यम से। तो बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए हमें हर दम हर पल, क्योंकि हम हैं आपके साथ, आपके सच्चे वाले दोस्त। आकाशवाणी पर आप सुन रही हैं इस वक्त ये कार्यक्रम FM रेनबो पर, और हमारा प्रयास आपका सुखद जीवन और सुखद
जीवन के बीच आपके और

हमारी दोस्ती यूं ही ताउम्र चलती रहे, यही तो हम चाहते हैं और यही हम प्रयास करते रहे। तो एक बार फिर से हमारी ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

और विजय भव, यानी कि हम अपने सभी संकल्पों में सार्थक हों, विजय प्राप्त करें, यही तो हम चाहते हैं। और इसके लिए नित्य प्रति कार्य भी किया जा रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभियान सेवा संकल्प शुरू हो चुका है आज से, और ये चलने वाला है जी 17 अक्टूबर तक। और हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए कई सारी योजनाएं हैं इसके तहत, जैसा कि आपको हमने बताया कि अब जितने भी आपके लिए मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर हैं, उसके साथ आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना है, और इसके तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज दिए जाएंगे। यानी कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत व्यय वंदना कार्ड, स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ हर वरिष्ठ नागरिक को मिलेगा, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी क्यों ना हो। इसके तहत उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलता रहेगा। अच्छा जी, उसके साथ आपको बताते हैं कि निशुल्क सहायक उपकरण वितरण भी किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से अभियान के विभिन्न शिविरों जैसे दिल्ली और के लाल किला मैदान में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को उनकी गतिशीलता मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण बांटे जा रहे हैं। और इसके तहत छड़ी

व्हीलचेयर, सुनने की मशीन और कई वस्तुएं जैसे कि चश्मे भी मुफ्त में दिए जा रहे हैं। आपको हमने अवगत कराया कि किस तरह से सोशल सिक्योरिटी और पेंशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं बुजुर्गों की, वो भी सुलझाई जा रही हैं, क्योंकि आज से शुरू हो गया है सेवा संकल्प अभियान। यही नहीं, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अपने आप को और भी ज्यादा सशक्त समझें, क्योंकि आज डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में डिजिटल साक्षरता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को प्लेटफॉर्म चलाना, ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी एप्स का उपयोग करना और ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रहने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप इन कैंप्स का जरूर हिस्सा बने, क्योंकि कहते हैं कि हम उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हों, लेकिन हम नित्य प्रति कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। और सेवा संकल्प अभियान हमारे देश के हर नागरिक को कहीं ना कहीं सशक्त करेगा, चाहे वो हमारे घर के बुजुर्ग क्यों ना हों। और कहते हैं कि जीवन में कहीं पर, कहीं भी, किसी भी मोड़ पर हम सीख सकते हैं, और सीखने से हम निश्चित रूप से ही सशक्त होते हैं। तो सेवा संकल्प अभियान उसी का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। ये अभियान शुरू हो रहा है आज से, यानी कि 17 सितंबर से। जैसा कि हमने कहा कि आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन

0: ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: और कहते हैं कि जीवन में अगर हम एक अच्छा काम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सुखद अनुभूति होती है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अगर किसी के लिए जीवन काम आ जाए तो उससे बेहतर चीज कुछ नहीं होती। आपके रक्त की किसी को आवश्यकता है, आपका रक्त किसी की जान बचा सकता है। तत्काल रक्तदाता की आवश्यकता है। रक्त समूह ओ नेगेटिव अथवा ओ पॉजिटिव है। एक पेशेंट को जरूरत है आपके रक्त की। PSRI हॉस्पिटल, साकेत, नई दिल्ली में। जो भी व्यक्ति रक्त देने के इच्छुक हों वो संपर्क कर सकते हैं 9811353879। एक नंबर और है जिसे आप नोट कर सकते हैं, 9810119294। ओ नेगेटिव अथवा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है PSRI हॉस्पिटल, साकेत, नई दिल्ली में। तो ये अच्छा काम कर लीजिए ना।

जो भी व्यक्ति रक्त देने के इच्छुक हों वो संपर्क कर सकते हैं 9811353879। एक नंबर और है जिसे आप नोट कर सकते हैं 9811199294। ओ नेगेटिव अथवा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है PSRI हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली में। तो ये अच्छा काम कर लीजिए ना।

और अब समय हुआ है हमारे अगले विशेष कार्यक्रम का। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है, एनसीईआरटी पर आधारित है और निश्चित ही आप इस कार्यक्रम से ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे, यही हमारी कामना है।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी पूजा और पायल जी का, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर तहसील खोलायत जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य

पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है, तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा, जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में, ऐसे जंगल जहाँ पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियां हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा, वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा। आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा। तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा, वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती, है तो काल्पनिक लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ, जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओ, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रम।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन

0: তীর্থ জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
1: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
2: वे मनुष्य

0: तीरे।
1: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
2: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार।

0: सत्य विधाता जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में

0: साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्नभंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा, अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश

0: इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वाइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे

रविन्द्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविन्द्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तान

0: के नीचे होता है और वो उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है। आदमी 50 का होता है और 90 तक वो बढ़ता ही रहता है। किसी का जल्दी बढ़ जाता है, किसी का बाद में बढ़ता है। और इस बढ़ते हुए प्रोस्टेट से पेशाब में रुकावट आने लगती है,
1: ठीक है।
0: जो बहुत ही कॉमन समस्या है और हर आदमी को फेस करनी पड़ती है। और इसमें कैंसर होने का भी खतरा होता है, जिसको भी खतरा बढ़ता चला जाता है, जिसको एक पहलू माना जाएगा। दूसरा पहलू है पेशाब की बाकी समस्याएं, जो औरत आदमी दोनों झेल सकते हैं, जो है रात को पेशाब बार बार जाना, पेशाब पे कंट्रोल ना रहना, या इन्फेक्शन और पथरी। ये सारी चीज़ें उम्र के साथ बढ़ती चली जाती हैं।
1: जी, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निदान आपसे जानेंगे। और अगला सवाल लेने से पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: सुधीर सिंह जी का कुतुबगढ़ से इन्होंने लिखा है, नमस्कार। और साथ ही इन्होंने जो सवाल भेजा है वो लिख रहे हैं कि इनका जो बेटा है उसकी उम्र 9 साल की है, वो रात में सोते समय बिस्तर पर यूरिन पास करता है, साथ साथ कभी कभी खड़े खड़े भी कर देता है, और ये समस्या इनको लगातार बढ़ती जा रही है। किस तरह से समाधान होगा?
1: इस समस्या को, हालांकि प्रॉब्लम बच्चे की है, बट फिर भी बता देता हूँ। इस समस्या को

0: देखिए, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज अपने आप में सबसे बड़ा कारण है, और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर मिलके अपने आप में बुजुर्गों में 50 साल से ऊपर 2/3 केसेस में किडनी खराब होने का कारण होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर इन दोनों में से कोई भी दिक्कत है, तो अपनी रेगुलर जांच करवाएं। जांच का भी मैंने संकेत बताया है, यूरिन की जांच करवानी है और ब्लड की जांच करवानी है। इन बीमारियों में यूरिन में परेशानी ज़्यादा पहले आती है, तो यूरिन की जांच कराना भी उतना ही ज़रूरी है। और शुरुआत में एक अल्ट्रासाउंड कराना, देखने के लिए कि किडनीज कैसी हैं,
1: जी
0: किडनीज में कोई रुकावट तो नहीं है, कोई किडनी बनावट तो खराब नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगी। फिर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आई हैं ब्लड प्रेशर की भी और शुगर की भी, जो शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के साथ साथ किडनी की डैमेज को भी धीरे करती है।
1: जी
0: तो अगर हम समय रहते ऐसी दवाइयां चालू कर दें, तो आगे जाके किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
1: जी
0: तो अगर हम अच्छा ब्लड प्रेशर, अच्छा शुगर कंट्रोल रखें, रेगुलर जांच करवाएं और ठीक से नियमित रूप से अपनी दवाइयां लें, तो इन बीमारियों के बावजूद भी हम अपनी किडनी बचा के रख
1: जी
0: सकते हैं।
1: बेसिक जो है रीज़न वो है डायबिटीज़ और हाई बीपी जैसी समस्याएं जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ नमस्ते,
1: नमस्कार सर, अपना नाम बताएं।
2: रघुवीर जी बोल रहे हैं उत्तराखंड से। मैं
1: जी सवाल बताएं सर।
2: 55-56 साल का हूँ, और पैसा जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उम्र के साथ साथ थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो पैसा बार बार आता है, मतलब हर घंटे में पैसा
1: ठीक है
2: आता ही है।
1: जी।
2: तो मेरा जो है अल्ट्रासाउंड चेक हो रखा है, डॉक्टर साहब नॉर्मल बता रहा है, शुगर भी नॉर्मल बता रहा है, और बीपी थोड़ा बड़ा है,
1: ठीक है।
2: और उसके लिए मुझे क्या सावधानी करना पड़ेगा डॉक्टर साहब?
3: दो बातें समझने वाली है रघुवीर जी की। पहला कि सिर्फ प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल होने से समस्या नहीं हो, इसका ज़रूरी नहीं है। आप इसको ऐसे समझें कि प्रोस्टेट एक सेब की तरह है, और सेब में बीज कितने दब रहे हैं अंदर। एक छोटे सेब में भी बीज दब सकते हैं, और हो सकता है बड़ा सेब हो उसमें भी बीज ना दब रहे हों। कहने का मतलब यह है कि प्रोस्टेट के साइज एक पैरामीटर है, बट उसके होने के बावजूद भी पेशाब बार बार जाना, पेशाब खुल के ना आना, ये सारी बातें हो सकती हैं। और पेशाब बार बार जाना अपने आप में एक पेशाब की थैली की समस्या हो सकती है। आपको पहली सलाह तो ये रहेगी कि पानी कम पीजिए, एक बार में चाय कॉफ़ी कम से कम रखिए। अगर तंबाकू का सेवन करते हैं तो तंबाकू का सेवन बंद कर दीजिए, और पेशाब की जांच कराकर एक यूरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, जिससे वो आपको आगे ज़रूरत के हिसाब से बाकी धार की जांच वगैरह करवा के दवाइयाँ जो ज़रूरत हो वो लिख सके।
1: जी तो डॉक्टर साहब, इनको आपने समाधान बता दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप महाजन, नेफ्रोलॉजिस्ट एम्स न्यू दिल्ली, और डॉक्टर अनीश कुमार गुप्ता जी, यूरोलॉजिस्ट न्यू दिल्ली। तो आप सभी से जो भी आप सवाल करना चाहते हैं, नंबर्स उसके लिए आपको बता देते हैं। नंबर्स हैं 011-234-210-80, 011-234-210-82। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो हमारे बहुत सारे कॉलर्स इस समय लाइन पर, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: जी नमस्कार सर, अपना नाम बता दें।
2: मैं आरएस मलिक बोल रहा हूँ रोहतक से। मेरी एज 70 ईयर्स है
1: जी।
2: मुझे टेस्टिस में कुछ खुजली सी महसूस होती रहती है बार बार, बार बार उनको टच करना पड़ता है, और उसका मैं अल्ट्रासाउंड भी कराया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है।
1: ठीक है।
2: और ना ही मुझे शुगर है, और बीपी मेरा कंट्रोल में रहता है।
1: बहुत अच्छी बात है जी।
2: तो मुझे गाइडेंस चाहिए भी, मैं क्या करूं?
3: इस समस्या को कभी कभी क्रोनिक और कैल्जिया, या फिर क्रोनिक जिसका मतलब है बहुत दिनों से चलने वाला टेस्टिस में दर्द कहते हैं, या एक अटपटा सेंसेशन जैसे आपको हो रही है, तो इसके लिए कोई ऐसा मूल इलाज नहीं है। नंबर एक कि मैं आपको 10 दिन दवाई दूं और आप ठीक हो जाएं, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हल्का है तो इसके बारे में चिंता

0: तो डॉक्टर से लगभग 2-3 ईयर्स तक दवा चला, ठीक हो गया, लेकिन बाद में शुगर हो गया अभी 1 साल से लगभग, तो उसमें भी दवाई खा रहे हैं। तो इसमें क्या सावधानियां बरतने चाहिए? और डॉक्टर साहब से तीसरा सवाल है कि भारत में बहुत तेजी से सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट बढ़ रहे हैं, मतलब हर 10 में से 2 30-30 बरस के बीच का लड़का का या लड़की का डायलिसिस हो रहा है। तो हम ऐसी क्या सावधानियां बरतें जो पेशेंट डायलिसिस पे ना जाए, अपनी किडनी को अच्छे लाइफ दे सके, इसके बारे में बताएं।
1: जी
2: नमस्कार जी, आपके तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। सबसे पहला आपका सवाल था कि डायलिसिस पे ब्लड प्रेशर हाई होना। ज्यादातर मरीजों में, तकरीबन 90% लोगों में जिनको डायलिसिस के बावजूद ब्लड प्रेशर हाई है, उनमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है। मतलब डायलिसिस के दौरान पानी पूरा नहीं निकाला जा रहा। तो जिस भी आप डायलिसिस सेंटर में जाते हैं, वहां पे डॉक्टर को दिखाएं, एक बार बात करें। हो सकता है पानी ज्यादा निकालने से इनकी जो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो कम हो जाए, दवाइयां कुछ कम हो जाए। ठीक तो नहीं होंगी, पूरा तरह से दवाइयां खत्म तो नहीं होंगी, बट काफी कम हो जाएंगी अगर हम पानी की मात्रा ठीक कर लें शरीर में।
1: जी
2: इसी में आपने दूसरा सवाल पूछा था कि औसतन लाइफ कितनी है डायलिसिस पे। डायलिसिस अपने आप में किडनी का काम 10 से 12% कर देता है, जो कि औसतन रूप से आपके चलने फिरने, कामकाज करने के लिए ठीक रहता है। हमारे पास कुछ ऐसे मरीज हैं जो डायलिसिस में 25-25 साल से भी हैं, 20 साल से ऊपर तो काफी लोग हैं। तो डायलिसिस में भी आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ काफी देर तक चल सकते हैं, अगर आप दवाइयां बराबर लेते रहें, नियमित डायलिसिस कराते रहें, और जो परहेज और जो बाकी चीजें डॉक्टर बताएं उसको फॉलो करें। परेशानी उन लोगों की है जिनको साथ में डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज दीमक की तरह पूरे शरीर को खोखला कर देता है, और डायलिसिस से हम सिर्फ किडनी ठीक कर पा रहे हैं। तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम या ब्रेन का स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ डायलिसिस में कम होती है। तो अगर हम औसतन देखें तो एक डायबिटीज का पेशेंट डायलिसिस में 3 से 5 साल के लिए रहता है, जबकि जिसको डायलिसिस नहीं है वो काफी साल रह सकता है। दूसरा सवाल आपका था कि शायद पिताजी के आपको पहले प्रोटीन जा रहा था और अब डायबिटीज हो गई है। प्रोटीन जाना अपने आप में किडनी की एक परेशानी है, जिसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण रहते हैं, और बायोप्सी करके ही जैसी बीमारी आती है उसके अनुसार इसका इलाज किया जाता है। क्योंकि आपके पिताजी को अब डायबिटीज हो गई है, तो अच्छा, जैसे मैंने शुरू में ही बताया प्रोग्राम के, अच्छा शुगर कंट्रोल, और जैसे मैंने बताया बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो शुगर कंट्रोल के साथ साथ किडनी को भी बचा के रखती हैं। तो अपने डॉक्टर से मिलिए, परामर्श कीजिए और ऐसी दवाइयों के बारे में उनसे जानिए। तीसरा सवाल जो आपका काफी महत्वपूर्ण था कि सीकेडी की बीमारी, जो किडनी डिजीज की बीमारी है, वो काफी तेजी से बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण हैं। आज के मुद्दे पे जैसे हम बुजुर्गों के बारे में, ज्यादा उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया 2/3 डायबिटीज और ब्लड प्रेशर रहते हैं, 1/3 बहुत सारी और बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कुछ प्रकार के कैंसर, पथरी की परेशानी, प्रोस्टेट की परेशानी, यूरिन इन्फेक्शन, ये सब कारण हो सकते हैं। बचने का सबसे आसान मूल मंत्र यही है कि सबसे पहले अपनी किडनी की हेल्थ के बारे में जानिए। इसके लिए बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड है, जो हर शहर, हर कस्बे में आसानी से और सस्ते में हो जाते हैं। ऐसे कुछ टेस्ट करवाएं ताकि आपको किडनी के हेल्थ के बारे में पता चले, बाकी बीमारियों के बारे में जानिए। खान पान का सेवन अच्छा रखिए, फिजिकली फिट रखिए, वजन ठीक रखिए, सिगरेट, तंबाकू, इन सब पदार्थों को अवॉइड रखिए। और अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैमिली में किडनी डिजीज या पथरी की परेशानी, तो अपने डॉक्टर से नियमित संपर्क पे रहिए।
1: जी, अगला जो हमारे पास मैसेज है वो है इंदर जी का, रोहिणी से लिख रहे हैं कि आफ्टर 60 ईयर्स के बाद क्या जो पानी की मात्रा है वो कितनी रखनी चाहिए?
3: किसी भी एज में पानी की मात्रा ऐसा नहीं है कि एज डिफाइंड होती है। अगर किडनी आपकी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, तो एक तरीका ये है कि इतना पानी पीजिए कि आपका यूरिन साफ आए। अगर क्लियर है, पानी जैसा।

0: इसका मतलब आपका हाइड्रेशन या वाटर इंटेक ठीक है।
1: जी
0: अगर यह येलो आ रहा है, इसका मतलब आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड है और आपका वाटर इंटेक कम है। एक एवरेज आंसर ये है, अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो 2 लीटर के आसपास गर्मियों में और 1.5 लीटर के आसपास सर्दियों में काफ़ी माना जाता है।
1: जी तो ये आपने पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए वो बता दी। अब हमारे पास प्रकाश जी का रोहिणी से ही मैसेज आया हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरे अल्ट्रासाउंड में पीवीआर रिपोर्ट में यूरिन रह जाता है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
0: अल्ट्रासाउंड में पीवीआर हाई होना हमारे को नॉर्मली इंडिकेट करता है कि पेशाब पूरा खाली नहीं हो रहा है। पेशाब पूरा खाली नहीं हो रहा होता है तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा, उसमें पथरी बनने का खतरा, और अगर बहुत ज़्यादा रुक रहा है तो उसके अंदर इवन गुर्दे खराब होने का खतरा बन जाता है।
1: जी
0: तो इसको ज़रूर से वो यूरोलॉजिस्ट से मिलें और दिखाएं जिससे बाकी जांचें हो सकें।
1: सर, आपसे ही मेरा सवाल है कि बार बार जो यूरिन इन्फेक्शन आजकल सुनने को मिलता है, यूटीआई जैसी समस्या, क्यों, क्या वजह है उसकी?
0: आदमियों में जैसे इन्होंने लिखा पीवीआर हाई होना, ये एक कारण हो सकता है।
1: जी
0: एक कारण हो सकता है कि शुगर है। नंबर दो, उम्र चलते विमेन में मेनोपॉज के बाद इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर चार, आजकल देखा गया है काफ़ी कॉमनली कि कुछ दवाइयाँ भी हैं डायबिटीज़ की जो रिस्क इन्फेक्शन का बढ़ा देती हैं। स्पेशली पेशेंट को पता नहीं चलता है, हमारे डॉक्टर्स काफ़ी लोग ट्रीट भी करते रहते हैं और हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि दवाई की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये कुछ कॉमन कारण है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं।
1: जी संदीप सर, आपके पास वापस आना चाहूंगी। किडनी खराब होने की वजह क्या होती है? हो जाती है और साइलेंट मोड में होती है, ये भी पता चल गया, लेकिन वजह क्या होती है?
0: देखिए, जो दो मुख्य कारण जिनकी बात हम बार बार आज कर रहे हैं वो है शुगर, ब्लड प्रेशर। ये अपने आप में बॉडी की वेसल्स को ख़राब करते हैं, और किडनी और कुछ नहीं ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा है, तो वो इन बीमारियों से बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा बार बार पथरी का बनना, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो परिवार में चलती हैं, तो परिवार में किसी को किडनी की परेशानी होना, जैसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज वगैरह देखते हैं, वो परिवार में चलती हैं। तो कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो परिवार में चलती हैं। बार बार यूरिन में इन्फेक्शन रहना, बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना, चाहे वो पेन किलर्स हों, चाहे वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हो, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आगे जाके किडनी को खराब करती हैं। तो अनसुपरवाइज्ड, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के जाने, जो हम जाके केमिस्ट से या कहीं से भी दवाइयां ले लेते हैं और उनका लंबी मात्रा में सेवन करते हैं, वो किडनीज को खराब कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो किडनी को ही खाली खराब करती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि होती तो ये सिर्फ 10-15% में है, लेकिन अगर ये समय पे पता चल जाए और इनका इलाज हो जाए तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
1: जी ठीक हो
0: तो
1: सकती है, इसके लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी
0: समय
1: है।
0: पे आना बहुत ज़रूरी है।
1: जी आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नीदरलैंड से आशा पाठक जी का मैसेज है, रविंद्र पाठक जी, इन्होंने मैसेज किया हुआ है, लिख रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है इनको। साथ ही आशा जी ने लिखा है कि मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ, थायराइड भी है इनको और डायबिटीज़ कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाती है, खान पान इनका नॉर्मल है लिख रही हैं, पर मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या ये भी कहीं कोई वजह तो नहीं बन सकता है किडनी की समस्या का?
0: देखिए, स्ट्रेस अपने आप में किडनी खराब नहीं करता, लेकिन अगर आपका स्ट्रेस के साथ ब्लड प्रेशर बार बार ज़्यादा रहता है तो वो किडनी का कारण खराब होने का बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अगर साथ में मिल जाए तो ये दोनों मिलके किडनीज को काफ़ी जल्दी खराब कर सकते हैं। आप अपने आप में सचेत हैं, बीमारी के बारे में जानते हैं, खान पान का ध्यान रख रहे हैं, जैसे मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी रखिए, स्मोकिंग, टोबैको, इन सब को अवॉइड रखिए, वेट अपना आइडियल रखिए, और रेगुलर डॉक्टर को दिखा के शुगर और ब्लड प्रेशर की रेगुलर मेडिसिन लीजिए, जो ना ही केवल आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे, आपकी किडनी डिजीज से भी आपको बचा के रखे, और एनुअल हेल्थ चेकअप में यूरिन और ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस ये जरूर करवाएं।
1: जी ये पूरी तरह से सतर्क हैं और इनके माध्यम से आपने बहुत सारे हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन दे दिया है। और अनीश सर, आपके पास वापस आना चाहूंगी। प्रोस्टेट सर्जरी के बाद अक्सर देखा जाता है यूरिन लीक होने की समस्या होती है, क्यों होता है ऐसा?
2: ऐसा नहीं होता है एक्चुअली,
1: ओके
2: ये एक कॉमन मिथ है
1: हाँ
2: कि 10 लोग पार्क में बैठे हुए ये कहते हैं कि भाई प्रोस्टेट का ऑपरेशन नहीं करवाना, क्योंकि अगर ऑपरेशन करवा लिया तो लीक हो जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब को सवाल पूछा गया था कि डायबिटीज़ की दवाई नहीं खाना, उससे डायलिसिस या किडनी ख़राब हो जाएगा। प्रोस्टेट का ऑपरेशन इसलिए नहीं किया जाता कि लीक हो। हाँ, कुछ 1-2% में कुछ समय के लिए लीक होता है, बट प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद नॉर्मली लीक नहीं होता है। ये धारणा गलत है और अपने मन से सबको हटा देनी चाहिए। और
1: जी
2: अगर ज़रूरत है और आपका डॉक्टर कह रहा है और आपको पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, तो आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए समय रहते, वरना उम्र चलते पेशाब की नाली पे रहना पड़ेगा और फिर वो कभी निकल नहीं पाएगी।
1: जी तो इस तरह से जो सतर्क आपको हम कर रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि कैसे आपको जागरूक रहना है और किस तरह से आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं वो आप ज़रूर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को और समय आने पर वो समस्या बढ़ जाती है। तो अब डॉक्टर साहब, एक हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, अपना नाम बताएं सर।
3: जी, ओम कुमार बात कर रहा हूँ यूपी से। मैं
1: सर, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बताएं।
3: कह रहा हूँ ओम कुमार बात कर रहा हूँ
1: जी,
3: यूपी
1: ओम
3: से,
1: कुमार जी कहाँ से?
3: यूपी यूपी यूपी। ये
1: जी, सवाल बता दें, हमारे दोनों विशेषज्ञ सुन रहे हैं आपको।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे हैं
1: जी सर, बताएं।
3: जी, मेरा सवाल ये पहला सवाल है मेरा, अगर किसी के गुर्दे में 6 से या 7 ml की जो पथरी है वो क्या निकलेगी या पेशाब के द्वारा भी निकल सकती है? और दूसरा सवाल ये है, अगर किसी के पेशाब में वो जलन हो रही है तो क्या समस्या, मतलब क्या संकेत है?
2: गुर्दे के अंदर अगर 6 या 7 mm की पथरी है और अगर वह गुर्दे के एक कोने में पड़ी है, तो ऐसा माने कि एक कमरे के अंदर एक छोटा सा चीज़ पड़ी है, तो वो आपके गुर्दे को तंग नहीं कर रही। क्या वो पेशाब में निकल सकती है? अगर वो रास्ते में आ गई, उसने दर्द ज़्यादा नहीं किया, किडनी को नहीं ख़राब किया, और वो कहाँ आके फंसती है उस बात पे निर्भर होगा कि वो निकल सकती है या नहीं। तो ये सिर्फ इस बात पे कहना कि गुर्दे के अंदर 6 mm की पथरी है, निकल सकती है या नहीं, संभव नहीं है। निकल भी सकती है और हो सकता है ना भी निकल पाए। और पेशाब में जलन होने का कारण नॉर्मली इन्फेक्शन हो सकता है, या पानी कम पीने से भी पेशाब में जलन आ सकती है। आप पेशाब की जांच करवा लीजिए और पास के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें।
1: जी, आगे बढ़ते हैं। नीरज जी का मैसेज हमारे पास आया हुआ है, ये लिख रहे हैं कि इनके फादर को प्रोस्टेट कैंसर हाई लेवल का है और इनको इनकी उम्र 70 साल की है,
3: जी आप अगर ब्रेक पे जाएं तो।
1: शुगर और बीपी इनको नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इनसे?
2: लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर जो है वो ना प्रोस्टेट तक सीमित है ना उसके आगे फैल गया है, तो कहीं बीच में रुक गया है फिलहाल के लिए। तो इसके लिए कई ऑप्शंस हैं आज की डेट में हमारे पास। हार्मोनल थेरेपी दे के ऑपरेशन करना, कीमोथेरेपी दे के ऑपरेशन करना, सीधा ऑपरेशन करना, रेडिएशन देना, ऑपरेशन करने के बाद कीमोथेरेपी देना। तो ये सारी ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन और आपकी चॉइस और सर्जन की चॉइस बैठ के आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए जो आपको ये सारी ऑप्शंस दे सके और आपको आगे मार्गदर्शन दे सके कि किस तरह से कैंसर का इलाज करना है, पर जो भी डिसीजन ले उसमें देरी ना करें।
1: जी डॉक्टर साहब, पुरुषों में एक और समस्या होती है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आना, तो ये क्यों होती है और कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है?
2: प्रोस्टेट हर एक में बढ़ेगा, हर आदमी में बढ़ेगा। अगर आदमी पुरुष, अगर पुरुष कोई है तो उसमें प्रोस्टेट बढ़ना ही है। हमारे यहाँ आदत नहीं है कि 50 के बाद जाके यूरोलॉजिस्ट से मिलना,
1: जी
2: बट अमेरिका, यूरोप आप कहीं भी चले जाएंगे तो वहाँ पे हर साल एनुअल हेल्थ चेकअप में यूरोलॉजिस्ट से मिलना एक पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये बढ़ेगा और इसको रोक नहीं सकते। जब ये बढ़ेगा तो पेशाब की धार धीरे हो जाएगी, जैसे धार नॉर्मली आती है उतनी तेज़ी से नहीं आएगी। ये बात क्या एक संकेत है कि हाँ प्रोस्टेट बढ़ रहा है। जैसे ये बढ़े तो इसको दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर

0: कंट्रोल नहीं हो, तो जैसे हमने बात करी, इसका ऑपरेशन भी किया जा सकता है। इसको ट्रीट
1: नियंत्रित किया
0: करना
1: जाए
0: जरूरी है,
1: जी,
0: वरना कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं।
1: यानी 50 की उम्र के बाद जरूरी है कि टेस्ट कराते रहना
0: जी,
1: चाहिए। ठीक है,
0: प्रॉब्लम हो सकता है 90 तक भी ना आए, बट टेस्ट कराना जरूरी है।
1: जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आगे की चर्चा बाद में।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं किडनी एंड यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि बढ़ती उम्र में होती है। अगर आपका भी है कोई सवाल तो हमसे बात कर सकते हैं। हमारे दो विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्टूडियो के नंबर हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 पर। संदीप सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जो मेरा सवाल वो है कि अब के किडनी ट्रांसप्लांट कितना सेफ है?
2: देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट हम तब एडवाइस करते हैं जब व्यक्ति की दोनों किडनीज बिल्कुल खराब हो चुकी हो और या तो वो डायलिसिस पे जा चुका हो या जाने वाला हो। किडनी ट्रांसप्लांट इस समय काफी हद तक स्टैंडर्डाइज और सेफ ऑपरेशन है। दो तरीके से किया जा सकता है, या तो परिवार में से कोई प्रियजन किडनी दे अपने व्यक्ति के लिए जिसको किडनी की बीमारी है, या फिर जिसे हम डिजीज डोनर कहते हैं, जिस व्यक्ति की ब्रेन डेथ हो चुकी है उससे हम ऑर्गन हार्वेस्ट करके, जैसे दो किडनीज हैं तो दो अलग पेशेंट्स को एक एक किडनी दे सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो चैलेंज आता है वो यही है कि बॉडी हमेशा वो जो नई किडनी है उसको बाहर का मान के उसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी और उसको रिजेक्शन या जिसको हम कहते हैं किडनी खराब करने की कोशिश करेगी। इससे बचने के लिए हमें बहुत बार इम्यूनो सप्रेशन देना पड़ता है, जिसका मतलब हमें बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको कम करना पड़ता है ताकि बॉडी अपनी किडनी को रिजेक्ट ना करे। इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयां आ गई हैं जो काफी पोटेंट है, काफी अच्छे से रिजेक्शन को कम कर सकती है, लेकिन साथ साथ उन्हीं के साथ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवर द टाइम हम सब ने ये एक तरह से तय हो गया है कि कितनी दवाई किस मात्रा में देनी है, समय के साथ कैसे कैसे इस दवाई को कम करना है ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो। और पहले 6 महीने में जबकि इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, हम बहुत सारी ऐसी दवाइयां देते भी हैं जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाए। जैसे बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनसे अगर बॉडी नहीं लड़ पाती तो छोटी डोज में दवाइयां देके उनसे मदद लेते हैं। औसतन अगर हम जाने की क्या सक्सेस रेट है, औसतन एक साल में 95% से ज्यादा किडनीज काम कर रही होती हैं और औसतन 8 से 10 साल 50% से ज्यादा लोगों की किडनी चल रही होती है। बस एक अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि किडनी डिजीज, किडनी ट्रांसप्लांट अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है। हम करने से पहले ये नहीं बता सकते कि ये किडनी कितनी देर चलेगी। हम सिर्फ औसत बता सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एक साल तक 95% किडनीज चल रही है और 50% से ज्यादा किडनी 8 से 10 साल तक ज्यादा चलती है।
1: और डिपेंड करता है कि हम अपने लिए कितना सतर्क हैं और कितनी एहतियात बरत रहे हैं।
2: जैसे मैंने बताया, दवाइयां उम्र भर ट्रांसप्लांट के बाद भी चलेंगी, क्योंकि जैसे आप ये दवाइयां बंद करेंगे बॉडी का इम्यून रिस्पांस उस किडनी को डैमेज करने लग जाएगा। तो चाहे आपकी किडनी को ट्रांसप्लांट को 1 महीना हुआ है, चाहे 10 साल हुए हैं, आपको दवाइयां बराबर खानी है,
1: लेनी है। जी बिल्कुल। हमारे पास शिमला झुंझुनू से, राजस्थान से मैसेज आया हुआ है दिनेश शर्मा जी का। लिख रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक पानी पीने से क्या समस्याएं हो सकती हैं?
2: देखिए, वैसे तो किडनी जिसे हम कहते हैं इनफिनाइट पे इंतहा कैपेसिटी रखती है पानी निकालने की। तो आप जितना पानी पियेंगे उतनी ज्यादा बार यूरिन जाके आपका वो पानी निकल जाएगा, लेकिन ये अपने आप में किडनी पे एक स्ट्रेस है। किडनी को ये पानी निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे भी डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा पानी पीजिए, जैसे भूख जितनी लगती है हम उतना ही खाना खाते हैं। तो मेरा कहना यही है, आप पानी भी उतना पीजिए जितनी आपको प्यास है। जैसे आप लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, 12 घंटे बाद आपको भूख से ज्यादा प्यास तड़पाती है। तो थर्स्ट या प्यास भूख से बहुत बड़ा स्टिमुलस है। आदमी भूखा रह सकता है, प्यासा नहीं रह सकता। तो जितनी प्यास लगे उतना पानी पीजिए। बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनी पे स्ट्रेस आ सकता है। अगर आपकी किडनी पहले से खराब है या आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये हार्ट फेलियर का कारण भी बन सकता है और फ्लूइड ओवरलोड का कारण भी बन सकता है।
1: जी।
2: तो ये जो धारणा है कि मैं सुबह उठ के 3 लीटर पानी पी लूं तो मेरा पेट साफ हो जाएगा, मेरे शरीर के जितने टॉक्सिन्स हैं सब पेशाब में निकल जाएंगे, ये सब गलत है। पेशाब में टॉक्सिन्स उतने ही निकलेंगे जितने किडनी फिल्टर कर पाएगी, और पानी अलग फिल्टर होगा और टॉक्सिन्स अलग फिल्टर होंगे।
1: अनीश सर, आपसे सवाल है मेरा कि रात में जो बुजुर्गों को समस्या होती है वो सबसे बड़ी ये होती है कि बार बार उनको यूरिन पास करने जाना पड़ता है। एक समस्या ये होती है कि वो चल नहीं पाते, और दूसरी समस्या ये हो जाती है, तो कैसे ये नियंत्रित हो सकती है ये समस्या?
3: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये प्रॉब्लम एक एज के बाद सबको फेस करनी पड़ेगी।
1: जी।
3: इसको प्रिवेंट करने के लिए दो बातें हैं, एक शाम को 7 बजे के बाद लिक्विड इंटेक कम कर देना चाहिए, जिसमें भारत में एक कंपोनेंट है मिल्क पीने का रात को, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और स्किप हो जाता है काफ़ी बार। रात को दूध पीने की आदत हटानी पड़ेगी। अगर मेरे पास 50 साल का भी मरीज़ है तो मैं उसको जब से कहना शुरू करता हूँ कि अभी से बंद कर दो, वरना 70 पे मुश्किल होगी।
1: जी।
3: शाम को 5 बजे के बाद चाय नहीं पीना, क्योंकि चाय से बना हुआ पेशाब 6 घंटे लगाता है पेशाब बनाने में। 7 बजे के बाद पानी की मात्रा कम कर देना, ऐसा नहीं कि बंद कर देना, बट 1 ग्लास से ज्यादा नहीं पीना 7 से सोने तक। रात को दूध नहीं पीना और सोने से पहले पेशाब जरूर करना।

0: एक ही समय पे सोना इसकी आदत बनाना, अलग-अलग समय नहीं सोना। और आपने एक बात कही वो बहुत ज़रूरी है कि जिनको चलने में दिक्कत होती है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मरीज़ को, मरीज़ गिरता कब है, मरीज़ को चोट कब लगती है, कॉमनेस्ट कारण मरीज़ को हेड इंजरी होने का एक उम्र के बाद, वो है रात को गिरना जब वो पेशाब
1: जी
0: करने जाता है। तो उसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, कमरे की लाइट चालू होनी चाहिए, कमरे के साइड, बिस्तर के साइड में पानी नहीं रखा होना चाहिए, टेबल नहीं होनी चाहिए, चेयर नहीं होनी चाहिए, बाथरूम की लाइट खुली होनी चाहिए। रात को आप टॉयलेट करने गए तो आपको हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पेशाब करिए, आप वापस आ जाइए। और अगर आपको लगता है कि आप चल नहीं सकते वहाँ तक, तो एक कैन रख लीजिए या एक पॉट रख लीजिए, चेयर कमोड रख लीजिए जिसमें बैठ के यूरिन कर लें एक उम्र के बाद, और सुबह उसको खाली कर लीजिए। इसमें कोई शर्म नहीं है, बट इसमें बचाव सर्वप्रथम है,
1: जी,
0: ये सबसे ज़रूरी है।
1: तो इनका जो आपने मार्गदर्शन है वो कर दिया है कि किस तरह से जो यूरिन की समस्या होती है वो अगर नियंत्रित करनी है तो कैसे हो सकती है, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दीपक जी का दिल्ली से हमारे पास मैसेज आया हुआ है। खास करके ये संदीप सर से जानना चाहते हैं कि राइज ऑफ C3GN केसेज इन इंडिया, इट्स क्योर एंड पॉसिबल लाइफ ऑफ पेशेंट ऑफ मेडिसिन आफ्टर डायग्नोज ऑफ दिस डिसऑर्डर।
2: देखिए, C3GN अपने आप में एक रेयर डिजीज़ अभी भी है। जो हम कह रहे हैं कि राइज है या उसका इंसिडेंस बढ़ गया है, वो सिर्फ इसलिए कि अब इसकी डायग्नोसिस की सुविधाएं बेहतर हो गई हैं। जगह जगह ऐसे टेस्ट हो सकते हैं जो आपको C3GN के बारे में बता सकते हैं, बट अपने आप में ये 1% से भी कम कारण है किडनी डिजीज होने का। C3GN का जो मुख्य कारण है वो बॉडी में, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये अपने आप में एक प्रणाली है इन्फेक्शन से लड़ने की। लेकिन अगर ये प्रणाली अनियंत्रित हो जाए, अगर हम इसको, बॉडी इसको रोके ना, तो ये बॉडी के टिश्यूज को ही डैमेज करने लग जाती है, और ये डैमेज कर देता है किडनीज को, जिसको हम C3GN कहते हैं। आजकल कुछ दवाइयां आई हैं जो इस बीमारी को पूरी तरह से बनने में रोक सकती हैं, बट अगर ये डिजीज एडवांस स्टेज पे पता चले, तब एक किस्म से ये लाइलाज है और बहुत तेजी से आगे बढ़ती है।
1: जी
2: दूसरे दुख की बात यह है, क्योंकि ये बीमारी आपके अंदर से ही है, ट्रांसप्लांट के बाद भी ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, तो ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको इस बीमारी को लेके सावधानी रखनी है।
1: आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आया हुआ है राम शंकर शर्मा जी का। इन्होंने लिखा है कि मेरा सवाल है कि 15 साल का इनका लड़का है जो बार बार यूरिन पास करता है, और दूसरा सवाल है कि 7 साल की बच्ची है वो भी दिन में बार बार यूरिन पास करती है, मतलब शायद खड़े खड़े कर देती है या नींद में ना होके जागृत अवस्था में करती है, ऐसा इनका सवाल है। हालांकि इन्होंने कुछ डिटेल में नहीं लिखा है, क्या कहना चाहेंगे सर?
0: बार बार पेशाब करने को ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। जिस हमारी नॉर्मल पेशाब की थैली कोई 150-200 ml पेशाब रोक सकती है कम से कम। 200 ml से पहले मुझे पता भी नहीं चलेगा मुझे पेशाब आ रहा है, बट कुछ लोगों की थैली 50 ml में, 70 ml में, 100 ml में ही संकेत दे देती है कि पेशाब करना है, और रोक नहीं पाते हैं, एकदम जाना पड़ता है। तो इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। यंग बच्चे हैं दोनों, कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि कारण शारीरिक है या कारण मानसिक है, कि क्यों ओवर एक्टिव ब्लैडर हो रहा है,
1: जी
0: और उसी हिसाब से उसका इलाज फिर ज़रूरी है।
1: संदीप सर, आपसे मेरा सवाल यह है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या प्रिकॉशंस जरूरी है?
2: कुछ हद तक हमने पिछले सवाल में भी कवर कर लिया। सबसे पहले लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेसेंट्स, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन आपको लेनी है, क्योंकि जो बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है वो इस किडनी को कभी भी रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा, क्योंकि आप इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, आप ऐसी दवाइयों पे हैं जो आपकी बॉडी से, बॉडी की इम्यूनिटी या बीमारी से बचने की क्षमता को कम कर रहे हैं, तो आपको उसकी प्रिकॉशंस लेनी है। खाने पीने में साफ सफाई रखनी है, घर में साफ सफाई रखनी है, बहुत भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना। अगर परिवार में कोई बीमार है या आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है, तो उसे उचित दूरी बनाए रखनी है, अपने खाने पीने में साफ सफाई रखें, और ये सब प्रिकॉशंस लाइफ लॉन्ग रहते हैं। तो ट्रांसप्लांट के बाद

0: ये सब प्रिकॉशंस रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, किडनी को बॉडी कभी भी रिजेक्ट कर सकती है, इसलिए रेगुलर अपने चेकअप करवाना, जो आपका ट्रांसप्लांट सेंटर है, जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर हैं, उनके पास आप रेगुलर नियमित समय पर आते रहिए। पहले साल तो हम कई बार हर हफ्ते बुलाते हैं या 3 महीने में बुलाते हैं, उसके बाद रेगुलरली हर 3 महीने पर बुलाते हैं देखने के लिए कि किडनी का काम कैसा है। उसके लिए हम ब्लड और यूरिन के टेस्ट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे टेस्ट सालाना रिपीट किए जाते हैं देखने के लिए कि दवाइयों की वजह से या बीमारी की वजह से और किसी ऑर्गन में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इन्फेक्शन से दूरी बनाए रखें, इन्फेक्टिव लोगों से दूरी बनाए रखें, रेगुलर दवाई लीजिए, अपने डॉक्टर के पास रेगुलरली जाइए, यूरिन और ब्लड टेस्ट बराबर लीजिए, और अच्छी जीवन शैली अपनाइए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, अच्छी जीवन शैली किडनी की बीमारी से बचने में बहुत कारगर है।
1: हमारे पास उत्तराखंड से अनिल कुमार जी का मैसेज आया हुआ है, लिख रहे हैं कि बार बार मोशन आना क्या किडनी खराब होने का संकेत हो सकता है?
0: नहीं, बार बार मोशन आना किडनी खराब होने का संकेत नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे और कारण हो सकते हैं। तो बेहतर रहेगा आप किसी डॉक्टर को दिखा के उनसे बातचीत करिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये दिक्कत आ सकती है।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि खान पान कैसा होना चाहिए अगर किडनी का ट्रांसप्लांट कराया है तो?
0: नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम तो मानते हैं कि आदमी नॉर्मल है। तो खान पान के लिए जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो मैंने बताया, साफ सफाई के अलावा जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए जरूरी है कि हेल्दी साफ सुथरा खाना खाएं, कच्ची सलाद, बाहर से बाजार का जमा हुआ दही, कटा हुआ फल, ये सब चीजें अवॉइड करें क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट उसके अलावा मैंने स्ट्रेस भी किया था पहले भी कि हेल्दी जीवन शैली, तो हेल्दी जीवन शैली में क्या खान पान रहना है, उसमें जरूरी है कि नमक कम रखें, मोटापा ना बढ़ने दें, वेट अपना कंट्रोल रखें, तो ऐसी चीजें खाएं जिससे आपका वजन ना बढ़े। ट्रांसप्लांट के बाद हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जिससे वेट बढ़ने का खतरा रहता है। तो खासकर उसके लिए अपना रेगुलर डाइट रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और ओवरऑल हेल्दी डाइट, सब चीजें पूरी मात्रा में होनी चाहिए, चाहे वो दाल सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे सलाद हो घर का कटा हुआ, ये सब एडिक्वेट मात्रा में अगर आप खाएंगे, नमक कम रखेंगे, पानी जितनी प्यास लगे या एडिक्वेट मात्रा में पिएंगे, यही जीवन शैली हम सब मरीजों को बताते हैं।
1: जी अनीश सर, क्या कहना चाहेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन ना हो, यूरिन से जुड़ी समस्याएं ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रिवेंशन होना चाहिए?
2: समय पे यूरिन करें, पानी सही मात्रा में पिए, कम नहीं पिए, और अगर आप पुरुष हैं तो हर साल अपना सालाना एग्जामिनेशन जरूर कराएं। अगर आप दवाई पे हैं तो केवल दवाई खाते ना रहें, दिखाएं भी ज़रूर डॉक्टर को। और अगर आप को कोई भी नई समस्या आती है तो उसका समय पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, और इन्फेक्शन ना हो इसके लिए एक बात है जो लोग बहुत कम समझते हैं, वो है कब्ज़ नहीं होने दें। कब्ज़ होगी तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा, कब्ज़ नहीं रहेगी तो इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा।
1: जी तो श्रोताओं, आज हमने चर्चा की किडनी एंड यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज। उम्मीद है कि चर्चा आपको पसंद आई होगी, आपने पूरा पूरा लाभ लिया होगा। हमारे आज के जो दो विशेषज्ञ थे वो थे डॉक्टर संदीप महाजन, नेफ्रोलॉजिस्ट एम्स न्यू दिल्ली, और डॉक्टर अनीश कुमार गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट न्यू दिल्ली। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। और श्रोताओं, इसी के साथ अब अनुराधा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम रेनबो पर। अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत अन्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत ने अमरीका में 11 सितंबर के हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंक रोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस पर तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठावाड़ वाले हैदराबाद क्षेत्र के लोगों को बधाई दी है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से ये जानकारी सामने आई है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। मेघालय में पूर्वोत्तर जोन अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लगभग 10 वर्ष के बाद फिर से आयोजित की जा रही है। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बनी रहिए हमारे साथ हमारे अगले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के लिए।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन संदिष्ट सोल्जर्स के आज के इस अंक में मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यकीन मानिए हर बार की तरह हमारा आज का ये अंक भी बहुत ही मार्मिक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। और हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष की बात है कि इनके कार्यकाल में इनकी उपलब्धियां हम सभी के साथ आज ये शेयर करेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसे आप और हम कहते हैं संदेश टू सोल्जर्स। तो आइए तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल विवेक चौहान का, जो है एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर। कर्नल विवेक चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम में। और हर बार की तरह मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब हम इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि एक सफल परीक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। और जब आप ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आप अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, क्योंकि आप यही मानते हैं कि आपका देश सर्वप्रथम है। आपकी यात्रा, आपका वृत्तांत जरूर आपकी जुबानी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, आपने भारतीय सेना को ही क्यों चुना, किस तरह भारतीय सेना आपके लिए सर्वोपरि हो गई, कौन सा ऐसा निर्णय था जिसने आपका जीवन बदल दिया और आज आप हमारे साथ हैं अपनी यात्रा को सुनाने के लिए।
1: गीतिका जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद है इस प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए, और आपके सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से तहे दिल पर नमस्कार, गुड इवनिंग। बढ़िया क्वेश्चन है, कि क्यों फौज ज्वाइन करी और क्या मोटिवेशन थी फौज ज्वाइन करने के लिए। तो हम पहाड़ी इलाके से हैं, मैं हिमाचल से हूँ, और वहाँ जो है फौज, डिफेंस फोर्सेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट मायना रखता है, हमारी कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एंड काफ़ी लोग एस्पायर करते हैं फौज ज्वाइन करने के लिए। ऑन अ मोर पर्सनल लेवल, मेरे दादाजी फौज में थे, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थे उसमें उन्हें गोली लगी। उसके बाद मेरे पिताजी भी फौज में थे और उन्होंने 1971 वॉर में हिस्सा लिया, बाद में उनको भी जो है ऑपरेशंस में गोली लगी थी। तो वाइल ग्रोइंग अप, बड़े होते समय उनसे कई बार उनकी गाथाएं सुनी, उनकी कहानियां सुनी, दैट वाज अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो यू नो, और उस एनवायरनमेंट में एज अ इम्प्रेशनेबल यंग मैन जो है फौज जो है बिल्कुल जहन में रही, और इसलिए यू नो इट वॉज ऑलवेज अ विश एंड अ डिज़ायर एंड एस्पिरेशन कि मैं भी फौज ज्वाइन करूँगा। सो दैट इज़ हाउ आई यू नो एंडेड अप ज्वाइनिंग।
0: इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह से, किस प्रक्रिया के तहत भारतीय सेनाओं में अपने लिए एक मुकाम हासिल कर पाए, उससे पहले अगर आपके जीवन की बात की जाए, आपके बचपन की बात की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का ना बचपन उसके जीवन में, आने वाली जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपके बचपन की बात की जाए, एज अ स्कूल किड कर्नल विवेक चौहान, जो उस वक्त सिर्फ विवेक थे, अपने घर परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किस तरह के बच्चे थे?
1: तो मैं बेहद बदमाश बच्चा था, है ना, मतलब मेरे माँ बाप भी शायद मुझसे काफ़ी तंग थे, और शैतानियाँ करने में और शैतान बच्चों के साथ रहने में मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। यहाँ तक कि यू नो एज अ 5-year-old पूरी कॉलोनी के जो साइकिल्स के टायर, उस टाइम साइकिल्स होती थी सबके पास, तो उनके जो है वॉल निकाल के फिर उसके बाद बड़ी मज़ा आया उनको देख के कि सब चल रहे हैं, यू नो। सो मैं शैतान बच्चा था, पॉसिबली जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही तो थोड़ा सा और जो है डिसिप्लिनड हो गया और थोड़ा शांत हो गया, बट डेफिनेटली एज अ यंग चाइल्ड आई वाज नॉट एन आइडियल फॉर एनीबडी।
0: और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेना ने, आपकी सर्विसेज ने, आपकी ट्रेनिंग्स ने, भारतीय सेना ने आपको पूर्ण रूप से बदल दिया।
1: हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही होगा। मैं एनडीए से हूँ और फिर आईएमए से पास आउट हुआ, और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं दुनिया में नोन हैं, जानी पहचानी है, दैट दे टर्न मैन इनटू बॉयज इनटू मैन, एंड डिसिप्लिन इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इट. एंड यू नो वंस, जैसे मैंने कहा, एक बारी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई तो

0: स्वभाव में बदली, ऊपर से जो ये डिसिप्लिन की बाउंड्रीज थी इससे जो है आई हैव बिकम अ मोर डिसिप्लिन्ड और पॉसिबली अ बेटर पर्सन।
1: बिल्कुल, आपकी व्यक्तिगत रूप से बचपन से इंजीनियरिंग यानी कि इंटरनल इंजीनियरिंग कैसी भी क्यों ना हो, आर्म फोर्सेस उसे पूरी तरह से बदल देती है, हर पेज पुर्जे को अपने उचित स्थान पर जोड़ देती है, जिस तरह का ऑफिसर आपको बनाना है उस तरह का ऑफिसर बनाती है।
0: ये बिल्कुल आपने सही पहचाना, दी ट्रेनिंग एकेडमीज ये विभिन्न किस्म के लोग अलग कल्चर अलग बैकग्राउंड से लेते हैं एंड दे ट्रेन यू इन टू द फाइनेस्ट दैट द कंट्री प्रोड्यूसेस, समटाइम्स विद पेन समटाइम्स विदाउट पेन, बट द एंड रिजल्ट इज ऑलवेज गुड।
1: बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो पहले एनडीए, उसके बाद फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी, क्योंकि एक साल का आपको वहां पर भी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, कहां ज्यादा मजा आया? क्योंकि कहते हैं कि बेसिक बिहेवियर नहीं बदलता है, वो अंदर शैतान बच्चा भले ही उसने आगे शैतानी ना की हो, लेकिन उसने जीवन का लुत्फ जहां पर भी वो रहा, जो भी काम उसने किया, उसने जरूर उसको एंजॉय किया। और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, चाहे स्कूल में रहे भले ही शैतान रहे, लेकिन जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन की भले ही सोचने का तरीका बदला, काम करने का तरीका बदला, पर जो अंदर का बच्चा था ना वो जीवित रहा और वहां पर भी उसने एंजॉयमेंट पूरा किया, तो कहां ज्यादा मजा आया?
0: सो व्यक्तिगत तौर पे मेरे को लगता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। जब हम एनडीए गए तो वी वर यंग स्कूल चिल्ड्रन, बट व्हेन वी केम टू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जब हम आईएमए पहुँचे तो काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे कोर्समेट्स जो हैं वो कॉलेज बाहर अपना एजुकेशन करके हमें ज्वाइन किए थे। सो दैट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, है ना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी कहानी सुनना, उनके फ्रेंड्स ग्रुप में सोशल सर्कल्स में घूमना, दैट वाज अ लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी फ्रीडम का एहसास थोड़ा ज़्यादा है एंड देयरफॉर आई एंजॉयड माय स्टे इन आईएमए, नॉट दैट एनडीए में नहीं था बट कंपैरेटिवली आईएमए वाज अ मच बेटर टाइम।
1: एनडीए आप एकदम स्कूल पास आउट करने के बाद ज्वाइन करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और इंडियन मिलिट्री एकेडमी आप सीडीएस का एग्जाम देने के बाद या फिर वो जो एनडीए से जाकर फिर आईएमए ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे डिफरेंट सेट ऑफ बच्चे आते हैं जिन्होंने हो सकता है कि पहले आर्म फोर्सेज लाइफ ना देखी हो। एक बार और जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को जानने के बाद ना मुझे कहीं ना कहीं जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो हमें सुन रहे होंगे, चाहते हैं उनके बच्चे आर्म फोर्सेज ज्वाइन करें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल से निकल कर ना आर्म फोर्सेस जाता है तो एक अलग माइंडसेट के साथ जाता है, हम तो राजा हैं अब, लेकिन वहां जाके एकदम एंटायर डिफरेंट माहौल। आपके घर में भी आप बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में पले होंगे, क्योंकि कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स का जो घर होता है वहां लाइफस्टाइल इतनी ईजी नहीं होती, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन, तो आपके लिए तो डिसिप्लिन से निकल कर डिसिप्लिन में जाना था, फिर भी क्या अंतर था कि एक शैतान सा बच्चा एकदम शांत शालीन ऑफिसर बन गया?
0: सो ये आपकी बात सही है कि क्योंकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, फादर फौज में थे, तो घर पे भी काफ़ी डिसिप्लिन का और तौर था, लेकिन एक ट्रांजिशन है, यू नो, जब आप डिसिप्लिन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं और जब आप अफसर बनने के बाद डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट एंड फेथ रहते हैं, जो आपके कंधों पे जो है सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है और आपके सहयोगी होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं जिनके लिए आपको यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, यू हैव टू वर्क फॉर देम, यू आर यू नो यू हैव टू डू मैनी थिंग्स फॉर देम। सो वाइल डिसिप्लिन इज एवर प्रेजेंट दोनों क्षेत्र में रहता है, लेकिन डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ यूनिक ट्रांजिशन एंड दैट I think is the what training teaches you over 4 years कि आप responsibility कैसे लेते हैं, decision making कैसे करते हैं और आप कैसे जो है pressure को सहते हैं, उसमें कैसे react करते हैं। So I think that is the transition between you know before joining the forces and after joining the forces।
1: जी, एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। मैं बहुत समय से जब मैं अपने college days में थी और मेरे दोस्त जब intermediate academy ने join किया उसके बाद वो काफी बार कहते थे कि अंतिम पग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम पग intermediate academy देहरादून में स्थित, जब भी इसका नाम लिया जाता है तो आधे से ज्यादा लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और हम जैसे लोगों के लिए वो मंदिर है और हमारा सर झुक जाता है, अंतिम पग क्या है?
0: सो अंतिम पग इज दैट फाइनल स्टेप विच चेंजेस यू फ्रॉम अ केयरफ्री बिंदास अंडर ट्रेनी टू अ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग

0: ऑफिसर। कहने को तो वो एक सेकंड का और एक कदम है, लेकिन दैट ट्रांजिशन इज वेरी वाइड, यू नो। आप उस दिन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हर डिसीजन, हर जो आप सोच है वो आपकी बदल जाती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सच अ लैंडमार्क इवेंट इन एक फौजी ऑफिसर के लाइफ में, जब वो ये ट्रांजिशन करते हैं।
1: वाह, क्या बात है। उस दिन से समझ में आने लगता है कि देश की मिट्टी का मोल क्या है, और उसी का तिलक लगाकर आप कहना चाहते हैं कि हमने अपना जीवन अपने देश के नाम कर दिया। केसरी फिल्म से आप ही की फरमाइश पर ये गाना हमारे लिसनर्स तक पहुंचा रहे हैं हम। और कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो हमारी धड़कन होते हैं, वो हमारे दिल की बात कहते हैं। और जब एक ऑफिसर के दिल की बात ये गाना कहता है, तो समझ जाइए उसके लिए, उसकी सर्विसेज, उसके लिए सेना के क्या मतलब है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन इनका जोश, इनका जज्बा, हर एक एक शब्द इस बात का यहाँ पर परिचायक है, साबित करता है कि इनके लिए भारतीय सेना क्या मायने रखती है। कर्नल चौहान, आपसे पूछना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स कहीं ना कहीं आपको तैयार करती हैं, लेकिन क्या जब एक ऑफिसर जब कमीशन हो जाता है और जब उसको पोस्टिंग्स दी जाती हैं, जब उस पर कार्यभार सौंपे जाते हैं, तो जिंदगी जैसे 360 डिग्री टर्न लेती है, ऐसा होता है क्या?
1: जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा अंतिम पग, सो द अंतिम पग या लास्ट स्टेप जो है वो आपको ऑफिसर बना देता है, पर आप सही मायने में ऑफिसर तभी बनते हैं जब यू कैन कमांड एंड अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर सोल्जर्स। सो ये जो ट्रांजिशन है, जब आप यूनिट जाते हैं तो वहाँ विभिन्न किस्म के सोल्जर्स मिलेंगे आपको, कुछ आपकी उम्र के होंगे बिकॉज यू गेट कमीशन्ड एट 21, 22, 23 इयर्स ऑफ एज, सो कुछ आपकी उम्र के होंगे, कुछ उम्र में आपसे ज़्यादा होंगे, कुछ काफ़ी ज़्यादा होंगे, रैंक में आप शायद उनसे ऊपर हों, बट कॉम्पिटेंस में, स्किल लेवल में, एक्सपीरियंस में अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं। सो जब आप वहाँ पहुँचते हैं, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू मेक योरसेल्फ इक्वल टू इफ नॉट बेटर देन देम, एंड देन ओनली यू विल कमांड देयर रिस्पेक्ट, अर्न देयर रिस्पेक्ट एंड बिकम एन ऑफिसर इन द ट्रू सेंस। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज दैट सडनली फ्रॉम अ वेरी स्केड्यूल्ड इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको कब उठोगे, कब खाओगे, कब पियोगे, कब ट्रेनिंग करोगे, कब सोओगे, वो सब जो है वो राइटिंग में आपको मिलता था, एंड नाउ यू कम इन टू अ सिचुएशन वेयर देर इज लॉट ऑफ अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 30, 35, 40, 50 पीपल, यू हैव टू मेक डिसीजंस, यू हैव टू यू नो डू मल्टीपल थिंग्स, यू हैव टू टेक रिस्क बिकॉज दीज आर लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन। So, you know, suddenly maturity is thrust on your shoulders, and this is a very interesting, very painful, and very necessary stage. आप तभी जब जब आपके soldiers आपके साथ आराम से बात कर सकते हैं, they can approach you, आपके साथ train कर सकते हैं, आपके साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं, that is the day you truly become an officer.
0: और मुझे लगता है कि शायद ये वो एक क्षण होता होगा जहां पर आप स्वयं से लड़ते हैं। मैदान जंग में लड़ना तो अभी बाकी है, लेकिन यहाँ सबसे पहली लड़ाई खुद के साथ है।
1: बिल्कुल, बिकॉज यू हैव टू लीड, यू हैव टू गेट अप एंड गेट गोइंग, है ना। वो आराम का कि कोई बता देगा कब उठना है, कब करना है, वो जमाना चला गया, वो टाइम चला गया, एंड देयरफॉर यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ टू प्रूव दैट यू आर as good as the troops that you lead, jinki command aapko di gayi hai. So ye pehli ladai aapke saath hai, because that hard work takes effort.
0: अभी आपने जितनी बातें मुझे बताई हैं, कहीं ना कहीं एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आया है, और अक्सर जब हम इन तीन शब्दों को देखते हैं तो ये मात्र शब्द नहीं रह जाते, इनका मायना, इनकी परिभाषा बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अगर मैं किसी भी ऑफिसर से पूछूंगी तो बस वो यही कहेंगे, नाम नमक निशान। नाम नमक निशान क्या है?
1: सो दिस इज द इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड मैं इसको थोड़े कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। जब मैं कमीशन हुआ तो जो मेरे ट्रूप, मेरी यूनिट के ट्रूप्स थे, वो हिल्स और हिल ट्राइब्स में से थे, तो वो कश्मीर घाटी से, जम्मू से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, असम से, और जो नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स हैं उन सब के से आए हुए थे। नागास थे, मीजोस थे, मणिपुरीज थे, मेघालय से थे, त्रिपुरा से थे, एंड

0: फर्स्ट एसेंस, दैट कमराडरी या आपसी भाईचारा, ये फौज आपको सिखाती है। देन ये टुकड़ी जो है आपके ऊपर आंच ना आए, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, आप लड़ाई में ऑपरेशंस में जा रहे हैं या ट्रेनिंग में कर रहे हैं, आपकी कोई गलती ना निकाले, दैट इज व्हाई यू ऑपरेट एज अ ग्रुप, टुकड़ी, वो जो है आपके निशान के लिए, आपके नाम के लिए, ठीक है, वो जो है कि आपकी यूनिट का नाम खराब ना हो। एंड इफ यू लुक एट इट एट अ लार्जर लेवल, ठीक है, यूनिट्स, ग्रुप्स ऑफ यू नो, जो भी फॉर्मेशन हैं, कि देश का निशान, फौज का निशान जो है उस पे आंच ना आए, ठीक है। सो राइट फ्रॉम द फैक्ट दैट एट द लेवल आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हो, आप अपनी यूनिट के लिए लड़ रहे हो, और आप अपने देश के झंडे के लिए लड़ रहे हो, दैट इज द कोर इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड देयरफॉर नाम नमक निशान।
1: जी, नाम नमक निशान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर सिपाही, हर ऑफिसर, उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग्स के बारे में। सबसे पहले आप भटिंडा में डिप्लॉय हुए, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग आई, उसके उपरांत फिर कैसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा?
0: मैं ऐसी यूनिट में था जिनकी कुछ जगहों पर टेन्योर्स थोड़े लंबे रहते हैं, तो भटिंडा में इनिशियली कमीशन हुआ, और बीच में हमें काफ़ी कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो डेढ़ दो साल जो है हमारे कोर्सेज में निकल जाते हैं, अलग अलग विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग होती है, और वो जब ख़त्म हुए तो मेरी सिलेक्शन हो गई। एक डिप्लॉयमेंट हो रही थी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन, ये इसराइल लेबनन बॉर्डर पे यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है, उसमें नॉर्वे हट रहा था और इंडियन कंटिजेंट वहाँ डिप्लॉय हो रहा था, तो उसका हिस्सा बनने का मेरी सिलेक्शन हो गई, और फिर मैं वहाँ डिप्लॉय हो गया। उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हालांकि मैं इंडियन आर्मी के साथ और इंडियन यूनिट के साथ गया था, आई वॉज इन अ मल्टी नेशनल यूनिट कॉल्ड द फोर्स मोबाइल रिजर्व, जिसमें 7 डिफरेंट नेशंस के ट्रूप्स थे, तो एक एक प्लटून जो है अलग अलग देश से थी, तो वी हैड आयरलैंड के थे, फिनलैंड के थे, घाना के थे, फिजी के थे, पोलैंड के थे, नेपाल के थे, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी क्लोजली हम जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऑपरेट करते हैं और ट्रेन करते हैं।
1: जी, एक ही उद्देश्य के साथ एक साथ रहना अपने आप में ही कहते हैं कि बहुत खूबसूरत क्षण होते होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग देशों के सिपाही, अलग अलग देशों से ऑफिसर्स, वहाँ की आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ पर आपके साथ एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कितना सुखद होता है, कितना प्यारा होता है, क्योंकि काम के अलावा भी आपको बहुत से क्षण ऐसे मिलते होंगे या काम के दौरान मिलते होंगे जहाँ आप को दूसरी की जबान में या दूसरे जो हमारा दूसरे देश का जो सिपाही है, सोल्जर है, ऑफिसर है, उसके बारे में जानने को मिलता है, उस देश के बारे में जानने को मिलता है, अपने देश को का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, वो कितना प्यारा रहा?
0: बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, यू नो दिस वाज द पहली बार था कि मैं ऐसी डिप्लॉयमेंट पे था, और जब आप ऐसे जाते हैं तो थोड़ी बहुत आशंकाएं होती हैं कि कैसे दूसरे कैसे लोग होंगे, कैसे ऑपरेट करते होंगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बट एडवांटेज ये रहता है कि आप साथ में रहते हो, दिन रात साथ में ऑपरेट करते हो, ट्रेन करते हो, खाना पीना साथ में खाते हो, सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने देश का, अपने कल्चर का, अपनी प्रोफेशनलिज्म का डिस्प्ले करें, उसी प्रकार हम उनके बारे में सीखें। ये बड़ा आप अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो इतनी क्लोज क्वार्टर्स पे इतने लंबे टाइम के लिए साथ रहना, साथ ऑपरेट करना बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है, एंड यू नो यू गेट टू नो ईच अदर बेटर, एक दूसरे को आप इंटीमेट तरीके से जान पहचानते हो। इट इज़ अ वेरी गुड फॉर शोकेसिंग आवर नेशन, शोकेसिंग द इंडियन आर्मी, its capabilities and what kind of people you know operate in that. So and you know on a matlab apart from training and all social events, games, mm-hmm. sports, isme bhi interaction hota tha. So this was a very unique experience, and I think this kind of a cross cultural communication is

0: is very good for exposure and for displaying our capabilities to the world.
1: बहुत खूब. कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई बात, कोई याद जो यहाँ शामिल करना चाहते हैं, हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं?
0: या सो जस्ट ऑन द साइड, बाकी तो चलो करते थे हम, लेकिन हमने अपनी लोकल इंडियन राम और छम्मा छम्मा, उस टाइम पे जो है बड़ा फेमस गाना था, वो इंट्रोड्यूस किया अपने कैंप में. एंड जब भी सोशल इवनिंग होती थी, बाकी हो ना हो, छम्मा छम्मा पे जो है खूब जो है वहाँ पे भंगड़ा निकलता था. इट डिड नॉट डिपेंड वेदर यू आर फिन और यू आर आयरिश और यू आर यू नो फ्रॉम फिजी, लेकिन सब जो है छम्मा छम्मा पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज खूब दबा के डांस और मजे लेते थे.
1: तो ये बात निश्चित है कि जब वो अपने घर लौटे होंगे तो उन्होंने अपने देश में भी जाकर खूब छम्मा छम्मा किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें छम्मा छम्मा की धुन पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया.
0: हाँ जी, बाद में भी मिशन जब हम वहां से वापस आ गए, लेकिन ये बातें जो है काफी सालों तक चलती रही कि कैसे जो है बाकी कंटेंजेंट्स जो है इंडियन सॉन्ग्स और इंडियन डांस से बड़े प्रभावित हुए और बड़ा आनंद लेते थे.
1: हमने ये तो सुना है, भले ही आपकी यूनियन मिशन की बात हो, हम जब भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपनी अंतिम सांस तक करते हैं, लेकिन जिंदगी जीना तो कोई आप लोगों से सीखे, क्योंकि जब भी आपको क्षण मिलते हैं ना, आपको यही लगता है कि कल हो ना हो, बस यही एक क्षण है, इसको जी लिया जाए और खूब
0: आपने बहुत सही बात पकड़ी है.
1: तो कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एक दिन होता है, लेकिन उसे एक दिन में पल कैसे चुराए जाए वो आप इनसे सीखिए. जिंदा दिली अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे भारतीय सैनिक के नौजवान या फिर वो ऑफिसर्स जो रिटायर हो गए हैं, जो कार्यरत हैं, बस उन्होंने एक ही बात जानी है कि जीवन अमूल्य है और इस जीवन को ना आप जिस तरह से, जिस शिद्दत के साथ जीना चाहते हैं जिए, लेकिन अपने देश के प्रति अपने कार्यभार को या फिर अपने उद्देश्यों को कभी भी आप अपने आप से दूर ना कीजिए. आप फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी.

0: वेलकम बैक संदेश टू सोल्जर्स. आज के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है. और आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं. और हर बार की तरह ये शो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी किसी आर्मी ऑफिसर से बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होने लगता है कि जैसे मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता को यहाँ पर आप सभी के सामने रख रही हूँ. तो बहुत ही खूबसूरत पल, जिस तरह से आपके लिए उस तरह से मेरे लिए, क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं कर्नल विवेक चौहान. कर्नल विवेक चौहान, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, ऑपरेशन विजय हम सबके लिए किसी न किसी मायने में, चाहे वो आर्म फोर्सेस में रहा है या नहीं रहा है, पूरे देश के लिए ही ऑपरेशन विजय कहीं ना कहीं बहुत ही दिल के करीब रहा है. ऑपरेशन विजय का आपके लिए, आपका चयन होना, आपका वहां पहुंचना कैसा सीधा रास्ता था, क्या हुआ था जो आप उस मिशन का हिस्सा बन पाए?
1: तो एक्चुअली मेरे डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन विजय में वाज अ लिटिल कॉमेडी ऑफ एरर्स, थोड़ी गलती से हो गया. तो मैं लेबनन से वापस पहुंचा ही था, ऑपरेशन विजय अभी स्टार्ट हुआ था, मई का वक्त था, और प्लेन्स में भी जो है डिप्लॉयमेंट थी, हम लोग अपने अपनी जगह डिप्लॉयड थे. तो उससे पहले हमारी एक दस्ता जो है लगभग 22 आदमी का, वो द्रास में चला गया था, डिप्लॉय हो गए थे, और उसमें से दो कैजुअल्टीज हो गई और दो हमारे साथी नहीं रहे. सो जब ये हुआ तो वहाँ ऑफिसर नहीं था, तो मेरे सीओ साहब थे, उनको लगा कि ऑफिसर होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर कैजुअल्टीज हो गए. तो किसी टाइम सुबह उन्होंने अपने बॉस जो जनरल साहब थे उनसे बात करी कि, और क्योंकि सीधे में बात नहीं कर सकते थे, उन्होंने बोला दैट मैंने एक ऑफिसर नॉर्थ भेजना चाहता हूँ. जनरल साहब को लगा नॉर्थ मतलब प्लेन्स के नॉर्थ में कहीं डिप्लॉयमेंट. अच्छा. तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, वेरी गुड, और आज ही निकालो. तो वो आज ही निकालो का इफेक्ट ये हुआ कि सीओ साहब ऑफिस से निकले, मेरे को बोला 2 घंटे और आप निकलो सीधा द्रास के लिए. तो आपको समझना चाहिए कि 99 का टाइम था, मोबाइल फोन्स वगैरह वर नॉन एग्जिस्टेंट, कम्युनिकेशन, इंटरनेट ढीला था, रिजर्वेशन वर नॉट इजी टू गेट. तो हमारे को अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग करी, 2 हथियार पकड़ा दिए, एमिनेशन पकड़ा दिए, 4 ग्रेनेड पकड़ा दिए, और मेरे साथी थे जो मेघालय से, हमको बोला कूच करो, चलो पहुँचो. तो रीचिंग द्रास इन इटसेल्फ वाज एन एडवेंचर. वो क्या ट्रेन के गार्ड के कैबिन में पीछे बैठ के, एंड ही वाज मोर देन हैप्पी, बड़े खुश हुए कि हम जा रहे हैं लड़ाई के लिए, तो आप हम मेरे साथ चलो. लिफ्ट लेते लेते जो है हम द्रास पहुंच गए, 3-4 दिन लगे, पर हम पहुंच गए. एंड इट वाज अ वेरी यूनिक टाइम. आपके शो में मैं उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो हमारे साथी वहाँ आज नहीं रहे बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस, और उनको भी जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि दोज आर वेरी डिफरेंट.

0: टाइम्स जब एक वैली के अंदर शेलिंग होती है या गोले गिरते हैं तो बड़ी दहकाने वाली गूंज होती है, बड़ा सीरियस टाइम होता है. सो इट इज़ यू नो क्रेडिट टू ऑल द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी हु डिड अ वेरी इम्प्रेसिव जॉब. एंड जो लोग वहाँ जाते हैं दे विल अंडरस्टैंड कि हाई ऑल्टीट्यूड में उन हाइट्स पे चलना, खाना पीना, लड़ना कितना मुश्किल है. वहाँ का एक इंटरेस्टिंग वाक्या सुनाता हूँ. तो मैं पहुँच गए हम तो ऊपर नीचे जाना पड़ता था अलग अलग लोकेशंस में. तो हमारी गाड़ी जो थी उसके ऊपर कवर नहीं था क्योंकि वो हमारा इक्विपमेंट वैसा था. तो मेरे ड्राइवर थे जगतार सिंह जो सरदार जी थे. अभी हम जा रहे होते तो वहाँ हुक्म था कि सब जो है हेलमेट पहनेंगे. तो मैंने भी हेलमेट पहना होता. फिर मैं जगतार की तरफ देखता जो जिसने पगड़ी पहनी हुई थी. अब जब शेलिंग स्टार्ट होती तो मेरे को गिल्ट हो जाता कि जगतार ने जो है वो पगड़ी पहनी है, उसने हेलमेट नहीं पहना. तो मैं अपनी हेलमेट निकाल के आउट ऑफ गिल्ट जो है अपनी बेरे पहन लेता. फिर पास में कुछ आवाज़ें आती तो मेरे को डर लगता और कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती कि हमें बोला गया नहीं हेलमेट पहनना है, तो मैं हेलमेट पहन लेता. फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ देखता और मैं देखता उसकी तरफ तो मुझे लगता ये तो गलत है, ये बिना हेलमेट के चल रहा है और मैंने हेलमेट पहना हुआ. फिर वही कहानी उल्टा, फिर बेरे पहनो फिर हेलमेट. सो दिस वाज यू नो दिस बिकम अ वेरी ह्यूज लाफिंग फैक्टर फॉर जगतार एंड फॉर अदर ट्रूप्स ऑल्सो.
1: बट ये बहुत अच्छा उदाहरण है नाम नमक निशान का, कि जहाँ अपने साथ साथ अपने साथी की भी उतनी ही रक्षा करना जो आपके साथ उसी मिशन में शामिल है.
0: Yeah, I think this is the ethos which we are brought up with, you know. And while it was not funny that time, today in hindsight, I can laugh over it, and so can Jagtar.
1: जी बिल्कुल. जगतार साहब भी जब इस बात को सोचते होंगे तो उनको जरूर हंसी आती होगी. लेकिन जिस तरह की अपब्रिंगिंग कहूंगी मैं यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि परवरिश हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं, हमने अच्छी परवरिश दी है और इंडियन आर्मी भी इसी तरीके की परवरिश देता है कि अपनी रक्षा करो, अपने साथियों की रक्षा करो और वापस अपने साथी को लेकर आना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. मिशन में फतह तो हासिल करनी ही करनी है पर इसे कभी नहीं भूलना कि साथी को कभी आधा अधूरा यानी कि आधे रास्ते पर नहीं छोड़ना.
0: बिल्कुल. इफ यू आर रेडी टू सैक्रीफाइस फॉर अ फेलो सोल्जर यू कैन डेफिनेटली सैक्रीफाइस फॉर योर कंट्री. आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग.
1: जी. अब मुझे एज अ हेलीकॉप्टर पायलट क्या चैलेंजेस रहे और क्या कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना थल से एकदम आप वायु, थल से एकदम जमीन से एकदम आसमान में पहुंच गए. तो किस तरीके से एक आर्म्ड फोर्स पर्सनल जब एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपने कर्तव्य निभाता है क्या बदलाव आते हैं?
0: सो मैंने एविएशन के लिए अप्लाई किया बिकॉज यू नो आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई फील एंड माय प्रिंसिपल इज दैट देयर इज वन लाइफ, एक जिंदगी है और हमें उसको वी हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट, है ना. ऐसा कोई चीज छूटे ना कि हम 20 साल बाद रिग्रेट करें कि ये कर सकता था और नहीं किया. सो दैट इज़ वाई मैं अप्लाई किया. मैंने एविएशन के लिए सिलेक्ट हो गए, 1.5 साल ट्रेनिंग करी अलग जगह पे और फिर मैं श्रीनगर में जो है अपनी पहली पोस्टिंग मैंने मांगी थी वहाँ के लिए ऑपरेशन एरिया के लिए, तो वहाँ पे मेरे को पोस्ट कर दिया गया. सो वो ये जो बदलाव है ये बड़ा काफ़ी ज़्यादा यूनिक है क्योंकि जब आप ग्राउंड फोर्सेस में होते हैं तो आपकी रीच जो बड़ी लिमिटेड होती है और जब आप एविएशन में स्पेशली आर्मी एविएशन में जाते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे थी और ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा होते थे वैली में. सो पूरे कश्मीर घाटी अलग अलग जगह जहाँ लोग जाते भी नहीं हैं वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ अलग अलग ऑपरेशंस करने का मौका मिला. लेकिन सबसे यूनिक वो रहा कि जब कोई कैजुअल्टी हो जाती थी ऊंचाई में डिफ़िकल्ट एरियाज में, वहाँ पहुँच के उनको टाइम से हॉस्पिटल तक लाना वाज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग इवेंट्स. देर आर मैनी जहाँ हम नहीं कर पाए बट द फैक्ट दैट वी वर एबल टू डू at some risk and sometimes quite a bit of risk is one of the few satisfying things that

0: मेरे को लगता है in my career as a helicopter
1: क्या
0: pilot.
1: खूब हमारे हम जो भी काम करते हैं उसमें एक सेटिस्फाइंग पॉइंट जरूर होता है, और आपके लिए सेटिस्फाइंग पॉइंट था जहां पर जीवन दान यानी कि जीवन बचाया, और अपने जीवन को जब हम उसका उसके बारे में नहीं सोचते हैं, और ऐसा सिर्फ एक आर्म फोर्स पर्सन ही सोच सकता है कि जीवन को तो आप हथेली पे लेकर चलते हैं और इस उद्देश्य से चलते हैं कि मेरा जीवन तो दूसरे के लिए है.
0: और इसका यू नो आई ऑल्सो वॉन्ट टू फोकस ऑन कमराटरी, जो हमारी आपसी मिलाप और एक दूसरे के लिए जो करने के लिए, ठीक है, इवन एट प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्क. तो उसके 5-6 साल बाद मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था और एक टुकड़ी के ऊपर था, कमांड कर रहा था, ऑपरेशन चल रहे थे जंगल में और कुछ कैजुअलिटीज हो गई. 2 आदमी हमारे, उनको गोली लग गई और एक उनमें से बहुत क्रिटिकल था. बारिश का मौसम था एंड उनको इवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल रहता क्योंकि रोड दूर था. तो मेरे एक साथी थे जिन्होंने मेरे साथ एविएशन में पहले सर्व किया था, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, वी आर इन अ डिफ़िकल्ट एरिया और अगर यहाँ से नहीं निकाल पाए तो ये शायद नहीं बचेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ दैट कमराडरी, आपसी जो एक दूसरों के करने की जो जिद होती है जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोला बाकी तो आप करते रहो जो भी आपका प्रोसेस होता है हेलीकॉप्टर डिमांड के लिए, लेकिन मैं यहाँ से टेक ऑफ करूँगा. और वो आए ऐसी जगह पे आए जहाँ 200-300 मीटर दूर गोलियाँ चल रही थी, ऐसी जगह लैंड किए जहाँ पे खेत में पानी था, लेकिन उन्होंने एट प्रोफेशनल रिस्क एट पर्सनल रिस्क ये किया. So, you know, this is part of the ethos, this is part of the story of the Indian Army, that for each other, there is a lot of risk, a lot of assistance that we give to each other.
1: कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा जाता होगा ना, यहाँ पे भी एक तरह का एक्सचेंज है. आप अपने फेलो को कोई डिसीजन लेते हुए, कोई निर्णय लेते हुए, कोई जिम्मेदारी लेते हुए सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता था. दिस ऑल बट इट रिवॉल्व्स अराउंड यू.
0: यस, एंड इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द टू योर सोल्जर्स, टू योर कॉलीग्स, कि यू नो वी आर नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड. हमें पीछे नहीं छोड़ेगा कोई, ठीक है. अगर आज हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, देयर इज समबडी लुकिंग आफ्टर अस. सो दैट्स अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रांग इथॉस.
1: जी, इसके बाद फिर राष्ट्रीय राइफल्स में आप रहे, जैसलमेर, दिल्ली, यहाँ सभी आई मीन पोस्टिंग्स में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया. 23 साल बाद रिटायरमेंट. वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर. क्या आज भी इस बात को महसूस करते हैं? और जब रिटायरमेंट लिया तो क्या उस रिटायरमेंट फेज से बाहर निकलना आसान था, मुश्किल था? ये जहन को मालूम हो रहा था कि कुछ कुछ छोड़ आया हूँ?
0: एक्चुअली रिटायरमेंट से पहले ज़्यादा मुश्किल था, और रिटायरमेंट से हाँ डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था. एंड अभी आपने सोशल मीडिया और बाकी जगह भी देखे होंगे, देर इज़ अ यंग ऑफिसर हु हैज टेकन रिटायरमेंट. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. आप एक जज्बे के साथ फौज में आते हैं, उस जज्बे के साथ फौज में रहते हैं, एंड इफ़ यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट इन्वायरमेंट, फ्रॉम दैट उस ग्रुप से आप निकलना चाहते हैं, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 3-4 months ऑफ स्लीपलेस नाइट्स टू डिसाइड कि छोड़ूं या नहीं छोड़ूं. बट फाइनली जब मैंने छोड़ा, उसके बाद एक्चुअली मुझे रियलाइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. यू नो आई वेंट टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, एंड वो ख़त्म होते ही मैं न्यूयॉर्क चला गया. वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में. सो दैट जब तक मुझे जो रियलाइज होना चाहिए था, जो फ्री टाइम होना चाहिए था फौज से निकलने के बाद कि मैं हूँ, कहाँ हूँ, क्या कैसे हूँ, वो रियलाइज हो नहीं पाया. एंड यू आर राइट, वंस एन ऑफिसर ऑलवेज एन ऑफिसर, और वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर. आज भी आई फॉलो द सेम टाइमलाइन. सुबह उसी टाइम उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शेक ऑफ दैट हैबिट.
1: जिस तरह से इंटर मिलिट्री अकेडमी में अंतिम पग उसको पार कर, यानी कि उस अंतिम क्षण तक ट्रेनिंग का प्राप्त कर फिर अपनी सर्विसेज देना, और फिर अंतिम सांस तक सिर्फ भारतीय सेना के साथ जुड़े रहना, इसके बीच का जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो अंतिम सांस तक जो व्यक्ति सोच लेता है कि मैं तो भारतीय सेना को ही समर्पित हूँ, उसके लिए ये डिसीजन लेना सच में बहुत

0: ज्यादा मुश्किल होता है निश्चित रूप से। लेकिन मैं जानना चाहूंगी व्हाट आर प्री मेच्योर रिटायरमेंट्स, अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो।
1: ओके, सो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बाय द जो नाम जैसे सजेस्ट करता है, इट इज रिटायरमेंट अप्लाइंग फॉर रिटायरमेंट और टेकिंग रिटायरमेंट बिफोर योर मैंडेटरी सर्विस पीरियड और योर मैंडेटरी बॉन्ड पीरियड हैज एक्सपायर्ड। परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए 20 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसी प्रकार सोल्जर्स के लिए अलग अलग रैंक पे टाइम निर्धारित है। सो समटाइम्स बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस बड़े सारे, इट्स अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ वेरियस कंपल्शंस और पर्सनल रीजंस अ मैन इज फोर्स्ड to break away from the organization or go away from the organization, which is a very difficult time. So you apply, and if the organization agrees on the justification ki ha aapki baat mein merit hai, they will let you go before your mandatory time. So that is what premature retirement is.
0: Ji. बहुत सारे हमारे पास यहाँ संदेश आए हैं एंड आपको बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत मैसेजेस के जरिए अपना प्यार अब तक बरसा रहे हैं। यहाँ पर अनिल कुमार हैं जिन्होंने संदेश भेजा है उत्तराखंड से, और इन्होंने आपको नमस्कार कहा है, विश्वकर्मा पूजा की कुछ शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, एक ऑफिसर को जिसने आर्म फोर्सेज में अपना दमखम साबित किया अपने कार्यकाल में, उसको विश्वकर्मा पूजा का बिल्कुल मतलब पता है, क्योंकि उसके लिए सारे अस्त्र शस्त्र शारीरिक मशीनरी ही है जो जिससे उसे सशक्तिकरण महसूस हुआ है। तो विवेक सर, देश की सेवा के लिए आप जो कर रहे हैं, तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो आज भी जब इस तरह के संदेश मिलते हैं, यू आर द हीरो, द रियल हीरो, हम यही कहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको लोग इतना प्यार करते हैं, काबिले तारीफ है। संदेश यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया है, सबलपुर से नाम चारुण है इनका, जय हिंद इन्होंने लिखकर भेजा है। पंकज का अमरावती से आया है संदेश, कहते हैं कर्नल विवेक चौहान रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, जिसे बातचीत बढ़िया लगी है और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, और ऑपरेशन विजय में शहीद हुए सभी सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। और आकाशवाणी एफएम रेनबो के माध्यम से तो हम नित्य प्रति सभी सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को नमन कहते हैं कि आपकी कर्तव्य निष्ठा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगला संदेश यशवंत का आया है महाराष्ट्र से, और ये भी आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं यशवंत। संदेश हमारे पास आया है तमिलनाडु से, शूरवीर सेना नायक अधिकारी को मेरा प्रणाम, जय हिंद विजय कुमार वी का संदेश है, और जिन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान, हमारे सैन्य अधिकारी काम करते हैं, अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं हमारे ये दोस्त, जय हिंद लिखकर भेजा है दीपांशु ने भटिंडा से, जहां आप पहली बार एज अ कमीशन ऑफिसर तैनात हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक एफिनिटी हो जाती है, जैसे कि जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नाम सुनते ही मेरी आपके साथ हो गई सर, ऑफिसर के साथ हो जाती है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके माता पिता इंडियन आर्म फोर्सेस, और अब आपका परिवार जिसमें खास तौर पर आपकी स्पाउस आपकी बेटर हाफ है, आपको ऑफिसर बनाने में आपके माता पिता का आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करने में आपकी बेटर हाफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, आपके पीछे आपका घर बखूबी वैसा ही चल रहा होगा जैसे आप उसे छोड़कर आते होंगे जब अलग अलग पोस्टिंग्स के लिए अकेले जाते होंगे, तो क्या कहना चाहते हैं?
1: सो आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर जो वाइव्स हैं हमारे सोल्जर्स की, हमारे ऑफिसर्स की, बिकॉज यू नो इट इज उनकी सपोर्ट के बगैर आप ठीक से काम नहीं कर सकते। अगर आपके घर के घर से पीस है, आपकी वाइफ जो है आपके डिसीजन सपोर्ट करते हैं, कभी डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं, कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास काम है, आपको रिस्क लेना है, सो दैट इज अ सेक्रीफाइस फॉर द फैमिली। And I have absolute respect for the ladies, for the wives of all our soldiers who let them go, who gladly let them go to their field postings for their deployments, for their trainings, bina ro dho ke, bina ruckus create kare hue, bina complaints kare hue, aur unki absence mein akele ghar sambhalna, bachchon ko padhana, bachchon ko dekhbhal karna, parents ko dekhbhal karna, सोशल एंगेजमेंट जो है उनको सिंगल हैंडेडली हैंडल करना, That is a credit to the ladies, to all of them, and I have absolute respect for them.
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी कमांडिंग ऑफिसर रही हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, घर के दरवाजे के अंदर घुसते ही आप जो है अपना रैंक जो है दूसरे अपनी स्पाउस को पहना दीजिए और सैल्यूट कर दीजिए।
0: वाह क्या बात है। तो ऑल दी आर्मी ऑफिसर्स हु आर लिसनिंग टू अस, जितने भी सुन रहे हैं, रिटायर भी हो चुके होंगे, तो शायद आपकी बात से वाकिफ होंगे कि सच में ऐसा ही होता है। और शायद एक घर चलाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को सिविलियंस को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। सो मैं यही कहना चाहूंगी कर्नल विवेक चौहान, यू आर नॉट रिटायर्ड। बहुत सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप समय समय पर अलग अलग कार्य करते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि एक ही जिंदगी है, बाद में जीवन में रिग्रेट्स ना हो, इसके लिए जरूरी है कि जो मिलता जाए या जो आप अपनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे पा लीजिए। हमारे यूथ जो है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: मैं यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, यू नो, प्लीज बी प्राउड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, बिकॉज दे डू सैक्रिफाइस अ लॉट on your behalf, and they feel proud of the fact that whatever they do it for the future of our country, and for the people of this country. So support them, be proud of them, and that is how you can thank them for their services.
0: जी बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात और बहुत ही प्यारा संदेश। और अब जो नगमा मैं यहाँ प्ले करने वाली हूँ, निश्चित रूप से उन सभी वाइफ्स के लिए है जो जिनका संबंध आर्मी से है, आर्म फोर्सेस से है, आर्म फोर्स पर्सनल से, वो उनकी अर्धांगिनी है, स्पाउस हैं। तो हमारी ओर से आपको, आपके लिए ये गाना, और एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कर्नल विवेक चौहान का, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, पर जैसा कि उन्होंने खुद कहा, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर जिंदा दिली के साथ जीना चाहता है और दूसरों की जिंदगी को आसान बनाना चाहता है। तो मैं गीतिका आपसे लेती हूँ इजाजत, होगी आपसे फिर मुलाकात।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

और आप सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विकास हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत अन्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले में बाटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस पर तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठवाड़ा वाले हैदराबाद क्षेत्र के लोगों को बधाई दी है। प्रधान परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल है। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से ये जानकारी सामने आई है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता अभियान की शपथ दिलाई। मेघालय में पूर्वोत्तर जोन अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लगभग 10 वर्ष बाद फिर से आयोजित की जा रही है। और क्रिकेट में आज भारत में नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी पे शुरुआत हो चुकी है प्रोग्राम सिटी लाइट्स की, और सिटी लाइट्स लेकर हाजिर हूँ मैं आपके अपनी, जी हाँ बिल्कुल अपनी खास दोस्त सीमा। और जैसे कि मैं बात करती हूँ ना, इतनी सारी बातों में काम की बात भी होती है थोड़ी थोड़ी, तो चलिए आज काम की बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। और ढेर सारी बातें और बहुत सारी जानकारी, मौसम का हाल, ट्रैफिक की जानकारी, और कौन कौन से फॉर्म्स कहाँ कहाँ पे निकले हुए हैं, सभी सुन पाएंगे आप आपके अपने आकाशवाणी FM रेनबो पर। और मैं सीमा, जी हाँ, और आया है मौसम दोस्ती का। इसके साथ साथ पता है एक और मौसम चल रहा है स्ट्राइक के बाद, वो मैं बताने वाली हूँ कौन सा मौसम चल रहा है, कहाँ चल रहा है, सब जानकारी मिलेगी आपको आपकी 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

वैसे कहाँ दोस्ती के मौसम की बात कर रहे हैं, मौसम तो चल रहा है भाई एग्जाम्स का। जी हाँ, एग्ज़ाम्स का मौसम चल रहा है और जहाँ तक मैं जानती हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात करूँगी यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स तो अपने हिसाब से डेट शीट लगाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स होते हैं सब एक ही प्रकार की डेट शीट चलती है, जहाँ पर 15 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, है ना, और जो कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहे हैं, और कक्षा 3 से लेकर 12 तक के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, और बाकी की जितनी भी गाइडलाइंस थी, निर्देश जारी किए जा चुके हैं शिक्षा निदेशालय के द्वारा, और मुझे लगता है कि बच्चे पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम्स में बैठ गए होंगे और बैठ रहे हैं, और ये एग्ज़ाम तो चलने ही वाले हैं। लेकिन आपको बताएं कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, ख़ासतौर पे हम बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, अगर हम एग्ज़ाम देते हैं और उसमें हम मेरे ख्याल से स्कूल में अगर हम टॉप करते हैं तो ये अपने आप में एक गौरव का विषय है ना। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इतने अच्छे अंक ला रहे हैं और उसके बाद आपको इतनी अच्छी प्रशंसा मिल रही है, प्रेज़ किया जा रहा है, तो ये अपने आप में और भी अच्छी बात है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं ये बात बोल क्यों रही हूँ, क्योंकि आपको बता दें कि 10वीं क्लास में जिन बच्चों ने टॉप किया था, जिनके अंक बहुत अच्छे आए थे, उनके लिए आज ख़ास दिन है। जी हाँ, आज खास दिन है। परीक्षा में टॉप करने वाले के बाद जो विद्यार्थी स्कूल में सम्मान मिलता है, इस बार क्या हो रहा है पता है, इस बार उस टॉपर स्टूडेंट के घर पर उसके प्रधानाचार्य जी, उसके प्रिंसिपल सर पहुंचने वाले हैं। तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है, 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपके प्रिंसिपल सर और आपके कुछ टीचर्स आपके घर में आएंगे और आज आपके नाम आशीर्वाद का दिया जलाएंगे। और शिक्षा निदेशालय ने आशीर्वाद का दिया नाम से विशेष पहल शुरू कर दी है, और इसके तहत आज शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच स्कूल के सभी प्रिंसिपल्स अपने 2 टीचर्स के साथ क्लास 10th के टॉपर्स के घर पे पहुंचेंगे और उसके घर में दिया जलाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। तो हम भी आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, साथ ही साथ जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस साल अपीयर होंगे, उनको भी हम कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी बात है ना, आप तो हमेशा स्कूल आते हैं, है ना, लेकिन जब स्कूल की टीम आपके घर आए तो क्या बात होगी, है ना। और आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो सच में सपना देखते हैं कि कब हमारे बच्चे कितना नाम कमाएं, इतना नाम कमाएं, जब हमारे स्कूल के लोग हमारे घर पहुंचेंगे तो आसपास के लोग आए हाय छा जाओगे आ जाओ। चलिए, बहुत सारे सपने लिए आंखों में आपके पेरेंट्स, आपका परिवार, आपके छोटे भाई बहन सब है, साथ में मैं तो हूँ ही। प्रोग्राम सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, और पापा कहते हैं, मम्मी भी कहती है,

और अब एक जरूरी सूचना, तत्काल रक्तदाता की आवश्यकता है। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव, अस्पताल PSRI हॉस्पिटल, साकेत, दिल्ली। कृपया इच्छुक रक्तदाता तत्काल संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9811353879। नंबर में दोबारा दोहरा देती हूँ, 9811353879 और 9810119294। तो इच्छुक रक्तदाता जरूर संपर्क करें।

0: क्योंकि तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
3: इस शुक्रवार 18 सितंबर को सुबह 9:15 से 9:30 बजे तक,
2: और जानिए SOL के UG और PG कोर्सेज के बारे में।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: आप सुन रहे हैं आपका कार्यक्रम सिटी लाइट्स, और मैं आपके साथ आपकी अपनी सीमा। और आपको बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के आधार कार्ड अभी अपडेट कराना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही काम की खबर है, क्योंकि 30 सितंबर तक बच्चों के आधार कार्ड निःशुल्क अपडेट कराए जा रहे हैं। आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI ने कहा है कि 5 से 17 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड 30 सितंबर तक निःशुल्क अपडेट होगा। 5 और 17 साल की उम्र पूरी होने पर बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करना अनिवार्य है। तो अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है, तो आपको बता देते हैं कि 30 तारीख बिल्कुल लास्ट डेट है। इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और बच्चों का आधार कार्ड को अपडेट कराइए। और क्या और मेरे पास पता है इतनी सारी बातें, मुझे ही नहीं समझ आ रहा है कौन सी बात मैं पहले बोलूँ, कौन सी बात मैं बाद में बोलूँ, क्योंकि कहते ना इतने दिनों दिनों में मुलाकात नहीं करनी चाहिए, इतने दिनों दिनों में बात नहीं करनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन है होती रहनी चाहिए, वरना इतना सारा इकट्ठा हो जाता है फिर क्या बोलूँ क्या छोड़ूँ, और इतने कम टाइम में ऐसा लगता है कि अरे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था,

वो वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा ये तब तो मैं बताऊँगी, लेकिन सच में एक घंटा ना कम लग रहा है कम लग रहा है। और उस पर इतने सुपर हिट गाने, अरे ये तो सच में मेरा बहुत फेवरेट है। इसके बगैर ना मेरे को लगता है मेरा शो हो नहीं पाता है सच में।

कचरा मुक्त बनाने का जो हमारा गोल है उसको अचीव करना है, और ये अकेले नहीं हो पाएगा, है ना। अकेले कुछ भी नहीं हो पाएगा, जब तक आप साथ नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और इस हमारे साथ में सबसे ज्यादा जरूरत है इस बार आपकी। जी हाँ, आपकी मतलब कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जेन ज़ीज की। यस, बहुत कचरा फैलाते हैं, है ना, लेकिन अब बात आ गई है जेन ज़ीज की। इस बार सेंटर में उनको रखा जा रहा है, खासतौर पर जागरूकता सहभागिता अभियान चलाया जाए और गंदे स्थानों का कायाकल्प करना, जागरूकता और जन भागीदारी, और स्कूली विद्यार्थियों और युवाओं को स्वच्छ गतिविधियों में भागीदारी पर विशेष ध्यान दिलाना, ये बहुत ज़रूरी है, सच में बहुत ज़रूरी है। पता है, सच में बच्चों को तो सच में बहुत ज़रूरी है ये बताना है कि किस तरह से साफ सफाई रखी जाती है। शुरुआत करें ना घर से ही, क्यों ना। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें बताएं कि घर से ही किस तरह से साफ सफाई, छोटे छोटे कामों में उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाना, सहभागिता करवाना, यह हमारी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ बच्चा निकल के चलता है स्कूल की तरफ, तो स्कूल में टीचर्स की वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद समाज की तो फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बच्चों को खास तौर पर एक्टिव बनाना, अवेयर बनाना। और आपको मैं एक बात और बता देती हूँ, ये बहुत ही काम की बात है और थोड़ी सी ना खतरनाक बात भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप गलत जगह कूड़ा फेंक रहे हैं तो सैनिटेशन स्क्वाड की नज़र है अब आपके ऊपर। तो आप सोच के रखिएगा कि अगर आप इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं तो आप ये सोचते ना कि कोई देख ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। अगर आप गैर कानूनी तरीके से कूड़ा फेंक रहे हैं तो आपका चालान भी हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको सावधानी रखनी है, और साथ ही साथ जो अपनी दिल्ली है इसको एक नया कूड़ेदान मुक्त शहर बनाना है, और ये जो हमारा स्वच्छता ही सेवा अभियान है इसमें हमें ज़रूर ज़रूर ज़रूर कंट्रीब्यूट करना है, और करना है ना, तो मुझे लगता है कि सब करेंगे, है ना, और आज से ही करेंगे, शुरुआत करेंगे आज से ही। तो चलिए, मेरी तरफ से ये एक बहुत सुंदर सा ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ आपके सिटी लाइट्स में, और मुझे मालूम है बहुत सारे प्रोग्राम में हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्ट भी भेज दी है, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं चला सकती ना जनाब, मैं अपनी चलाऊंगी यहाँ पे आज आज मेरे को अपनी चलाने का मौका मिला है ना, तो मेरी पसंद के गाने चलेंगे, सुना है चलिए सबकी पसंद के गाने चलाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आके आते हैं।

सच में मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ। और पता है मुझे क्या याद आया था मुझे क्या याद आया, मुझे याद आया था सच में कि कितनी हसरत है एसी को कम कराने की। यार इतना ठंडा लग रहा है अंदर जब मैं आई थी ना इतने पसीने से लथपथ, और ऐसा लग रहा था कुछ कूल नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आप ऐसा कहते ना कि दिसंबर की ठंड लग रही है इस वक्त यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी हम सह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारे लिसनर समझते हैं प्यारे हैं, इतने सुंदर मैसेजेस हमें भेज रहे हैं तो उन्हें पढ़ पढ़ के ना बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। और जैसे कि इन्होंने कहा ना कि कितनी हसरत है तुमसे दिल लगाने की, और दिल की बात भला कैसे कहूँ, वो तो आपके पास बिल्कुल मीडियम है। 9868107070 पर आप मैसेज कीजिएगा और अगले प्रोग्राम में मैसेज मसाला मिक्स में आप भर भर के, बिल्कुल भर भर के अपने दिल की बातें बता दीजिएगा, बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। और अभी जो मुझे बताना है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि त्यौहार का सीज़न आने वाला है। जैसे ही अक्टूबर का सीज़न होता है ना, त्यौहार आ जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में दिवाली आ जाती है, दशहरा आ जाता है, रामनवमी आ जाती है, इसके अलावा छठ पूजा भी आ जाएगी, सारे त्यौहार आ जाएंगे। और ख़ासतौर पर जो हमारे दिल्ली से बाहर रहने वाले लोग हैं उनको लगता है कि जो त्यौहार है ना परिवार के साथ मनाना चाहिए, तो ऐसे में ट्रेन को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है ना। तो आप पहले से ही अपनी बुकिंग करनी शुरू कर देते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि बहुत सारी स्पेशल ट्रेन्स भी चलेंगी, और हर बार चलती हैं, इस बार भी चलेंगी, उनकी जानकारी मैंने आपको दी भी थी। और लेकिन आज एक और बात बता देती हूँ, जोगबनी के लिए भी विशेष रेलगाड़ी चलने वाली है। आनंद विहार से जोगबनी बिहार के बीच विशेष रेलगाड़ी का जो

संचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या भी इसमें दी गई है जो कि 04008 आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येक शनिवार को 10 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगी। वही गाड़ी आपकी जोगबनी से प्रत्येक रविवार को यानी कि 11 अक्टूबर से 8 नवंबर को चलेगी। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जगहों से भी मिल सकती है। तो अगर आपने प्लान किया हुआ है घर जाने का तो आप ज़रूर ज़रूर ज़रूर अभी से ये सारी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए और अपना टिकट को ज़रूर बुक करा लीजिएगा, क्योंकि जो त्यौहार रहते हैं ना वो अपनी फैमिली के साथ उन त्यौहारों का मज़ा कहते हैं ना कई कई कई कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए, और जब प्रोग्राम में आप आ ही गए हैं और आपके प्रोग्राम में अगर हम ट्रेन की बात कर रहे हैं और ट्रेन का गाना नहीं चलाएंगे तो कैसे चलेगा? चलिए वो बात दूसरी है कि सुबह की नहीं है शाम की ट्रेन है। चलिए अभी जो हम बता रहे हैं वो तो शाम की ट्रेन है ना। चलिए ये शाम की ट्रेन का गाना तो मैं चला रही हूँ आपके लिए, इसे ना सुबह मत काउंट करना, शाम।

सुबह की तो नहीं है बिल्कुल भी, और अब तो शाम हो गई है ना। शाम हो गई है और शाम का वक्त भी हम आपको बता देते हैं जी, 5:40 होने वाले हैं, बिल्कुल होने वाले हैं। और बिल्कुल तैयारी रखिएगा क्योंकि 6 बजते हैं ना, जैसे जैसे जैसे 6 बजने को आते हैं ना, जो दिल की धड़कन है ना इतनी तेज़ हो जाती है मेरी, कैसे बताऊँ मैं। लेकिन एक बात है जो मुझे बतानी है, आपको बता देती हूँ कि आईपी यूनिवर्सिटी में अब जो कॉलेजेस हैं अभी भी आपके पास एक चांस है, जिसमें अभी तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया था तो भी आपको एडमिशन मिल सकती है ना, कमाल की खबर। आईपी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस में दाखिले हो चुके हैं छात्रों को राहत भी मिली है इससे। दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय ने 26-27 सेशन के लिए और काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग के बाद जो खाली बची हुई सीटें हैं अब उनके लिए सीधा दाखिला देने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, और आपको ये बता दें कि अगर अगर सीट्स खाली हैं और अभी बच्चों का जो साल है ख़राब ना हो, इसके लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, नंबर नहीं आया था, तो भी आप मेरिट के आधार पर दाखिला ले सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके एक बार आपको मौका मिलेगा, और अगर सीट खाली हुई, आपके किस्मत में वो सीट हुई, तो ज़रूर आपको वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल आपको कहते हैं ना कि ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। और इसके साथ साथ मैं अभी आपको एक ज़रूरी सूचना भी दे देती हूँ, जैसे कि अभी हमने पहले भी कहा था कि एक ज़रूरी सूचना है, तत्काल रक्तदाता की आवश्यकता है, ब्लड ग्रुप

0: ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव अस्पताल PSRI हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली। कृपया इच्छुक रक्तदाता तत्काल संपर्क करें। फोन नंबर है 9811353879 और 9810119294।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर आपका अपना सिटी लाइट्स प्रोग्राम, और आज मैं भी आपकी अपनी हूँ सीमा। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौसम की। वैसे मौसम की मैं क्या बात करूँ, मौसम तो अपने आप में बहुत ही कहते हैं ना अमेजिंग हो रहा है। कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी कुछ, और पता नहीं बारिश भी हुई तो पता नहीं वो गर्मी क्यों नहीं जा पा रही है ना। लेकिन आपको बता देते हैं कि राजधानी में एक बार फिर से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी ने फिर से एक बार सच में गर्मी से लोगों को बेहाल कर दिया है। और बुधवार को राजधानी में अधिकतम तापमान जो था ना, सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, और इसके कारण क्या हुआ कि तेज़ उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग ने गुरुवार को, आज ही है ना, गुरुवार को गर्मी से हल्की राहत की संभावना जताई है। और साथ ही मौसम विभाग से ये भी कह रहे हैं कि अधिकतम जो तापमान है 36 डिग्री के करीब रहेगा, और ये सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और जबकि राजधानी में बारिश की संभावना है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो बिल्कुल उम्मीद ना लगाएं। और मुझे तो लग रहा है हम गाना गाते कि बारिश के लिए आ जाए, अभी तो मुझे लग रहा है कि जाने जाने वाला हो रहा है सीज़न। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने जाने का सिलसिला तो लगा रहेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो खास होते हैं और वो ठहर जाते हैं, है ना। तो आपकी ज़िंदगी में भी है कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस या कुछ यादें, कुछ प्यार, कुछ दोस्त जो ठहर जाते हैं ज़िंदगी में। तो चलिए उन्हें पकड़ के रखिएगा, उन्हें नहीं छोड़िएगा बिल्कुल, जैसे कि हमारे दोस्त है ना सौरभ। मेरे आने से पहले ना सौरभ आपको दस्तक आ जाती है, और आपका जो पहला मैसेज होता है ना, हाय वेलकम, वो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में मैसेज मसाला मिक्स में खूब खूब खूब खूब खूब सारे मैसेजेस कीजिएगा, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि आपके साथ रहेगी गीता चौधरी। और मैसेज मसाला मिक्स आपके साथ ढेर सारे मन की बातें जरूर जरूर जरूर जरूर उनके साथ कीजिएगा।

और जब भी चले आना की बात होती है ना, आने जाने की बात होती है, इनफैक्ट मैं कहूँ तो ट्रैफिक की जो एकदम से दिमाग में आता है ना ट्रैफिक, गाड़ी निकाले नहीं निकाले या कुछ और अल्टरनेट देखे, सबसे पहला दिमाग पे चल जाता है टाइम क्या हुआ है, ट्रैफिक कैसा मिलेगा इस वक्त, है ना। उस हिसाब से हम प्लान करते हैं, सोचते हैं ना कि निकलें तो किस मोड से निकलें, कौन सा ट्रांसपोर्ट लें, क्योंकि ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक दिल्ली का ट्रैफिक चलिए ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक के अपडेट्स भी हम आपको देंगे, ज़रूर देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि जैसे बोल रहा था मैंने कि ट्रैफिक के बारे में बताऊंगी मैं। और आज है 17 सितंबर और आपको मालूम है कि आज क्या है, बहुत खास बात हो रही है आज दिल्ली में। दिल्ली में आज जो अफगानिस्तान के साथ भारत अफगानिस्तान T20 मैच जो चल रहा है, इसका बहुत असर पड़ने वाला है हमारा यातायात पर। जी हाँ, क्योंकि खासतौर पर अगर मैं बात करूँ कि ये जो मैच है अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है, क्रिकेट मैच के कारण दोपहर 2 बजे से ये मैच चल रहा है। स्टेडियम के आसपास का जो भी एरिया होगा खास तौर पर वहाँ पर प्रतिबंध रहेंगे, डाइवर्जेंस रहेंगे, पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि जनकपुरी की तरफ अगर लाल साई मार्ग और वहाँ पर भी दिल्ली जल बोर्ड के सीवर का कुछ काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पर भी डाइवर्जेंस है। और अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं जनकपुरी की तरफ, तो आप पंखा रोड से जेल रोड जाने के लिए नजरपुर रोड का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके लिए सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाने, कहीं भी जाना है तो, वैसे तो सब अब इस समय घर ही जा रहे होंगे, सुबह ही होते हैं बस तो, लेकिन इस टाइम तो फिर भी टाइम लगेगा कहीं भी आप पहुंच रहे हैं। और खासतौर पर अगर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो जाम से बचने के लिए पहले आपको निकलना होगा, सबसे बेस्ट है आपको दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए। और सड़कों पे जाम से बचने के लिए भी सबसे बेहतर और विश्वसनीय विकल्प है। और इसके अगर आप कोई लाइव रूट अपडेट के लिए किसी भी तरीके की पुलिस

लाइन नंबर भी चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, तो 1095 पे आप सीधे फ़ोन करके आप देख सकते हैं। और आपको मालूम ही है कि जैसे बताया है कि अगर आपको जो अरुण जेटली स्टेडियम है यहाँ पे मैच चल रहा है, तो इसके आसपास अगर आप हैं तो बहुत ध्यान से रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि फ़र्क तो पड़ेगा। और मैच है भाई दिल्ली में, तो फिर बनता है देखना भी। तो दोनों केसेस में हम दिल्ली वाले हैं तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेंगे करेंगे, क्योंकि मोहब्बत करते हैं हम। जी हाँ, खुद से, आपसे, हमारे गेस्ट से, हमारे लिसनर से, हमारे प्रोग्राम से, और सबसे बहुत बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, सिटी लाइट्स है ना, सिटी की सारी खबरें हमारे साथ। जी हाँ, प्रोग्राम आकाशवाणी पर आपका अपना

और आप तो सच में बहुत बहुत बहुत लकी हैं अगर किसी को इश्क हो गया है आपसे। सच में कहाँ करते हैं प्यार आजकल लोग, नहीं करते हैं। और अगर सच में कोई आपकी परवाह कर रहा है तो छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है टाइट से उसको। और क्या बोलूँ, मेरे को तो पता इतनी सारी बातें बोलनी है लेकिन टाइम है ना जाते जा रहा है। गीता भी आ गई, मैसेज मसाला प्रोग्राम आपके लिए करेगी और ढेर सारे मैसेज करने हैं आपको। और पता है आज प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू हो रहा है सेवा संकल्प अभियान। जी हाँ, और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे आज रक्त शिविर लगाए गए और उन पे भी हमने कहते ना कि ब्लड डोनेट भी किया और इसके साथ साथ हमने बहुत यज्ञ भी करे। इसके अलावा श्रमिक सेवा केंद्रों का उद्घाटन भी किया। और आज क्या होने वाला है पता है, आज 125,000 दियों से जगमगा उठेगा कर्तव्य पथ। हाय, मैं उस तरफ से जाऊंगी, उस तरफ से ही जाऊंगी मैं भी आज। सच में। और मुलाकात तो नहीं, बाय बाय कहने का टाइम हो गया है। चलिए फिर मुलाकात करूंगी बहुत जल्द।

आपके अपने आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। तब तक मैं सीमा लेती हूँ सिटी लाइट्स से इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने कहा ना कि अपने अपनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, खासतौर पे उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना जो आपको ना बहुत पसंद करते हैं, आपको आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, उनको नहीं छोड़ना, ठीक है? और मुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है? और चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के लिए अवसर खुल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत अन्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत ने अमरीका में 11 सितम्बर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी

कर्मियों को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में दो आतंकवादी मारे गए। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किया है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। और क्रिकेट में आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेला जाएगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:03। यह है 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट, मेरा फेवरेट और सभी का फेवरेट मैसेज मसाला मिक्स। दोस्तों, क्या कभी किसी आवाज ने आपका मूड अचानक से बदल दिया है? वो बारिश की बूंदें भी हो सकती हैं, मंदिर की घंटी भी हो सकती है, स्कूल बेल भी हो सकती है, ट्रेन का हॉर्न या फिर घर में प्रेशर कुकर की सीटी। वेल दोस्तों, कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, अपने साथ एक पूरी कहानी, एक बहुत ही खूबसूरत याद लेकर आती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गीता पहेली क्यों बुझा रही है? तो जनाब, आज का सवाल बेहद सिंपल है। आपके लिए वो कौन सी आवाज है जिसे सुनते ही आपका जो मूड है वो एकदम से बदल जाता है, और क्यों बदलता है आपको रीजन भी बताना है। कौन सी आवाज आपको हंसाती है, सुकून देती है, या फिर अचानक किसी पुराने खूबसूरत प्यारे से दौर में ले जाती है? वेल, आज मैसेज मसाला मिक्स में अपनी उस खास आवाज और उससे जुड़ी मेमोरी, उससे जुड़ी यादें मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर वही पुराना है, 9868107070। थोड़ा धीरे से बताती हूँ, जो मेरे नए दोस्त इस प्रोग्राम से जुड़े हैं उनके लिए नंबर थोड़ा धीरे बताऊंगी, 9868107070।

वेल बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ गए हैं और बहुत सारे लोग अभी लिख रहे हैं मैसेजेस. विजेंद्र गहलोत अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं कि गुड इवनिंग गीता जी. मैसेज मसाला मिक्स में लिखते हैं, मुझे दीदी एफएम रेनबो की आवाज़ से बहुत सुकून मिलता है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगता है प्रोग्राम. थैंक यू सो मच आपका मैसेज करने के लिए. अंशी शर्मा जुड़ी है हस्तनापुर मेरठ से, लिखती हैं, हाय गुड इवनिंग डियर गीतू मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ. एंड मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि मैम जब बात किसी ऐसी आवाज़ की आती है तो मैम जब भी मंदिर की घंटी बजती है हमारे यहाँ तो बहुत सुकून मिलता है, जैसे एक न्यू एनर्जी मिल रही हो एंड नेगेटिविटी गायब सी हो जाती है. तो भगवान से जो जुड़ाव है वो हम महसूस करते हैं, यही आवाज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट होती है हमेशा. थैंक यू सो मच. और ये सही बात है, जब जब शाम को या सुबह मंदिर में घंटी बजती है तो कई बार हम सुबह सो रहे होते हैं और मंदिर की घंटी की आवाज़ से हम उठते हैं और एक ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिविटी पूरे वातावरण में गूंज गई हो. थैंक यू सो मच अंशी. निधि जुड़ी है पंचकुला से, लिखती है, आपकी मधुर आवाज और खूबसूरत अंदाज हर बार दिल जीत लेते हैं. आज आपकी सुरीली आवाज के साथ सुनना चाहूंगी फिल्म इजाजत का सदाबहार गीत कतरा कतरा. कुछ नगमे बस सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं और ये गाना उन्हीं में से एक है. बिल्कुल सही बात है, ये गाना वाकई में बहुत अच्छा है. बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि

अपने जो प्लेलिस्ट है उसके जो गाने हैं वो आपको जरूर पसंद आएंगे। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग आरजे गीता मैडम जी, आपको भी प्यारा सा नमस्कार। कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स में आरजे मैडम जी, मुझे स्कूल की बेल की घंटी में मूड अच्छा बनाती है, मतलब स्कूल की बेल की जब घंटी बजती है, स्कूल की जो घंटी होती है वो जब बजती है तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। स्कूल के दिनों की याद दिलाती है, स्कूल की घंटी बजते ही सभी विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश करते थे और स्कूल की छुट्टी की घंटी सुनकर बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन स्कूल की घंटी रोज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है, स्कूल की घंटी से स्कूल के अंदर और बाहर आ जाते थे। बिल्कुल सही बात है, ये जो चीज़ें हैं हमें अपने पुराने दौर में ले जाती हैं, स्कूल डेज में ले जाती हैं। और जब एक बार स्कूल शुरू हो जाता था तो हमें इंतज़ार रहता था कि कब छुट्टी की जो घंटी है वो बजेगी और हम दौड़ कर गेट के बाहर जाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच पंकज जी मैसेज करने के लिए।

हिरन मगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान से सुशील यादव रेणु यादव लिख रहे हैं कि भाप वाले रेल की सीटी और उसकी छुक छुक वाली आवाज आज भी दिल में कौतूहल पैदा करती है। सही में क्या लिखा है आपने, कहाँ चले गए वो दिन, बड़े सुकून भरे थे। सही बात है, वो दिन कहाँ चले गए, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है। वाकई में वो छुक छुक करती जब ट्रेन की आवाज़ आती थी तो बहुत एक कौतूहल सा वाकई में हो जाता था कि दौड़ के घर से बाहर दौड़ के उस आवाज़ को ध्यान से सुने। थैंक यू सो मच।

गुड इवनिंग मैम, सरिता फ्रॉम चंडीगढ़। ये लिखती है कि मॉर्निंग में पीकॉक बर्ड्स चिपिंग एंड ठंडी ठंडी हवा। ओए होए, क्या बात है। ये गांव का सीन हो सकता है, शहरों में तो इतने मोर और जो चिड़ियों की चहचाहट है वो तो न जाने कहाँ गायब हो गई है। छोटी छोटी जो गौरैया होती थी ना, पहले किसी पेड़ पे एक झुंड में बैठ जाती थी। जी जी जी जी जी जी जी जी, वो जो आवाज़ थी ना, वो एक अलग ही तरह का म्यूज़िक क्रिएट करती थी, और वो आवाज़ इतनी अच्छी लगती थी ना, वाकई में आंखें बंद करके जब वो, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे इस टाइम में फील कर सकती हूँ वो आवाज़। थैंक यू सो मच सरिता जी, आपने वो पुराने दिनों की जो याद है वो एकदम से ताज़ा कर दी। कपिल मेरे साथ जुड़े हैं फ्लोरिडा यूएसए से। ओह माय गॉड, इतनी दूर से आप मुझे मैसेज लिख रहे हैं, क्या वाकई में आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। आगे लिखते, फॉर मी इट इज साउंड ऑफ वेव्स इन द सी। ओए होए, शाम के वक्त समुद्र के लहरों की जो आवाज़ है बहुत सुकून देती है। अकेले बैठ जाइए किसी समुद्र के किनारे, उन लहरों की जो आवाज़ है उनको सुनिए। आगे लिखते हैं कि समुद्र की लहरों की आवाज़, कुछ साल पहले में थोड़ा डिप्रेस था, आई वॉज इन मुंबई। हर रोज़ शाम को ऑफिस से वापस आते हुए मैं मैरिन ड्राइव सी वॉल पर बैठ जाता था, वहाँ बैठकर लहरों की आवाज़ सुनता था। वो लहरों की आवाज़ मेरे मन को बहुत शांति देती थी। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, और आप इतनी दूर से प्रोग्राम सुन रहे हैं और टाइम निकालकर मैसेज किया है, ये बहुत बड़ी बात है।

वेलकम बैक। टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:20। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूँ गीता। शाम का वक्त है, दिन भर की भागदौड़ के बाद अब जिंदगी थोड़ी सी धीमी हो गई है, थोड़ी सी स्लो हो गई है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ही स्पीड में हैं, बहुत स्पीड से गाड़ी भी चला रहे हैं, लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो अगर सुबह की तुलना में शाम की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। कोई ऑफिस से घर की तरफ जा रहा है, कोई ट्रैफिक में फंसा है, कोई बालकनी में बैठकर चाय की पहली सिप ले रहा है। बहुत सारे लोग होंगे इस वक्त चाय पी रहे होंगे। और ऐसे ही किसी पल में अगर अचानक कोई जाना पहचाना गाना बज जाए, वाह क्या बात है, तो वो गाना सुनने के बाद न जाने क्यों हम उस सेकेंड के लिए वहीं रुक जाते हैं। कभी कभी कोई गाना सिर्फ गाना नहीं होता दोस्तों, वो हमें अपने पुराने दौर में, उन पुराने दिनों में वापस ले जाता है। वही स्कूल के दिन, कॉलेज की कैंटीन, दोस्तों के साथ गपशप, वो दोस्तों के साथ बिताई

वो शामें या फिर वो जगह जहां हमने पहली बार वो गीत सुना था। गाना बज रहा होता है लेकिन यादें हमें कई साल पीछे ले जाती है। कभी किसी गाने की पहली धुन सुनते ही याद आ जाता है, अरे ये तो उस सफ़र में सुना था जब हम फैमिली के साथ जा रहे थे। कभी कोई गाना किसी पुराने घर की याद दिलाता है, कभी किसी दोस्त की, और कभी बस एक ऐसी शाम की जिसे हमने शायद उस वक्त बहुत इन्जॉय किया था दोस्तों के साथ, है ना। और यही तो मुझे ऐसा लगता है कि जो म्यूज़िक की ताकत है वो यही है। तो वेल दोस्तों, आज का सवाल भी ऐसा ही है कि आपके लिए वो कौन सी आवाज़ें हैं जिन्हें सुनते ही आपका जो मूड है वो एकदम से बदल जाता है, और मूड क्यों बदलता है रीज़न भी आपको बताना है। आपको अपनी उस ख़ास आवाज़ और उससे जुड़ी मेमोरी, उससे जुड़ी यादें मेरे साथ शेयर करनी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर वही है 9868107070। आलोक पवार देहरादून से जुड़ गए हैं और इनके साथ मिनी भी जुड़ी हैं। लिखते हैं, शुभ संध्या गीता मैम, आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है। थैंक यू सो मच एफएम रेनबो में जब कोई आरजे हमारा नाम लेता है अपनी मनमोहक आवाज़ में तो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू जी, यही वजह है कि मैसेज मसाला मिक्स और आपकी फरमाइश कार्यक्रम का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। थैंक यू।

वेलकम बैक दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:27। प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में हूँ गीता। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। वाकई में सच कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे कनेक्ट होना। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँगी, मौसम इन दिनों बहुत ज़्यादा अपने रंग दिखा रहा है। धीरे धीरे कभी हल्की ठंडक, कभी गर्मी, और इसी सीज़न जो चेंज होता है ना, उसमें वायरल और कोल्ड एंड कॉफ भी हो जाता है। तो मेरी तरफ से बस आपसे सभी के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है, अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिए, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनिए, और अगर बॉडी थोड़ा सा रेस्ट मांग रही है तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। क्योंकि आपको पता है ना, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। रोज़मर्रा की भाग दौड़ में हम सब दूसरों का ख्याल रखते रखते कई बार खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अपना ख्याल रखिएगा। क्योंकि आपकी जो स्माइल है ना, आपकी स्माइल भी तो हमारी शाम का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है ना। चलिए मैसेजेस पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं, नहीं तो मेरे जो दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। ये मैसेज आया है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली का। लिखते हैं मैसेज मसाला मिक्स में, आरजे गीता साहिबा जी को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी प्यारा सा नमस्कार। लिखते हैं, मुझे मेरी माँ की वो आवाज़ अच्छी लगती थी, जब सुबह को बहुत मीठी आवाज़, मीठी कोयल जैसी आवाज़ देकर स्कूल जाने के लिए उठाती थी। उस आवाज़ के लिए आज तरस गया हूँ। उस आवाज़ को सुनकर सुकून भी मिलता था, अच्छी लगती थी। हाँ आदिल कमर साहब, माँ को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता पूरी कायनात में। माँ की जो जगह है ना, वो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल अलग है। एक जगह माँ और दूसरी तरफ पूरी कायनात, पूरी दुनिया। तो माँ का लाड़ दुलार, माँ की डांट, सब कुछ, वाकई में वो आवाज़ें बहुत याद आती हैं। थैंक यू सो मच। देहरादून से आलोक पवार और मिनी, ये मैसेज मैं शायद पढ़ चुकी हूँ। एक और मैसेज मैं ले लेती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही मधुर गीत से हुई है, बैलगाड़ी पर बैठकर खेतों में जाना और अनाज भरकर घर लाना, हर दौर अब भी याद है। बैलों के गले में बधी घंटी की वो मधुर आवाज़ बार बार याद आती है। ये लिखने वाले हैं भेरू लाल वाकतरिया धाकड़, ज़िला उज्जैन मध्य प्रदेश से। बहुत ही खूबसूरत, जब बैल चलते हैं और उनके गले में जो घंटी की जो टन टन की आवाज़ होती है, वाकई में वो बहुत खूबसूरत लगती है, दिल को सुकून देती है। थैंक यू सो मच। ये मैसेज है, कैसे हो आप? हम बढ़िया हैं जी। आज की ठीक बताओ, भी रेडियो सुनना शुरू किया है। नमस्कार आपको, ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुरा उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, और सभी ने अब मेरा जो टॉपिक है उस पर आपने कुछ नहीं लिखा, नीचे लिखा है किसी भी गीत में हमें शामिल करें। तो आपका जो, आपके जो नाम हैं, सारे मेरे जो लिसनर्स हैं जो हमेशा मैसेज करते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, तो मैंने आपके जो नाम है अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। और रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, ओखला संगम विहार दिल्ली से जुड़े हैं ये सभी मेरे दोस्त। लिखते हैं, मुझे पुराने ज़माने के गाने बहुत पसंद है और नदिया में बहते हुए पानी की आवाज़ बहुत पसंद है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है और गाने भी पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका।

जी साहब, लता जी, महेंद्र कपूर और किशोरदा, इनकी आवाज़ें मैचलेस हैं। ये आवाज़ें हमेशा जवान रहती हैं और हर एरा में सभी पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच।

एक मैसेज आया है, हालांकि इन्होंने कहाँ से लिख रहे हैं, अशरफ अली अवंतिका रोहिणी से यस लिखा है। लिखते हैं, मुझे बचपन में मोहम्मद रफ़ी, लता और महेंद्र कपूर की आवाज़ अच्छी लगती थी, बचपन में अच्छी लगती थी लेकिन अब नहीं लगती। ये आवाज़ें कुछ ऐसी आवाज़ें हैं

गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार मेरे प्रोग्राम में जुड़े हैं। रेनबो दिल्ली, आपकी आवाज जब कानों में रस घोल जाती है, जिंदगी की हर थकावट पल में भूल जाती है, धड़कनों को थाम लेता है वो लहजा आपका, जैसे तपती धूप में कोई ठंडी छांव मिल जाती है। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक मैसेज। किसके लिए लिखा है ये आपने नहीं बताया, जिसको भी आप डेडिकेट करना चाहते हैं उनका नाम तो आपको लिखना बनता है ना। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा आपने शेर लिखा है।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
6: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
7: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
8: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
5: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक दोस्तों. टाइम हुआ ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8 बजकर और ये 40 मिनट होने वाले हैं. प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्सर. मैं हूँ गीता. वेल, मेरे पास एक मैसेज आया है. कहाँ से लिखते हैं ये? हेलो मैम, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से लिखते हैं. मेरे लिए वो एक धुन है, मेरे मोबाइल की SMS रिंग, जब वो कहती है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सैलरी. और ये धुन सभी को अच्छी लगती है. जो भी सैलरीड पर्सन है, बिल्कुल सही कहा आपने. सैलरी या कहीं से भी अगर पैसे आए तो ये धुन बजती है ना. ओए होए ओए होए, मजा आ जाता है जिंदगी का, है ना. भुवनेश जुड़े हैं, लिखते हैं, हेलो गीतू मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली. हाउ आर यू? आई एम फिट एंड फाइन भुवनेश. ये लिखते हैं, ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट आई लाइक द साउंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आई हैव माय पियानो. व्हेन आई प्ले इट एंड लिसन टू इट्स वॉइस, इट गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी एंड ऑल द स्ट्रेस गोज अवे. बिल्कुल सही बात है. जो म्यूजिक के दीवाने हैं ना, उनको अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का चस्का लग जाए या उसको बजाने का शौक है, तो बस वो फिर उस वक्त में सारी दुनिया भूल जाते हैं उसको बजाते हुए. थैंक यू सो मच भुवनेश, आपने मैसेज किया हमारे प्रोग्राम में. मोनू पराशर लिखते हैं, नहारी विलेज हरियाणा से लिखते हैं कि पहले वाले टाइम में लैंडलाइन फोन की जो रिंगटोन थी, वाकई में वो बहुत अच्छी लगती थी. जी हाँ, थैंक यू मोनू पराशर जी. गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिले के बेडावन गांव से जुड़े हैं, लिखते हैं, जब बारात बैलगाड़ी से जाती थी और बैलों के गले में घुंघरू बजते थे, वो आवाज़ अभी तक कानों में गूंज रही है. आकाशवाणी इंदौर पर प्रोग्राम आता है, उसमें वो आवाज़ प्रतिदिन सुनाई देती है शाम के समय, और बहुत ही वो मधुर.

लिखते हैं आरजे साहिबा जी, नमस्कार। मुझे मेरे मन की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, जैसा वो मुझे बचपन में पुकारती थी, आज भी उसी नाम से जब पुकारती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, माँ की आवाज़। आपने वैसे मन लिखा है, लेकिन आप लिखना चाह रहे हैं मेरे माँ की आवाज़। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, माँ की आवाज़ किसको अच्छी नहीं लगती। ये लिखते हैं नवाब अहमद भत्री और बल्ली मारान दिल्ली से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच आपका मैसेज करने के लिए। एक मैसेज मेरे पास और आया है, शैलजा फ्रॉम नीमराना राजस्थान से। मुझे 90s में जब AIR का जो सॉन्ग बजता था AIR FM करके, तब रेनबो गोल्ड अलग अलग नहीं थे, वो बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल सही आपने लिखा है और वो मुझे बहुत याद आता है। बिल्कुल सही बात है, वो जो पुराना सिग्नेचर ट्यून था ना हम लोग का, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम सिर्फ FM रेनबो था, गोल्ड नहीं था। थैंक यू सो मच अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। हम भी यहाँ प्रोग्राम बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं, और कह दो जी, कह दो सोनिया गीत, अच्छा गीत की तारीफ की, बहुत ही अच्छा लगा। हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए, तो आपकी अटेंडेंस लग गई है। ये लिखने वाले हैं किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। हमारे इस प्रोग्राम की, FM रेनबो के प्रोग्राम्स के, ये बहुत ही रेगुलर लिसनर है, हमेशा ये मैसेज करते हैं, तो थैंक यू सो मच आपका। तो चलिए अब एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुन लेते हैं, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ। स्टे ट्यून्ड। एंड आई होप आज की जो प्लेलिस्ट है वो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। फियर्स, प्लीज मैसेज करते रहिएगा। कहाँ करेंगे? 9868107070 पर। बहुत ही प्यारा गाना है, हरिहरन की आवाज है, सुकून देने वाला गाना।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 6:50. प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूँ गीता. यह है 102.6 FM रेनबो. वेल, कभी आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, हमारी यादों में, हमारी मेमोरी में तस्वीरों से ज़्यादा कुछ जो आवाज़ें होती हैं वो बहुत गहराई से बस जाती हैं. कभी कोई बहुत अपना ख़ास इंसान हमें किसी खास अंदाज में बुलाता था और आज वो हमारे पास नहीं है, लेकिन अचानक कोई उसी स्टाइल में उसी तरह से पुकारे हमें, तो एक पल के लिए हम पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर उसी पुराने समय में हम लौट जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना. कभी घर में किसी के चूड़ियों की खनक, कभी पापा के स्कूटर के गेट पर रुकने की आवाज़, कभी माँ का किचन से आवाज़ लगाना, खाना लगा दिया है और कभी दोस्त का वो ख़ास अंदाज में हंसना. क्या कहें दोस्तों, दीज साउंड्स मे बी मे लुक ऑर्डिनरी बट

दे कैरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेमोरीज। और ये शायद यही वजह है कि कुछ आवाज़ें हमारे मूड को सिर्फ बदलती नहीं, हमें इमोशनली टच करती हैं। कभी हम मुस्कुरा देते हैं, कभी हमारी आंखें नम हो जाती हैं, और कभी बस मन करता है कि काश वो आवाज़ एक बार फिर से सुनाई दे।

श्रीकांत काले नागझोरी अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लिखते हैं, वैसे तो सभी गीतकार के गीत अच्छे लगते हैं, एक एक गाना बहुत मधुर होता है, बस मन लगाकर सुने तो। आज आपकी आवाज मधुर लग रही है क्योंकि प्रोग्राम मन लगा के सुन रहा हूँ। संध्या जी, आपने मेरा नाम संध्या जी लिखा है या आप ऐसे ही लिख दिया? मेरा नाम गीता है। संध्या का समय और गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये वक्त आपकी वजह से अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।

मैसेज आया है, लिखते हैं गुड इवनिंग मैम, माय फेवरेट प्रोग्राम बट देर हो गई। कोई बात नहीं, हमें तो एफएम रेनबो के आरजेस वॉइस बहुत अच्छी लगती है, मॉर्निंग में तो ताजगी मिल जाती है। लिखने वाले हैं मीरा सिंह सिलचर असम से, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट बुलंदशहर से थोड़े से नाराज़ हो गए, लिखते हैं मैसेज मंगा तो लिए, पढ़ेंगे नहीं आज। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मैसेजेस रह गए, इतने सारे मैसेजेस आए, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि संभव नहीं है। मैंने आज बहुत कोशिश की है कि मैं एक ही बार में बहुत सारे मैसेजेस ले लूँ। मोहम्मद सईद अब्बासी लिखते हैं कि इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ, वक्त ने कहा धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सईद अब्बासी जी, नाराज नहीं होइएगा, राइट।

अनिल ठाकुर जी सराय कालेखां दिल्ली से जुड़े हैं, लिखते हैं गीता मैडम जी मैं भी जुड़ गया हूँ, लेट हो गए आपकी आवाज़ सुनकर सुनने लगे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच अनिल जी।

मोहम्मद सरफराज आलम बहुत देर में जुड़े हैं जो कि हर दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से जुड़े हैं। बरसात की बूंदों में कोई राज तो है, भीगी हुई रातों में तेरा ख्वाब तो है, तन्हाई भी मुस्कुराती है बारिश के साथ, शायद इन फिजाओं में तेरा एहसास तो है। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है, हालांकि मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं लिखा है। आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ठीक 8 बजे आपसे मुलाकात करूंगी, इस गाने के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। आप इंतज़ार करिएगा, 8 बजे आपसे फिर मिलती हूँ। बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम लिसनर्स, यू आर ट्यून टू आकाशवाणी एफएम रेनबो ब्रॉडकास्टिंग एट 102.6 मेगाहर्ट्ज़। दिस इज योर होस्ट एंड फ्रेंड आरएस रघु वेलकमिंग यू टू येट अनदर सेशन ऑफ आर प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज। दे से टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, बट वी आर गोइंग टू प्रूव इट रॉन्ग टुडे इन दिस सेशन, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ time where time does stop with music. And talking about music, let us play the first track of this session of our program, which is by Harry Belafonte, and it's from his album An Evening with Belafonte. The song is Danny Boy. So let's begin this musical journey. Hold your horses and get on to your cars and get your seatbelt on, because the ride is about to begin.

0: That was Shirley Bassey with the track The Nearness of You. And did you know she was just 24 when she recorded this song in the year 1961? But initially, this song was written for a film called Romance in the Rough, but it never got made. So it sat in the drawer for almost 3 years, and Bassey's 1961 take is the one that ended up on the Love album. Moving on, we have the first break coming up, so don't go anywhere, because you know we'll be right back with many more tracks.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं. आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं,
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है,
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है.
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क.
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें, या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
8: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
9: इस शुक्रवार 18 सितंबर को सुबह 9:15 से 9:30 बजे तक,
8: और जानिए SOL के UG और PG कोर्सेज के बारे में.
10: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा.
11: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
0: Welcome back, listeners. You're tuned to Akashvani FM Rainbow, broadcasting at 102.6 megahertz. Now it's time for Judy Garland in this session of our program, Hits and Memories. Judy just wasn't the voice of the Wizard of Oz. She could also turn a song into an emotional statement. Like her performance of Battle Hymn of the Republic was recorded in the December of 1963, just weeks after assassination of President John F. Kennedy. And Garland had wanted to make a tribute program for Kennedy, but CBS didn't approve the idea. So she eventually performed the song on the Judy Garland Show. So

0: जोर है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो ब्रॉडकास्टिंग एट 102.6 megahertz। द प्रोग्राम इज हिट्स एंड मेमोरीज एंड दिस इज योर होस्ट एंड फ्रेंड RS Raghu। नाउ फॉर अ सॉन्ग अबाउट स्ट्रगल, लोनलीनेस एंड सिंपली ट्राइंग टू कीप गोइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट साइमन एंड गारफंकल्स द बॉक्सर, रिटन बाय पॉल साइमन। द सॉन्ग वॉज रिलीज एज अ सिंगल इन द ईयर 1969 एंड लेटर अपियर्ड ऑन ब्रिज ओवर ट्रबल्ड वाटर। इट बिकेम वन ऑफ द डुओज सिग्नेचर सॉन्ग एंड हियर्स अ फैंटास्टिक स्टूडियो फैक्ट। पार्ट्स ऑफ द रिकॉर्डिंग्स वर मेड इनसाइड सेंट पॉल्स चैपल एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूजिंग इट्स natural reverberation. Even the famous drum sound was achieved in an unusual recording space. So here's a song where the production story is almost as interesting as the song itself, The Boxer.

I say, not in a shy way. Oh,

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: एक मैदान, एक ट्रैक, एक कोर्ट, एक मैट और करोड़ों दिलों की धड़कन। जब तिरंगा एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर लहराता है तो मुकाबला सिर्फ पदक का नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले का, तैयारी का और उस विश्वास का जो एक खिलाड़ी के कदमों से निकलकर पूरे देश तक पहुंचता है। आईटी नागोया बनेगा एशिया के खेल ऊर्जा का केंद्र और भारत एक बार फिर तैयार है पिछले एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब बारी है उस प्रदर्शन को आगे ले जाने की। इस बार ट्रैक पर रफ्तार होगी, क्रिकेट में चौके छक्कों की गूंज होगी, हॉकी में स्टिक और गोल के बीच जंग होगी, कबड्डी के मैट पर सांसें थमेंगी, बैडमिंटन में हर स्मैश उम्मीद जगाएगा, वेटलिफ्टिंग में हर किलो ताकत की कहानी लिखेगा और टेबल टेनिस की छोटी सी गेंद पर भारत की बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी। ये है एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। आकाशवाणी पर एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज में आज बात होगी उन खेलों की जहां भारत के पास पिछली कामयाबी का अनुभव और इस बार है नए चैंपियन का जुनून। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के ना होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानती हैं कि यहाँ से पदक आ सकता है?
1: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टारडम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा नीरज चोपड़ा का मुकाबला कब है। देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं, देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है, 74 खिलाड़ियों का, और जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो, जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटें, जैसे अविनाश साबले हैं। स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है। पारुल चौधरी है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे, जिनसे भी उम्मीद होगी क्योंकि जेवलिन भारत में एक फिनोमिना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति यारा जी वापसी कर रही है, राष्ट्रमंडल खेलों में भार रही थी, 110 मीटर बाधा दौड़ में उन पर भी नजरें होंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे, जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है। अनिमेश कुजूर 100 मीटर, 200 मीटर, गुलवीर है जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है, तो 1500, 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे। डेकाथलन में

0: तेजस्वीन शंकर हैं और एनसी सोजन जो लॉन्ग जंप में है, तो काफी सारा स्टार पावर है भारत के पास और मुझे लगता है कि पिछले प्रदर्शन को अगर बेहतर नहीं कर सके तो दोहरा तो जरूर सकेंगे।
1: सायंथन, जब भी बात एथलेटिक्स की होती है तो चर्चा होती है कि किस तरीके की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स के पहले बहुत सारी सीरीज का आयोजन किया गया। चर्चा ये भी है कि एशियन गेम्स में रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो पटियाला का जो साई सेंटर है वहां पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए ताकि उन्हें वहां जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सकें। थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
2: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाले के जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है जो जापान के आइची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था, उसका एक्लेमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है तो। लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x8 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का, एक्लेमेटाइज करने का व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहां जाके कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले उससे काफी बचा रहे।
1: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की, जिनसे काफी उम्मीद है। सर्वेश कुशारी भी एक एथलीट हैं जो हाई जंप में हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
0: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम है उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में। 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे। तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
1: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी। मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
2: देखिए, नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस करता हूँ, रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एनसी सोजन की बात आपने की थी, एनसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एनसी सोजन का कंसिस्टेंसी है, तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाओ से, उसके बाद में मैं बोलना चाहूंगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
1: हाई जंप में
2: 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहां पे वो 8th आई है 1.77 मीटर। तो काफी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंपटीशन का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th आई है 1.80 के ऊपर तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रिटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आईची नगोया एशियन गेम्स।
1: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंदकर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं। उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गंवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहां पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोलकीपिंग में चूक हुई है उनसे यहां पार पाना पड़ेगा, लेकिन यहां चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं। विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहां पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया कभी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं। लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले। और यहां से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है। एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना, ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
1: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया, क्या एशियन गेम्स से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
2: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पे रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना एशियन गेम्स पे। विमेंस टीम अगर इतना अच्छा कर सकते हैं, वहां पे फिफ्थ आ सकती है, तो मेंस टीम भी कहां पीछे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहां पे मेंस हॉकी टीम से काफी एक्सपेक्टेशंस है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं है। तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखती हुए काफी सारे जापान में, जैसे माउंट फूजी में, जीफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे ACTC के थ्रू, टॉप्स के थ्रू। काफी एक्सपोजर कैंप्स बोथ मेंस टीम और वुमेन्स टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुलटन की जो साइड है उनको भी काफी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
0: फोर्थ प्लेस
2: फिनिश जब हम लोग हॉकी वुमेन्स में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में, एक्लेमेटाइज और भी करने में वो मदद करे, एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं।
1: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से। इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम पांचवें स्थान पर रहे, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी और 20-21-22 साल की 11 लड़कियां, तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है और शोर्ड मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोल ड्रम में थी विमेन हॉकी और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में चौथे

0: तक लेकर गए। अभी भी आप देखिए, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास अन्नान एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है। लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें, तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास, कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का, वो अब नहीं है। और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा, सविता लेजेंडरी प्लेयर है, और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है, और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शोर्ट मारिन के साथ आप देखिए, वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहाँ आए थे जनवरी में, उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मथियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
1: चलिए हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेन्स डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंह भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मोना, एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी हैं, अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है।
0: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है दो बार की पीवी सिंधु, और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा, चिराग और सात्विक, पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है, और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का, तो यहाँ पर त्रिशा और जौली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
1: साइंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है, और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें। किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: जैसे अभी बताया गया कि त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसे करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हंजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग, जो डबल्स वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं, और ये एशियन लेवल है तो एशियन लेवल में कंपटीशन

0: चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस, उस मोरल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद में आऊंगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने एशियन चैंपियनशिप्स में हिस्ट्री 2026 में, इसी साल में किया था कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैंपियनशिप्स के फाइनल में और सिल्वर मेडल भी लाए। तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैडमिंटन में हो सकता है। एंड डेफिनेटली सात्विक चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देयर इज ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन, जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली आईजीनक होया में वो बाहर आए।
1: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सबकी उम्मीद है, लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर। कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था। वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है, लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
2: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण। तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का, लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा, और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
1: जी हाँ, सायंतन पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल है, असलम इनामदार है, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए, लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली, महिला टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
0: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत के बाद जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले पीकेएल की बात करूंगा आपसे। 12 खिलाड़ी जो है पीकेएल से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का पीकेएल में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहे हैं, वो यू मुंबा के कैप्टन भी है। तो काफी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था। उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है, वहां पे भी एक टीम का बढ़िया से ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेंस टीम का, वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफी कॉन्फिडेंट है जो मेंस टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेंस टीम का, स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कॉम्पिटिशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल। बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है जो स्वर्ण होने जा रहा है।
1: आइए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थी। मोना, यहाँ पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं, 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
2: जी बिल्कुल, ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए। तो 4 महिलाएं, वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है। पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और चौथे स्थान पर रही, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में और हरजिंदर कौर है 69 किलो में। तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
1: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर एक चीनी जोड़ी को हराकर विमेन्स डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी। क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, दिया चिताले ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
0: देखिए, अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफी हम लोग ने साइज से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको, गुजरात में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में काफी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हुआ था, कैंप नहीं हुआ था एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया कि मानव ठक्कर और मनु शाह जो है, जो मेन्स डबल्स पेयर में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल्स स्टैंडिंग्स में, तो ये काफी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनु शाह दिया चताले, जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहे हैं, तो शरद कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मनु शाह, मानव ठक्कर, दिया चताले, इन तीनों में से काफी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है, हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था, जैसे आपने जिक्र किया, तो इनसे आई थिंक मेन्स टीम, वुमेन्स टीम, काफी सारे कॉम्पिटिशन में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
1: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, जी हाँ, क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार भी

0: हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते हैं। ऐसे कुछ लोग, मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे। क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते हैं। एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, और साई ने, खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पर रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहे हैं, और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
1: मैदान तैयार है, रोशनी जगमगा रही है, और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मोना पार्थसारथी, आपका, सायंतन मोइत्रो, आपका बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया आनंद,
0: थैंक यू सो मच।
1: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल दोस्तों, टाइम हुआ अंदर डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8:30। ये है 102.6 FM रेनबो। मैं हूँ गीता। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती मैं आपके साथ रहूंगी ठीक 9 बजे तक।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक, रेनबो 102.6 पर।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8:55 हो चुके हैं और प्रोग्राम का जो गाना है ये है लास्ट गाना। इसके साथ टाटा बाय बाय गुड नाइट कहूंगी क्योंकि विनीता आपके साथ होंगी। प्रोग्राम होगा आपकी याद आती रही। स्टूडियो की घड़ी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही। 22 तारीख को आपसे फिर मुलाकात होगी। यही प्रोग्राम होगा, यही स्टूडियो होगा। टिल देन गुड नाइट।

नमस्कार, और लीजिए पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। यूपीआई लेनदेन ग्राहकों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। व्यक्तियों और दुकानों को पैसे भेजने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत अन्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल की खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने वाला विधेयक पारित किया। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेल रहा है। आकाशवाणी रेनबो पर थे मुख्य समाचार।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आज की खूबसूरत शाम में मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आप सुन रहे हैं आपकी याद आती रही। रात के शांत पहर में जब दिन की सारी आवाजें धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं, तब कुछ यादें बहुत पास आकर बैठती हैं। कभी कोई पुराना मौसम याद आता है, तो कभी किसी की आवाज, और बस इतना महसूस होता है कि कोई तो था जिसके होने से जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत थी। और आज की संगीत यात्रा की शुरुआत एक ऐसे गीत से जिसमें बीते हुए मौसमों की खुशबू भी है और जीवन को फिर से

दोस्तों, कुछ मौसम बाहर नहीं, मन के भीतर उतरते हैं। और जब कोई अपना साथ हो तो साधारण सा दिन भी जैसे बाहर बन जाता है। लेकिन दोस्तों, जब वही अपना हमसे दूर हो जाए तो सबसे खूबसूरत मौसम भी थोड़ा अधूरा लगने लगता है।

की याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, आंखें अक्सर वो सब कुछ कह देती हैं जो कभी कभी होंठ नहीं कह पाते। उन आंखों में कभी इंतजार होता है तो कभी शिकायत, और कभी कभी ऐसे चेहरे की तस्वीर जिसे शायद समय भी धुंधला नहीं कर पाता। ये जो चेहरा हमेशा आंखों में बसा रहता है ना, वो सच्चे प्यार की निशानी है। और ये भी कि आंखें बार बार कहना चाहती हैं, तुम हो, इन्हीं में हो, लेकिन कभी कभी आंसुओं के जरिए ढलक भी जाते हो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ आकाशवाणी रेनबो पर। और दोस्तों, सफर चाहे लंबा हो या छोटा, पर अगर कोई साथ चलने वाला ना हो ना, तो रास्ते अनजान लगने लगते हैं। और हाँ, अगर कोई साथ में हो तो फिर वही रास्ते आसान लगने लगते हैं।

कुछ रिश्ते यादों से बनते हैं दोस्तों। एक तरफ समय है जो आगे बढ़ता रहता है, और दूसरी तरफ मन है जो शायद उसी जगह ठहरा रहता है जहां कोई अपना आखिरी बार मिला था। ये मन है ना, ये अकेले कहीं आगे बढ़ने का रास्ता शायद जानता ही नहीं है।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, ये बात तो सच है कि कभी कभी किसी के लिए अपनेपन से पुकारा गया कोई एक नाम भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपना लगने लगता है। मोहब्बत की शायद सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि कोई हमें हमारे नाम से नहीं बल्कि अपनेपन से पुकारता है, और वही पुकार हमेशा के लिए हमारे मन में एक आहट बनकर रह जाती है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी रेनबो पर आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति से मिले इतना अरसा हो गया कि जैसे वो आप हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, लेकिन दिल की किताब में जाने क्यों उसका एक पन्ना आज भी खुला हुआ है। कभी कभी हम किसी को चाहते बहुत हैं, मगर सिर्फ इतना कि वो जहां भी हो खुश रहे। शायद यही प्रेम का सबसे शांत रूप है, जहां पाने की इच्छा धीरे धीरे छूट जाती है और रह जाती है तो सिर्फ दुआ और मन में चिंता भी कि कहां है वो जो पलट कर देखता भी नहीं।

याद आती रही विनीता बेरी के साथ। दोस्तों, जिंदगी में हर बात हमारे मुताबिक नहीं होती। रास्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन कुछ साथ

ऐसे होते हैं जिनकी याद कभी नहीं बदलती, क्योंकि कुछ यादें ना हवा के झोंकों जैसी होती हैं, जो दिखाई भले ही ना दें, लेकिन उनके आते ही पूरा मन महक जाता है। तो दोस्तों, यादें सजाते रहिए और हमेशा दिल में एक उम्मीद जगा के रखिए। और इसी के साथ विनीता बेदी को फिलहाल इजाजत दीजिए, मिलते हैं अभी एक घंटे बाद रंगे महफिल में। फिलहाल टेक केयर।

0: That was Aguas de Marco by Stan Getz. And it's time now for the first break of this session of our program. But don't go anywhere because you know, we'll be right back.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक।

0: That was Wes Montgomery with No Blues. Moving on, we have another short break coming up, but don't go anywhere because you know we'll be right back.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती.
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है.
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती.

0: What a wonderful, wonderful collaboration. It's time now for the final break of this session of our program, All That Jazz. So don't go anywhere because we still got two more tracks to play.
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम रेनबो ब्रॉडकास्टिंग एट 102.6 मेगाहर्ट्ज़। एंड बिफोर वी वेंट ऑन अ ब्रेक यू लिसन टू शक्ति ला डांस दे बुआ। Now, from Shakti, we move further into the world of Thrilo Gurtu, Vartapa. This track comes from Gurtu's Bad Habits Die Hard, originally released in 1988. Gurtu's music is a brilliant example of how percussion can become much more than rhythm. It becomes melody, texture and atmosphere. And his sound brings together Indian percussion with contemporary jazz and fusion. So let's turn up the rhythm and the volume.

नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ने कहा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्रालय कल से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कल बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत 31 अगस्त को प्रकाशित मतदाता का मसौदा सूची निर्धारित और सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम रंगे महफिल में मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। रात के इस आखिरी पहर में जब सारा शहर सोने की तैयारी में होता है, तब इस दिल की अपनी ही दुनिया धीरे से सामने आ जाती है। किसी की याद, किसी का इंतजार, किसी रिश्ते की अधूरी कहानी, सब अपना दामन फैलाते हैं और एक गजल सुनाई देती है जो बिना कुछ पूछे हमारे मन की बात कह जाती है।

कभी कभी ना किसी से मिलने की दोस्तों कोई वजह नहीं होती, बस मन करता है कि वो सामने आ जाए, कुछ देर बैठे, बेशक से कुछ कहे या ना कहे, पर सामने बैठा रहे। क्योंकि कुछ मुलाकातों के लिए बातचीत नहीं, सिर्फ किसी अपने की मौजूदगी ही काफी होती है।

रंग महफिल में आज आप हैं विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, तन्हाई हमेशा अकेले कमरे में ही नहीं होती, कभी कभी बहुत सारे लोगों के बीच भी मन किसी एक चेहरे को ढूंढता रहता है। अब वो जब चेहरा नहीं दिखता ना, तो दिल के भीतर कहीं एक खामोश सी नमी उभर आती है, वही नमी जो एहसास कराती है कि वो चेहरा कितना अपना है।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो पर दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग महफिल, आज मेरे यानी विनीता बेदी के साथ। दोस्तों रात की खामोशी में एक छोटी सी आहट भी जिसे बहुत कुछ कह जाती है। कभी धीमे से हवा का चलना, कभी पत्तियों का सरसराना और कभी अचानक किसी पुराने नाम का याद आ जाना। दोस्तों बाजी मर्तबा तो लगता है ना कि शायद यादों की भी अपनी ही आहट होती है। सुनी कभी आपने?

रंग महफिल में आज आप हैं विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, मोहब्बत में हम अक्सर किसी इंसान को उसकी बातों से नहीं बल्कि उसकी आंखों से पढ़ते हैं। आंखों में छिपी खुशी, दर्द, उम्मीद और कभी कभी ये एहसास भी, जिसे शब्दों में तो बयान किया ही नहीं था, फिर वो कैसे जान गया हर वो भाव जो मेरे मन में था।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

पर आप हैं प्रोग्राम रंगे महफिल में अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, बिछड़ना कभी भी अचानक नहीं होता। रिश्ता पहले खामोश होता है, फिर दूरियां बढ़ती हैं, और फिर एक दिन एहसास होता है दिल को कि जिसे हम अपना समझते थे वो अब हमारी कहानी का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन ये दूरियां, इस दिल को समझाना इतना आसान कहाँ होता है।

दोस्तों, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर तो वो जगह है जहां लौटकर मन को सुकून मिले, जहां कोई हमारी खामोशी को भी समझ सके, और कभी कभी किसी इंसान की मौजूदगी ही हमारा सबसे करीबी घर बन जाता है। आप बताएं, घर यानी दीवारें या घर माने सुकून।

दोस्तों, कभी कभी दिल बस इतना चाहता है कि वक्त थोड़ी देर और ठहर जाए। वही शाम, वही साथ, वही बातचीत और वही महकते हुए पल, बस थोड़ी देर और। और हर चाहत का मुकम्मल होना भी जरूरी नहीं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें कुछ खूबसूरत यादें देते हैं और फिर किसी मोड़ पर वो हमसे बिछड़ भी जाते हैं। उनका हमारी जिंदगी में शामिल ना होना एक सच्चाई है, लेकिन उनका एहसास, उनके होने का एहसास, वो भी तो कम खूबसूरत नहीं। इसी एहसास के साथ अब विनीता बेदी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।

हैं और अब मुख्य समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ने कहा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाया। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम माहे, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आवर शो। रात्रि के ठीक एक बजे हैं। अब प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ने कहा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। सेना के मुख्य सेवा प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। समाचार समाप्त हुए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु
1: आय हाय
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ SR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो SR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

बातों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी रात। रात्रि के 2 बजे हैं। अब मुख्य समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ने कहा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के आज स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू किया। अभियान के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और दूतावास परिसरों में सफाई अभियान चलाए गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माही, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। समाचार समाप्त हुए।

0: कोयल सी तेरी बोली
1: है?
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कछुआ।
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है।
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमीकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधित करते हुए पासपोर्ट नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक वैध रहेगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्षों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाया। दोनों पक्षों को सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है।

एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान कल शुरू होगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 3:04 होने हो चुके हैं। आइए, ये वक्त है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आइए अब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलवाता हूँ, जिसे मैं पहली बार चंडीगढ़ में मिला था। और मुझे याद है कि तब वो एक छोटी सी लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी।
1: उस वक्त मैं चंडीगढ़ में एक स्कूल गर्ल थी, 8th क्लास में पढ़ती थी और लाइफ में पहली बार शूटिंग देख रही थी। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे आपके साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। और आप मानेंगे, वो आप जो शूटिंग कर रहे थे उस फिल्म का नाम याद है आपको? सोनी महिवाल। देखिए ना इत्तेफाक, 10 साल के बाद मैंने उसी फिल्म में काम किया। उस वक्त वो किसी वजह से फिल्म बंद पड़ गई और मैंने सोनी महिवाल में फाइनली काम किया। याद है आपको? आपको कहाँ याद होगा, आप तो इतने बड़े स्टार थे।
0: मुझे याद है कि मैंने अपने पास बुलाकर चुपके से तुम्हारे कान में कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं।
1: क्या काका जी, आपको सचमुच याद है? आई डोंट बिलीव इट। जीतू जी, आप जानते हैं कि जब मैंने नया ज्वाइन किया फिल्मों में काम करना, तो मैं तो एक फिल्म ओल्ड थी और हम लोग तो आपके फैन थे, आपके काका जी के, और आप तो जानते भी नहीं थे ये नई लड़की पूनम ढिल्लन कौन आई है। तो आपने ये निशाना फिल्म में कैसे एग्री किया कि आप एकदम नई लड़की के साथ, और इतना डिफिकल्ट रोल था, आप मेरे साथ काम करेंगे?
2: पूनम ढिल्लन, आपको एक बात बता दूं, जब मैंने फिल्म नूरी देखी तो मैंने सोचा, वाह क्या खूबसूरत सिखनी आई है, मुझे कब मौका मिलेगा इसके साथ काम करने का, कब मौका मिलेगा इसके सामने दिल फेंकने का। और भगवान ने वो मौका दिया। जब ये फिल्म निशाना बन रही थी, मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे।
1: मतलब आपकी इंटेंशन क्या थी?
2: मेरी इंटेंशन बड़ी नेक थी। हाँ? मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं जल्द से जल्द आपको अपनी भावों में पकड़ लूँ।
1: ओह माय गॉड।
2: और मुझे इतना बड़ा शौक मिला जब मैं शूटिंग में पहली बार आपको मिला, आपने मेरे बच्चों को अपनी बाहों में पकड़ लिया।
1: मुझे आप ये पहले क्यों नहीं बताया? आपके जो छोटे छोटे बच्चे अभी तो थोड़े बड़े हो गए हैं। उस टाइम देख के तो मैं ऐसी फिदा हो गई थी तुषार पे और एकता पे। मुझे लगा था इनसे ज्यादा क्यूट बच्चे नहीं देखे मैंने, तो सारी पिक्चर की आउटडोर में तो मैं उनके साथ फ्लर्ट कर रही थी। आपने ये इतने 10 साल के बाद हिंट क्यों दिया मुझे?
2: ये मेरी
1: टू लेट नाउ।
2: ठीक है ठीक है, इट्स माय बैड लक कि मैंने मेरे बच्चों को आगे कर दिया, नेक्स्ट टाइम मैं उनको बहुत पीछे रखूंगा।
1: फिलहाल ये फिल्म में आई थिंक हम दोनों का बहुत अच्छा, ये जो भी हमने गाना किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी अनयूजुअल ड्रीम सॉन्ग।
2: कितनी मेहनत की है इस गाने में, कितनी मेहनत की है, 6 दिन लगे इस गाने को पिक्चराइज करने में,
1: और मेरे को लगता है हमारी मेहनत स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक वैध रहेगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्षों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाया। दोनों पक्षों को सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान आज शुरू होगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है।

0: मराठीवाणी आकाशवाणी।
1: साथियों, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4:02 हुए हैं और आइए, ये वक्त है कार्यक्रम सारे गामा का। मैं हूं आपके साथ प्रीति।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना,

0: जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक वैध रहेगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्षों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाया। दोनों पक्षों को सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान आज शुरू होगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: साथियों, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 5:02 हुए हैं और ये वक्त है कार्यक्रम आराधना का। तो आइए सुनते हैं भक्ति गीत और भजन।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।